0: It assures it's not a pass or fail.
1: Stop this system where we put our heads in the sand and suddenly realise years later that most of our children are turning up to school without the oral language that they need.
0: National would also ban screen use in early childhood centres and limit the use in primary classrooms. Labor's pledging to give smaller supermarkets access to the same prices as the big players if elected. Woolworths and Foodstuffs would be required to split their wholesale businesses from their retail stores. The party would also void anti-competitive arrangements for small grocers that keep prices high. Tens of thousands of NRL fans are being encouraged to make the most of Auckland ahead of tonight's Warriors game. The outer oval at Eden Park is being transformed into a fan zone from 1pm. Chief Executive Nat Sortner reckons to get there early.
2: There'll be a huge range of activities from sign making, face painting, hair braiding, inflatables, photo opportunities, and just a general carnival atmosphere.
0: And in sport, there's a fair bit on this afternoon. The Davis Cup tennis, New Zealand against Japan, day two getting underway now in West Auckland. North Harbour hosts Canterbury and MPC rugby at 2:05, while Taranaki, featuring a returning Scott Barrett, plays Southland in New Plymouth at 5:05. The Breakers start their Australian NBL season with a 5pm tip-off against the Illawarra Hawks at Spark Arena. And of course, the Warriors line up against the Newcastle Knights at Eden Park. The winner goes through to the minor final. The losing side gets a holiday.
3: Sports News.
4: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
3: Playing Bollywood's biggest hits. Just chill.
4: You're listening to Avineet.
5: Kia ora, bula, salam, namaste, sasriyakal, kemcho, namaskaram. Main hu abhi aapke saath mein jud gaya hu rang bharne ke liye, jaisa ki maine aapke hum Facebook page par post kiya hai. To all of this aaj rahega mere saath mein Just Chill mein abhi se lekar sham 6 tak. Aur aaj jabki Sunday hai, to aise mein kaafi kuch ho raha hai. Shayad aapne news mein bhi dhyan se suna hoga. Agar jo nahi, to koi baat nahi, main aapko bata dun. To sabse pehle main aapko ye batata hu ki agar jo aap ek car fanatic ho, तो ग्रेट न्यूज़, जबकि पोशा न्यूजीलैंड सेलिब्रेट कर रही है अपना 50th एनिवर्सरी, तो इस एनिवर्सरी के मौके पर आज आपके पास में एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है. आप जा सकते हैं वाइडेक इवेंट सेंटर ओकलैंड में आज के दिन, और सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 तक, टिल 2 PM, यहाँ पर जितने भी मॉडल्स हैं पोशा के, ये डिस्प्ले किए जाएंगे, राइट फ्रॉम 1959 टू लेटेस्ट 2026 मॉडल्स. तो आप भी अगर जो इसे देखना चाहते हैं करीब से, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, बिल्कुल एक फ्री इवेंट बताया गया है. और कीवी मार्केट में आज के लिए खासकर एक ऐसी मॉडल डिस्प्ले की जाएगी जिसका वैल्यू बताया गया है क्लोज टू $584,000. ये डिस्प्ले किया जाएगा पब्लिक में, तो आप भी जाकर, पोशा ब्रांड जो काफ़ी रिनाउंड है और काफ़ी लोगों को पसंद भी है, तो अगर जो आप तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं बाय कमिंग डाउन टू द सिटी. और वाइडेक्ट इवेंट सेंटर में ये गाड़ियाँ बिल्कुल आपके लिए डिस्प्लेड रहेगी. और जबकि मैं ड्राइव करते आ रहा था तो काफ़ी सनी है, ब्राइट सनी डे है आज ओकलैंड CBD में खासकर. और हाँ, थोड़ी ज़्यादा विंड गस्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स अ ब्राइट सनी डे एंड इट मेक्स अप फॉर इट. तो आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, आपको भी आज कुछ खास सुनना है, जबकि आज 20th of September है. कुछ आपकी फरमाइशें होंगी, कुछ आपकी रिक्वेस्ट होंगी, ये सभी कुछ पूरा करने के लिए और साथ में और कुछ जानकारियां लेकर, एंटरटेनमेंट लेकर, कुछ क्विज लेकर, कुछ फन एक्टिविटीज़ लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ स्टूडियोज़ में. अभी से लेकर 6 तक आपका साथ देता रहूँगा. ये है जस्ट चिल ऑन अ संडे, ऑन अ ब्यूटिफुल संडे. यू कैन सेंड इन योर रिक्वेस्ट ऑन 5599 या फिर 0800004866 पर आप कॉल भी कर सकते हैं. आज के इस प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने के साथ में जिसका टाइटल है मुख्तसर मुलाकात है, लेकिन मुख्तसर यानी कि ब्रीफ मीटिंग ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा और आपका साथ 6 तक रहेगा. सो कीप हमिंग विद अवी.

हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और यह है जस्ट चिल का कारवा। जबकि आज है 20 तारीख सितंबर, तो ऐसे में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं कमलजीत कौर शेरगिल जी। कमलजीत कौर शेरगिल जी हिफ डेल क्रेसेंट की है, ये अपना सेलिब्रेट कर रही है जन्मदिन आज। और इनके साथ में है गुरप्रीत कौर जी मनीरेवा से, आप भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, जबकि आप भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट की मेम्बर्स है और ऐसे में आपका स्पेशल डे है। तो हमारी ओर से, हम की पूरी टीम की ओर से, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आज का दिन आपके लिए बिल्कुल मंगलमय रहे एंड आपको ढेर सारा प्यार मिलता रहे दिन भर, यही हम चाहेंगे आपके लिए। दैट योर डे गोज़ प्रीटी वेल एंड यू कीप सेलिब्रेटिंग एंड कीप स्माइलिंग। आपका भी जन्मदिन है तो आप हमारे पास में अपना जो खुशियाँ हैं भेज सकते हैं बांटने के लिए ऑन 5599। अपने प्यारे प्यारे मैसेज आप लिख कर 5599 पर भेजें और यहाँ से ऑनेयर आपको बर्थडे शार्ट आउट्स भी देते रहेंगे। ऑल ऑफ दिस ऑन हम। और आपको ये भी याद दिला दूँ कि आज शाम वॉरियर्स और साथ में न्यूकासल नाइट्स के बीच में जो एलिमिनेशन गेम है ये रहेगा एट 6:05 PM ईडन पार्क में। इट्स अ सेल आउट, जबकि फुल हाउस होने को है। लॉट ऑफ पीपल विल बी ट्यूनिंग अप इस गेम को देखने के लिए। तो अगर जो आप भी सोचते हैं कि आज वॉरियर्स की जीत होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना सपोर्ट, अपना जो वॉरियर्स का स्लोगन है ये भेज सकते हैं 5599 अपने नाम के साथ में। और अगला जो गाना बजाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस गाने को छोटा सा क्लिप फेसबुक पेज पर अपलोड किया है, इसको डिस्क्राइब किया है दिस इज़ हाउ माई वीक वेंट। तो एक चैलेंज आपके लिए भी है, आप हमारे पास में टेक्स्ट करें कि हाउ डिड योर वीक गो। अगर जो किसी एक मूवी टाइटल से आपको डिस्क्राइब करना होगा या फिर किसी एक गाने से डिस्क्राइब करना होगा, तो क्या आप डिस्क्राइब करोगे अपने इस वीक को? ऑल ऑफ दिस विद मी अवी। लेकिन मेरा वीक कैसा रहा ये आप सुनिए इस गाने में।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: Ladies and gentlemen.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi, sabhi aate hain.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
5: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
6: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone-in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
7: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Tūriki. Altogether Auckland.
0: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
2: Kabhi bhi, kahin bhi.
8: हाँ पर मैं हूँ अभी आपका साथी और आप हमें सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर। आज फैन बॉय का भी जन्मदिन है और एक प्यारा सा मैसेज आया है, फैन बॉय सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे एज वेल। और अगर जो आप इन्हें विश कर दे हम पर, क्यों नहीं। फैन बॉय हैव अ वंडरफुल डे। हमें आपका वैसे ऑफिशियल नाम तो नहीं पता है, लेकिन जब आपको प्यार से लोग फैन बॉय ही कहते हैं तो हैव अ वंडरफुल डे, कीप स्माइलिंग एंड बेहतर विशेज हमारी ओर से, साथ में हम की पूरी टीम की ओर से। आपका भी कोई स्पेशल ओकेजन है जिसके बारे में आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, कुछ खुशियां हैं जो आप बिखेरना चाहते हैं हम की एयरवेव्स पर, तो 5599 पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर 0800 004 866 पर आप कॉल भी कर सकते हैं।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और साइंस की दुनिया में अगर जो देखें तो शायद आपको इंटरेस्ट होगी कि यहाँ पर न्यूजीलैंड में ही एक सक्सेसफुल न्यूज़ आई है कि एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है. इनफैक्ट इट इज़ अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट जिसे लॉन्च किया गया है और शायद आपने ये नाम पहले भी सुना होगा रॉकेट लैब. और रॉकेट लैब ने कल अपना जो 96th इलेक्ट्रॉन मिशन है इसको लॉन्च किया है और इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर न्यूजीलैंड. जबकि जो ये लॉन्चिंग है ये हुई है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट की और ये जो सेटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया है ताकि ये कहीं ना कहीं जाकर ये ऑर्बिट में रहेगी अबाउट 572 किलोमीटर्स के रेंज पर अबव अर्थ ये ऑर्बिट में रहेगी. और इस सिंस्पेक्टिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट का पेपर्स ये है कि ये सभी वेदर कंडीशंस में अर्थ की इमेजिंग कर सके और 24/7 इसको कोई दिक्कत नहीं रहेगी अर्थ की इमेजिंग करने में किसी भी वेदर कंडीशन में. और इसके साथ में ये हेल्प करेगी गवर्नमेंट को डिज़ास्टर रिस्पॉन्स तैयार करने के लिए. तो इनके पास में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेगा थ्रू दिस अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट की जहाँ से ये अपना रिस्पॉन्स और अच्छी तरीके से तैयार कर सके. इसके साथ में कहीं ना कहीं जनरल मॉनिटरिंग में भी ये मदद करेगी. तो ग्रेट न्यूज़ है कि जबकि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट को लॉन्च किया गया है बाय रॉकेट लैब और यहाँ न्यूजीलैंड में ही इसको लॉन्च किया गया है कल 19 सितंबर को. और इसका जो एक पिक्चर हमारे पास में है हम कोशिश करेंगे बाद में हम फेसबुक पेज में भी इसे अपलोड करें आपके लिए. लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है क्या आपको पता है कि न्यूजीलैंड में किस जगह से इस सेटेलाइट को लॉन्च किया गया है. इफ़ यू डू नो सेंड मी योर मैसेज ऑन 5599. आपको सिर्फ ये बताना है इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन साइंस एंड सेटेलाइट ऑब्जर्वेशन में आपकी ज़्यादातर की दिलचस्पी है तो आप हमें यह बताएं कि न्यूजीलैंड के किस एरिया में इसे लॉन्च किया गया कल.

0: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और बातें हो रही थी कि जो कि एर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट को लॉन्च किया गया है, तो हमने सवाल किया था कि न्यूजीलैंड में किस जगह से इसको लॉन्च किया गया है, तो 8689 आपने तो सीधा ही जवाब भेज दिया, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे। क्या आप और लिसनर्स को मालूम है कि जो एर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट जिसे कल लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड में किस जगह से इसको रॉकेट लैब ने लॉन्च किया है? अगर जो आपको एरिया मालूम है तो 5599 पर जरूर अपने नाम के साथ में मैसेज करिए।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
3: ड्राइविंग यू होम, ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
5: ये गलत बोल दिया यार।
4: और पहनता भी नहीं है उसको।
5: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो।
5: अभी ब्रांड हो गया ना।
4: रुस्बे के बाल लगे उस।
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
7: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल, 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी, अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन, कशिश नेचुरल योगर्ट।
8: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $299. Iceland fridge freezer, just $299. My Dia washing machine, just $299. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
3: TradeDepot.co.nz. Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
9: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
3: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
9: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
3: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
10: Online person, phone person, or I want to speak to a real person. MTF Finance gets it. You can apply online, give them a call, or visit one of their 55 local teams around New Zealand. And because MTF knows finance isn't one size fits all, they'll talk about it the way that works for you. However you'd like to talk about your next loan, MTF will meet you there. Search MTF Finance today. Lending criteria and checks, terms, conditions and fees apply. See mtf.co.nz/terms. You're gonna see me.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: Just chill.
0: लेजी लेजी संडे को मैं हूँ आपका साथी अभी आपका साथ दे रहा हूँ ऑन योर फेवरेट हम बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट, जहाँ पर आप सुनते हैं और सुनते ही रहते हैं। ऐसे में आपको मैं बता दूँ कि जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि किस जगह से, किस एरिया से रॉकेट लैब ने जो लॉन्च किया था एर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, तो सबसे पहले 8689 ने जवाब दिया था माहिया, और उसके बाद में अभी एक प्यारा से मैसेज आया है कीर्ति एंड यूनेश, आप सुन रहे हैं फांगरे से, आपने कहा है आपको सॉन्ग चॉइसेस पसंद है, आपको होस्टिंग भी पसंद है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इसी तरह से आप साथ देते रहे। और आपने जवाब में लिखा है कि रॉकेट लैब जो लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 है, दैट्स राइट, इट्स कॉल्ड लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1, ये माहिया में सिचुएटेड है। तो माहिया अगर जो आप देखेंगे, इट्स क्लोजर टू होक्स बे, और अगर जो आपको किसी और टाउन का नाम बताए ताकि आपको आसानी हो जानने में, तो ये साउथ ऑफ गिस्बन है और होक्स बे के करीब माहिया में ही रॉकेट लैब का जो लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स है ये सिचुएटेड है। तो ऑल ऑफ दिस आपके लिए लेकर आए थे, जबकि एक ऐतिहासिक मोमेंट है कि यहाँ से भी जो एर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स है ये लॉन्च किए जा रहे हैं। एंड यूनेश और साथ में कीर्ति और 8689 खास आपके लिए अगला ये तराना।

0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Just chill.
1: You're listening to Avineet.
2: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है जस्ट चिल का सिलसिला चलता रहेगा शाम 6 तक. हमारे स्टूडियोज में एक बज चुके हैं और ऐसे में एक और एक प्यारा सा मैसेज आया है क्वीन की तरफ से. आप भी सुन रही हैं, हेलो एवी, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच. इसी तरह से साथ देते रहें और इस हवा की शुरुआत करते हैं के के साथ में. एक प्यारा सा फिल्म आया था न्यूयॉर्क, अगर जो आपने इसको नहीं देखा है अभी तक, अ ब्यूटीफुल वॉच. लेकिन उसी फिल्म से दिस लवली सॉन्ग आप सभी के लिए आउट देयर. लेट्स स्टार्ट दिस आवर.

हम पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं आपका साथी अभी, जबकि 16 मिनट हो चुके हैं 1:00, तो मैं आपको याद दिला दूं, 2 पर आपके लिए रहेगा समाचार और स्ट्रेट आफ्टर न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं एक और एक राउंड ऑफ एपिक बॉलीवुड चैलेंज, जहां पर एक और एक गाना हमने चूज किया है आपके लिए। ये सभी कुछ रहेगा स्ट्रेट आफ्टर 2, साथ देते रहिए। इन द मीन टाइम आपको भी कुछ सुनना है तो 5599 पर आप अपने डेडिकेशंस रिक्वेस्ट हमारे पास में भेज सकते हैं।

हम पर अभी मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं कि तेरियो माउरी लैंग्वेज वीक का आज कंक्लूजन है, यानी कि आज इसे कंक्लूड किया जा रहा है। तो ऐसे में आपके साथ में एक माउरी टेम शेयर कर रहे हैं, कैयाको। आप हमें ये बताइए कि कैयाको का क्या मतलब है। 5599 पर अपना जो जवाब है हमारे पास में भेजिएगा कि कैयाको व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। अगर जो आपको पता है तो 5599 पर अपने नाम के साथ में ज़रूर भेजें। इट विल बी फन टू नो।

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
3: मुझे भी।
2: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए।
4: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if frosted tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
5: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
6: Their masalas are ground fresh, in-house every single day.
5: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
6: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
5: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
7: Hi New Zealand, Ashley America has cancelled their sofa orders and Big Save got them. So today you get half price sofas. Get 50% off selected sofas, yes, 50% off. We've got large corner suites, only $2,999. 3+2 seater suites, only $2,499. And a reversible chaise, only $1,499. These deals will not be repeated. Stock is very limited, don't miss out, only at Big Save.
8: Make the most of your deck with a stylish louver from Trade Tested. From tiny decks to massive decks, we've got a louver that'll suit you. Easy to put together and unbeatable value starting at only $3,000. Make your backyard great at Trade Tested today.
9: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है। A crime thriller inspired by true events. Daira, starring Kareena Kapoor Khan and Prithviraj Sukumaran.
10: Law का एक framework है DCP Kumar, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
11: और मैं नहीं करता।
9: Daira, now showing in cinemas.
11: वो कल जब केस है, उनकी story over है।
10: कहाँ over? अभी तो शुरुआत है।
9: Distribution partner Forum Films. Rating TBC.

0: Just Chill.
1: जस्ट चिल में मैंने आपसे पूछा था तेरियो मारुई लैंग्वेज वीक के तहत कि कायोको कयाको का क्या मतलब है, तो काफ़ी जवाब आए हैं हमारे पास में। और हमारे पास में मैसेज किया है मानसी ने, और मानसी ने लिखा है इट मींस टीचर। साथ में एश वेलिंगटन से, थैंक यू सो मच, आपका मैसेज मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों बाद हमारे शो पर आया है और आपने भी सही पहचाना कि कयाको का मतलब हुआ टीचर। इसके साथ में क्वीन आपने भी लिखा है हाय अवी, लव योर सॉन्ग सेलेक्शन, थैंक यू, कयाको मीन्स टीचर, थैंक यू सो मच आपके लिए। और जितने भी टीचर्स हैं आउट देयर, मैं आपको क्या बताऊं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब यह है, एक डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है मेरे ख्याल से, और बच्चों को संभालना पढ़ाना एंड इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। आप काफ़ी अच्छा एक नोबल प्रोफेशन काम कर रहे हो, लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, खासकर अगर जो आप ECE में हो या फिर आप प्राइमरी या कॉलेज में हो। हेड्स ऑफ टू यू, मैं आपको काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ आपके तजुर्बे को, साथ में आपके एक्सपीरियंस को, और जो आप हार्डवर्क पुट इन करते हो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप डूइंग द मार्वलस जॉब आप करते हो। मैं तो ये कहूँगा कि आप हीरो हो विदाउट वेयरिंग ए केप। और ऐसे ही जो भविष्य है एजुकेशन का, आप संभालते रहे हमारे लिए। जितने भी कयाको हैं आप आउट देयर, द नेक्स्ट वन इज़ फॉर यू, स्पेशली फॉर यू।

0: You're listening to Avineet.
1: That's right, मैं हूँ अभी आपके साथ में and it's 2 minutes after 2. तो हमेशा की तरह हर संडे की तरह now it's time to play epic Bollywood challenge जिसे last week जीता था आलिया and आदिल ने, जबकि उन्होंने दबंग का टाइटल ट्रैक सही पहचान कर अपना जो जवाब है सबसे पहले भेजा था. तो इस वीक भी एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, एक चैलेंज है आपके लिए जिसके बारे में हमेशा की तरह मैं आपको क्लूज भी बताता रहूँगा, कुछ ट्रिविया भी बताऊँगा और बेस्ड ऑन दोज क्लूज एंड ट्रिविया आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि किस गाने के बारे में बात हो रही है. जो सबसे पहले पहचान कर उस गाने को जवाब में भेजेगा 5599 पर वही इस वीक का विनर ठहराएगा. तो ऐसे में समय उतना ही होता है आपके पास में, जैसे ही हम क्लूज बताना शुरू करते हैं वहाँ से लेकर गाना बजाने से पहले उस बीच के समय में आपको अपना जो जवाब है हमारे पास में भेज देना पड़ेगा. तो आज का भी एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, इसे अब आपको बताने जा रहे हैं. सो फ्लेक्स योर फिंगर्स, हियर इट गोज़. 1999 की ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें SRK एंड मेकर्स अब्बास मस्तान ने they reunited for another time, for a second time and for a final time after Bazigar. यानी कि बाजीगर में तो ये साथ में थे, इन्होंने काम किया था, लेकिन इसके बाद में for the final time इस फिल्म में उन्होंने काम किया था. इस फिल्म से expectations काफ़ी थे, काफ़ी बड़ी थी, लेकिन after Bazigar लेकिन ये फिल्म चली नहीं, यानी कि उतनी नहीं चली. इस फिल्म की कहानी है एक बम्बलिंग डिटेक्टिव की जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाता है बट इज़ स्ट्रगलिंग टू फाइंड क्लाइंट्स. फिर उसे एक केस मिलता है जो एक मेजर केस, जो कि फिल्म की मेजर प्लॉट है, उससे जाकर जुड़ जाती है जिसमें एक मिनिस्टर की एसेसिनेशन होने को है. इट ब्रिंग्स SRK एंड ट्विंकल खन्ना टुगेदर फॉर द ओनली टाइम, यानी कि उसके बाद में इन दोनों कलाकार ने साथ में फिल्म नहीं की. इस फिल्म के काफ़ी सीन्स हेवली इंस्पायर्ड है फ्रॉम हॉलीवुड मूवीज़, जिनमें शामिल है रश आवर और इफ़ लुक्स कुड किल. ये फिल्म बाकी SRK फिल्म्स जितनी नहीं चली क्योंकि शायद एक्सपेक्टेशंस थी एक थ्रिलर या फिर रोमांटिक फिल्म की, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी अ कॉमेडी वन. लेकिन स्पेशल बात इस गाने की क्या है कि ये जो गाना है इस फिल्म का टाइटल भी है और इस गाने के टाइटल से और इस फिल्म के टाइटल से SRK को आज भी एड्रेस किया जाता है. इस फिल्म के और स्टारकास्ट में थे जॉनी लीवर, राखी, दीपक तिजोरी, अमरीश पुरी और साथ में सचिन खेदेकर जैसे कलाकार. इस फिल्म की म्यूज़िक ने फिल्म से बेटा परफॉर्म किया था. म्यूज़िक कंपोज किया था अनु मलिक ने. इस फिल्म के सारे गाने अभिजीत ने गाए थे. इन दोज डेज अगर जो आप रिमेंबर करोगे तो SRK का वॉइस था अभिजीत, यानी कि काफ़ी गाने SRK के लिए अभिजीत ने गाए. कमिंग बैक टू द स्पेशलिटी ऑफ दिस मूवी कि आज भी SRK को बॉलीवुड में इसी फिल्म के टाइटल से और इस गाने के टाइटल से रेफर किया जाता है. इस साल बाद में अराउंड क्रिसमस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि SRK की जो फोर्थ कमिंग मूवी है किंग, उसे रिलीज़ किया जाएगा. तो किंग से मिलता जुलता आज का गाना भी है. इस फिल्म के लिए SRK को नॉमिनेट किया गया था फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल, हालांकि उनको अवार्ड नहीं दिया गया था. फिल्म फेयर में गोविंदा को उस साल अवार्ड मिला था फॉर हसीना मान जाएगी. मेड एट अ बजट ऑफ 11 करोड़, फिल्म ने बिजनेस किया था कुछ 31 करोड़ का. इस फिल्म की टाइटल से और गाने से एक रेपा का भी फेमस नाम है. तो अगर जो आपको मालूम है कि क्या गाना है, कौन सा गाना है, अपना जवाब आप जल्दी से भेज दीजिए हमारे पास में. द बिगेस्ट क्लू और गिव अवे आई कैन गिव इज कि इस टाइटल से, गाने के टाइटल से, फिल्म के टाइटल से आज भी उसको, उस कलाकार को, उस हार्ट थ्रोप को आज भी रेफर किया जाता है, विच इज़ SRK. सो अपना जवाब 5599 पर ज़रूर भेजें. अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अभिजीत की आवाज़ में वही गाना.

That's right, बादशाह ऑफ बॉलीवुड SRK की ये फिल्म थी, और अगर जो आपने इसे नहीं देखा, इट्स अ लाइट हार्टेड कॉमेडी फिल्म जहां पर काफ़ी ट्विस्ट थे इस फिल्म में, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी, लेकिन एक एंटरटेनमेंट मूवी है जिसे आप इंजॉय आज भी कर सकते हैं। और जबकि मैं देख रहा था, किंग के बारे में बात हुई थी, इस मूवी को स्केड्यूल किया गया है फॉर रिलीज़ इसी साल December 24th को, यानी कि क्रिसमस टाइम एक ऐसी फिल्म आ सकती है जिसे आप सिनेमाज में जाकर इंजॉय कर सकते हैं, विच इज़ किंग। बहुत सारे जवाब हमारे पास में आए हैं। मैंने नोटिस किया है, जब भी SRK का गाना चूज़ होता है एपिक बॉलीवुड चैलेंज में, उस वीक नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनकी स्टारडम और फैंस के बारे में काफ़ी कुछ कहती है। और आज के जो लिस्ट है इनमें शामिल है अंजलि, आपने भी खेला है इस गेम को, थैंक यू सो मच। पहली बार मेरे ख्याल से आपके पास से मैसेज आया है। इसके अलावा शिवानी करका से भी सुन रही हैं, थैंक यू सो मच, आपका भी जवाब मिला है। एमी है, आपने भी सही गाने को पहचाना। इसके साथ में रवनील, आपने भी आज शायद पहली बार इस खेल को खेला है हमारे साथ में। एंड 560 आपने भी सही जवाब देकर भेजा था, साथ में 6082 आपका भी जवाब सही आया। और उसके बाद में तरुण शर्मा, आपने भी सही पहचाना था। गौरव, आपका भी जवाब मिला है। इसके साथ में राहुल, आपने भी जवाब भेजा था, आपने दो बार मेरे ख्याल से अटेम्प्ट किया है। इसके साथ में एक और एक नंबर था 00634, आपका भी जवाब आया है। लेकिन आज के जो हमारे विनर ठहरे हैं या फिर ठहरी है, मुझे मालूम नहीं है, एश फ्रॉम वेलिंगटन, आपने सबसे पहले जवाब भेजा था। बहुत दिनों के बाद आज आपने इस गेम को खेला है, और इसके साथ में आपकी जो टैली है ये हो जाती है विद 3 wins। एश फ्रॉम वेलिंगटन, आपने 3 बार इस कंपटीशन को जीता है। फाल्गुनी अभी भी लीड कर रही है, लेकिन आजकल फाल्गुनी खेल नहीं रही है फॉर सम रीज़न। उसके बाद में श्रुति है, तो दैट्स हाउ सीरियस वी आर कि टैली करके रख रहे हैं कि किसके पास कितने विंस है। लेकिन आज एश ने इस कंपटीशन को जीता है, थैंक यू सो मच आप सभी को, इतने ध्यान से आपने सुना और फिर इस खेल में भी पार्ट लिया। और इसके साथ में अगले वीक एक और एक कोई गाना चूज करके लेकर आएंगे, विच विल बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी के लिए आप सभी के नाम ये गाना करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एश फ्रॉम वेलिंगटन। साथ देते रहिए, इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और बातें और भी करने को है।

हम्बर इज 23 मिनट्स आफ्टर 2, मैं अभी आपका साथ दे रहा हूं और जो EPL इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो खेल हुए हैं यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग और यूं कहें कुछ अपसेट्स भी हुए, जबकि ब्रेंटफोर्ड ने चेल्सी को कल 3-0 से हराया। इसके बाद में स्पर्स और एस्टन विला के बीच में जो खेल हुई, विला ने इस खेल को 3-2 से जीता है। स्पर्स का जो डाउन ट्रेन है अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद में एवर्टन ने इप्सविच को 1-0 से पछाड़ा और इसके साथ में जो दूसरा अपसेट हुआ, ब्राइटन ने आर्सेनल को 3-0 से हराया। आर्सेनल जो कि टॉप ऑफ द टेबल थी, अब ब्राइटन ने एक और एक सरप्राइज दिया है, या यूं कहें एक शॉक दिया है आर्सेनल को 3-0 से हराकर। जबकि अभी ब्राइटन के जो पिछले मैच थी यहां पर उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। सो ब्राइटन इज़ ऑन अ गुड रन। इसके बाद में न्यूकासल और हल के बीच में जो खेल हुआ, न्यूकासल की जीत हल के खिलाफ 2-1 से हुई। उधर कोवेंट्री ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1-0 से आज सुबह सुबह हराया। अब कल सुबह जो खेल होने को है, इसमें 1 AM लिवरपूल और बोर्नमाउथ के बीच में खेल रहेगा। उसके बाद में सिटी टेक्स ऑन संडरलैंड और सुबह 1 पर लीड्स और पैलेस के बीच में भी खेल रहेगा। और जो इस वीक का जो आखिरी खेल है, आखिरी मैच बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, यहां पर फुलहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड 3:30 इन द मॉर्निंग एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी और ईगली अवेटेड रिजल्ट है। जबकि काफ़ी कुछ जो पोजिशन है टेबल पर इस रिजल्ट के बाद में बदल सकता है।

0: right there.
1: Streaming on Rover.
2: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
3: When India comes to town, Ao Tearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
4: Briscoes, make some noise!
5: It's our birthday and everyone's invited to New Zealand's biggest house party at Briscoes, featuring 30 to 70% off housewide till Sunday. Plus, we're giving away $25,000 cash. See online for T&Cs.
6: And then Mrs. Singh se maine pucha, "Enna achha khane ke saath kitchen mein reels aur TikTok kaise bana leti ho?" Boli, "Bas, mera focus hai." "Ha,
7: achha, batao. Tuhanda focus focus. Sada kuch nahi."
8: "Shh, Mrs. Singh."
9: "Are pammi ji, mera focus means mere ghar ka kitchen, jisko design kiya hai Focus Kitchens ne."
10: Modern classic shaker style kitchens, Focus Kitchens, Unit K, 33 Wansley Road, Otahuhu. Call 09281 3050 or visit focuskitchens.co.in.
11: Zabardast hits.
12: Shuru ho jaye to rukte nahi.
11: Playing Bollywood's biggest hits. Hum.
13: आप रोवा पर साथ में 104.2 FM पर आप हमें सुन रहे हैं और इसके अलावा एक और एक जरिया है जहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे हम फेसबुक पेज पर आप जाकर फॉलो करिए ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स और जो पोस्ट हम अपलोड करते रहते हैं ये आपको पता चलते रहे। इसके अलावा काफ़ी समय वहां पर भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं और इसमें आप भाग भी ले सकते हैं, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा हम फेसबुक पेज को। और इसके साथ में अगर जो आज आप कुछ सुनना चाहते हैं, कोई ऐसा गाना है जिसे आप सुनना चाहते हैं, तो 5599 पर आप इसकी रिक्वेस्ट भी हमारे पास में भेज सकते हैं।

हम पर मैं हूं अभी आपका साथ दे रहा हूं। और अगर जो आप रोवा पर जाकर फिजी कीर्तन संग्रह को सुनते हैं और आप इसको हमेशा सुनते रहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इसको आप रिवैम्प किया जा रहा है। एक नई सेट ऑफ रिकॉर्डिंग होगी ऑन फ्राइडे 25th ऑफ सितंबर, कमिंग वीक फ्राइडे को वैदिक सेंटर पापाटोय में यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी, जहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट्स है फिर उसको रोवा पर डाला जाएगा। अब ऐसे मौके पर आपको इन्वाइट कर रहे हैं, अगर जो आपको रिकॉर्डिंग आकर देखनी है तो आपके लिए एंट्री बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ पर आप जाकर हमें जो कलाकार हैं उनको आप सुन भी सकते हैं, और इसके अलावा रिफ्रेशमेंट्स भी अवेलेबल रहेंगी जो आप खरीद भी सकते हैं। एंड आप उसी समय जो भक्ति रस कीर्तन आप लाइव सुनेंगे, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हम करते रहेंगे, वहाँ पर हमारे साथी विजय भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और यहाँ पर आकर आप हमसे मिल सकते हैं। ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज रहेंगी आपको प्राइजेस भी जीतने के लिए। सो मार्क द डेट फ्राइडे 25th ऑफ सितंबर एट वैदिक सेंटर पापाटोय, यहाँ पर आपको पहुँचना है।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: You're invited to IKEA Open House. Join us in store for 4 days of offers, inspiring ideas and family fun. Visit your local IKEA from 18 to 21st of September.
3: IKEA.
4: Hungry? Feel like pasta? Or a pie? How about pasta in a pie? Zed's new beef brisket mac and cheese pie is what you need. Head to Zed and for only $7.50, you can grab a delicious beef brisket mac and cheese pie. Zed is for the love of pies.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
7: हम पर, मैं हूँ आपका साथी अवि, और कुछ ऐसे न्यूज़ भी लेकर आता रहता हूँ जो एज अ कम्युनिटी हमको जानना ज़रूरी है, खासकर अगर जो सरकार की कुछ नीतियों में बदलाव आती है। तो हेल्थ मिनिस्टर ऑनरेबल ब्राउन ने बताया है कि जो पैरामेडिक्स एम्बुलेंस में होते हैं, अब इनके पास में अथॉरिटी रहेगी कुछ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो एक लिस्ट तैयार किया गया है जिसमें 232 मेडिसिंस शामिल है, खासकर अगर जो कुछ ऐसी सिकनेस है जो कवर करेगी कॉमन इन्फेक्शंस को, या फिर रिपीट प्रिस्क्रिप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म कंडीशंस, या कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर अर्जेंट केयर नीडेड है, तो जो पैरामेडिक्स होंगे एम्बुलेंस में, ये आपके लिए प्रिस्क्रिप्शंस अब लिख सकेंगे। ऐसा हेल्थ मिनिस्टर ऑनरेबल ब्राउन ने बताया है, और ये जो न्यूज़ है अवेलेबल है beehive.govt.nz पर।

दिस इज मी अवि कीपिंग योर कंपनी ऑन हम। और जबकि कुछ 9 मिनट बाकी है 3 बजने में, तो ऐसे में कई जगह पर आप भी तैयारी कर रहे होंगे अपने टी ब्रेक के लिए। बस मैं भी ऐसा ही करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मेक माई टी और हैव अ सिप। और इसके साथ में आप भी अगर जो अपने चाय या कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हैं, तो आपको खास शामिल करते हैं इस प्रोग्राम में, जो है जस्ट चिल ओनली ऑन द एयरवेव्स ऑफ हम, जिसे आप सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए। वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
6: Air New Zealand is on sale now at Flight Centre. Fly seat only return to Sydney from 549 or Raro from 589 per person. Book in store or online today. Fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
7: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
1: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है। अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
9: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
10: और मैं नहीं करता।
1: दायरा नाउ शोइंग इन सिनेमास।
10: ओपन शट केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
9: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
1: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग टीबीसी।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर मैं हूँ अभी आपका साथ दे रहा हूँ एंड इज जस्ट आफ्टर थ्री. इसका मतलब ये हुआ वी आर हाफ वे थ्रू द शो, जबकि छः तक हमारा और आपका साथ रहेगा. और अभी थोड़ी देर में आपके साथ में एक सिनेरियो बेस्ड नंबर्स गेम लेकर आऊँगा, जहाँ पर एक सवाल आपसे पूछूंगा और अगर जो आपको नंबर्स में दिलचस्पी है और आपको चैलेंजेस पसंद है तो इस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा एंड उसके बाद में जो अपना जवाब है आप 5599 पर भेज सकेंगे. बस कुछ गानों के बाद में ये सवाल मैं आपके लिए तैयार करके लेकर आऊंगा. सो कीप लिसनिंग, कीप हमिंग. बस थोड़ी देर में ये जो नंबर्स गेम है आपके साथ में खेलने वाला हूं.

हम पर मैं अभी लेकर आया हूं आपके लिए नंबर्स गेम का जो सवाल है इसको आपको ध्यान से सुनना होगा, थोड़ा टेढ़ा है और अगर जो कुछ सिंपल हो तो फिर मजा ही क्या है, तो थोड़ा ट्विस्टेड है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। राजू को ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर तक सीढ़ी लेकर जाना है, ठीक है, राजू को ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर तक सीढ़ी लेकर जाना है, बेचारा राजू। ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर तक राजू को 1 मिनट लगा, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर तक पहुंचने के लिए राजू को 1 मिनट लगा वहां तक पहुंचने में। अब जैसे जैसे राजू फ्लोर चढ़ता गया, एक एक मिनट जुड़ता गया। ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर तक 1 मिनट लगा, लेकिन उसके बाद हर एक फ्लोर पर 1 मिनट जुड़ता गया। क्यों जुड़ा? क्योंकि राजू थकता गया। अब आप

आपको ये बताना है कि ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर तक जाने में राजू को कितना टाइम लगा। जो आपका क्लू है यह है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर पहले फ्लोर तक 1 मिनट लगा, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे वो फ्लोर चढ़ता गया हर एक फ्लोर पर 1 मिनट और ज़्यादा जुड़ता गया। तो जब तक राजू 10th फ्लोर तक पहुँचा, हालांकि इसकी बुरी हालत तो हुई होगी, लेकिन समय कितना लगा राजू को 10th फ्लोर तक पहुंचने में, यही आपको जवाब में 5599 पर भेजना है।

0: Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के.
2: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
3: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
4: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
5: Bunnings helps you to elevate your garden in spring, from getting the une soil ready to our wide range of nake nake plants and hua whenua veggies. Come and hear the kōrero of us to get your māra humming. Bunnings
6: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quick Step. Visit your local Flooring Extra showroom today.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
8: हम playing Bollywood's biggest hits.
10: हम पर मैं हूँ आपका साथी. अभी एक ब्रेन टीजर सवाल हमने आपसे किया था एंड कुछ लोग होते हैं जो नंबर्स के साथ में दे आर रियली गुड. जैसे ही मैंने सवाल किया था अशोक ने और साथ में प्रिया ने तुरंत अपना जो जवाब है ऑलमोस्ट इंस्टेंटली भेज दिया था, लेकिन दो ही जवाब आए तो मैंने सोचा एक बार फिर आपको छेड़ दूं और ये सवाल दोबारा आपसे पूछ लूं. ये सिनेरियो बेस्ड है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. राजू को ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर तक सीढ़ी लेकर जाना है. ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर तक राजू को 1 मिनट लगा पहुँचने में. अब जैसे जैसे राजू फ्लोर चढ़ता गया, एक एक मिनट एक एक फ्लोर में बढ़ता गया. ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर तक 1 मिनट लगा, लेकिन उसके बाद हर एक फ्लोर पर 1 मिनट यानी कि 1 मिनट जुड़ता गया. क्यों बढ़ा? क्योंकि राजू थकता गया. अब आपको ये बताना है कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक जाने में राजू को कितना वक्त लगा. यही आपको ऐड करके 5599 पर भेजना है हमारे पास में एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आप कैसे इसको वर्कआउट करते हो.

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और क्वीन का भी मैसेज आया है, उसने भी ट्राई किया है, थैंक यू सो मच। तो आखिरी बार इस सवाल को एक बार फिर आपके लिए दोहरा देते और थोड़ी देर में इसका जो जवाब है आपके साथ में शेयर करेंगे। राजू है, बेचारा राजू को ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर तक सीढ़ी लेकर जाना है। ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर तक राजू को 1 मिनट लगा पहुँचने में। अब जैसे जैसे राजू फ्लोर चढ़ता गया, एक एक मिनट बढ़ता गया। और क्यों बढ़ता गया? क्योंकि राजू थकता गया। तो आपका जो क्लू है, ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर तक 1 मिनट लगा, लेकिन उसके बाद हर एक फ्लोर पर 1 मिनट और बढ़ता गया। और आपको यही अंदाज़ा लगाना है, वर्कआउट करना है कि जब तक राजू ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर तक पहुँचेगा कितना वक्त राजू को लग जाएगा। 5599 पर ये कुछ नंबर्स का गेम है और इंटरेस्टिंग भी है, सिनेरियो बेस्ड भी है। तो आप अपना जवाब हमारे पास में ज़रूर भेजें।

0: Hollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: Ladies and gentlemen,
0: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
7: Dash!
8: Bunnings helps you to elevate your garden in spring, from getting the une soil ready to our wide range of nake nake plants and hua whenua veggies. Come and have a kōrero of us to get your māra humming.
9: Bunnings Warehouse!
10: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800 634 234. TCs and lending criteria apply.
11: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
0: कभी भी कहीं भी
12: मस्त मलंग
13: हम पर रवि का साथ है और अब समय हुआ कि आपको जवाब बताए. हालांकि राजू को लिफ्ट ले लेनी चाहिए थी जबकि 10th फ्लोर तक जाना था, लेकिन जो सही जवाब है संजना ने मेंगरे से भेजा है. साथ में क्वीन ने ईस्ट ओकलैंड फ्लडबुश से जवाब दिया है और इसके साथ में एक और एक जवाब आया था 77282. इसके साथ में अशोक और आपने प्रिया ने जवाब दिया था, तो सही जवाब था 55 मिनट्स. राजू आप थोड़ा सा रवि आप थोड़ा सा चूक गए थे, माउंट वेलिंगटन से आप सुन रहे हैं, लेकिन आपका चीयर्स का अंदाज अच्छा लगा. तो कीप इंजॉइंग एंड कीप हमिंग, संडे इवनिंग है, आप बिल्कुल इंजॉय कीजिएगा. तो सही जवाब था 55 मिनट्स.

मैं अभी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ एंड कमिंग अप एट 4 आपके लिए रहेगा लेटेस्ट न्यूज अपडेट. फिर उसके बाद में और भी बातें चलते रहेंगी आपके साथ में. संडे का कारवा है, सफर है ये जस्ट चिल का, और मैं हूँ आपका साथी. अभी प्यार बांटता रहूंगा.

हम पर मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ बॉलीवुड की दुनिया में। अगर जो आपने नेटफ्लिक्स पर मुसाफिर कैफे देखी है और आपको ये सीरीज अच्छा लगा था देखने में, तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब विक्रांत मसी इस मुसाफिर कैफे के मॉडल पर दो जगहों पर अपना जो कैफे है ये खोलने वाले हैं। पहला तो हिमाचल प्रदेश में और दूसरा उत्तराखंड में। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हाथ लगा है कि कुछ 20 रूम्स का जो आर्टिस्ट रेसिडेंसीज है ये भी बनाया जाएगा। तो जो मुसाफिर कैफे है जिसे आपने नेटफ्लिक्स के सीरीज पर देखा था, अब फ्रॉम रील टू रियल लाइफ ये एस्टेब्लिश हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम बॉलीवुड।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
6: कहानी of Indelible Homes.

0: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
1: PB Tech's Mega Spring Sale is on now. Save on a huge range of tech, computing, phones, gaming, audio, smart home and more. Don't miss out.
2: Check, check with PB Tech.
3: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
4: हम पर मैं हूँ आपका साथी अभी और जबकि ये न्यूजीलैंड में इलेक्शन ही आया है और ऐसे में आप भी अपना मन बना रहे होंगे कि किस पार्टी को वोट करें या फिर ना करें, तो मैं आपको बता दूं कि सैंडी और रुजबे ने अटेम्प्ट किया है हर थर्सडे को अपने ड्राइव शो में वो किसी ना किसी एक पार्टी लीडर से बातें करने की कोशिश करेंगे। तो इस बार के लिए उन्होंने बातें की थी डेविड सिमो से, जहां पर काफ़ी सवाल जवाब हुए हैं। और अगर जो आप इस कॉन्वर्सेशन को सुनना चाहते हैं कि एक्ट पार्टी लीडर डेविड सिमो का क्या कहना है, उनकी पॉलिसी क्या है, उनका विजन क्या है, तो ये सभी कुछ आप जब ड्राइव लिखकर 5599 पर भेजोगे तो ये लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसके बाद में सुनने के बाद में शायद आप भी कुछ क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए।

हम पर मैं अभी आपका साथी हूं और आपके गाने के सिलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में हम म्यूजिक स्टेशन है रोवा पर। तो सबसे पहले अगर जो आपने रोवा डाउनलोड नहीं किया है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप किसी से डाउनलोड करवा लो अपने फ़ोन पर ताकि आपके पास में एक्सेस मिल सके हम म्यूजिक स्टेशन का, जहाँ पर हम रिवाइंड में आप 60s और 70s के गाने सुन सकते हैं। तो अक्सर संडे इवनिंग कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ, ये 60s या 70s के गोल्डन हिट सुनना पसंद करते हैं, तो आप हम रिवाइंड पर इसे सुन सकते हैं। इसके अलावा हम 80s जुकबॉक्स आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर 80s के जो गाने बॉलीवुड के गाने हैं इसे आप जाकर सुन सकते हैं। इसके साथ में फिजी भजन्स का भी एक ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर 24/7 फ्री भजन स्ट्रीमिंग आप सुन सकते हैं अपने कन्वीनियंस पर। और जितने भी पंपिंग पंजाबी हिट्स है इसको आप चर्दी कला पर सुन सकेंगे। साथ में फिजी कीर्तन संग्रह, जिसके बारे में हमने आपको बताया है कि 25 सितंबर को रिकॉर्डिंग भी होगी यहाँ वैदिक सेंटर पापटोई में, जिसके बाद में इसको रिवैम्प भी किया जाएगा ताकि एक नया सिलेक्शन भी आप सुन सके। तो फिजी कीर्तन संग्रह, जहाँ पर फिजी के आर्टिस्ट के आवाज़ में जो भक्ति रस कीर्तन है इसे भी आप जाकर सुन सकेंगे। राहत फतेह अली खान, इनकी भी अलग फैन फॉलोइंग है, जो इनके गाए हुए सूफी है, कवालियाँ हैं, ये भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं।

हम पर मैं अभी आपके साथ में एक फैक्ट ऑफ लाइफ शेयर करना चाहता हूँ, इस पर थोड़ा जोर दीजिएगा। ये एक सच है, लोग आपके बारे में अच्छा सुनते हैं तो फिर शक करते हैं, और जब आपके बारे में बुरा सुनते हैं तो तुरंत यकीन कर लेते हैं। है ना सोचने वाली बात कि अगर जो आपके बारे में कोई अच्छी बातें करे तो जो सुनने वाला है वो शायद थोड़ा सोचेगा, शक करेगा, लेकिन अगर जो कहीं आपके बारे में कुछ बुरा सुन ले तो उसको तुरंत सच मानकर और लोगों तक भी पहुंचा देगा।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन। Playing Bollywood's biggest hit.

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर समय की ओर ध्यान करते हैं तो इस जस्ट आफ्टर फाइव 12 बजे से आपका साथ देते आ रहे हैं एंड नाउ वी आर इन द फाइनल आवर ऑफ द शो जबकि 6 तक हमारा और आपका साथ रहेगा इसी तरह से 104.2 FM साथ में रोवा पर आप साथ देते रहें।

अगला गाना बजाने से पहले मैं आपको हम पर एक ट्रिविया दे देता हूँ। इस गाने को सिर्फ केके और सुनिधि चौहान ने नहीं गाया था, बल्कि सोनू निगम ने भी एक वर्जन इसका गाया है जो अब YouTube पर अवेलेबल है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जब फिल्म में गाना पिक्चराइज हुआ तो सिर्फ केके के आवाज़ में ही पिक्चराइज हुआ एंड इट बिकेम अ रेज। ये गाना काफ़ी लोगों को पसंद है और केके ने काफ़ी जस्टिस किया है इस गाने को। लेकिन अगर जो आप दूसरा वर्जन सुनना चाहते हैं सोनू निगम की आवाज़ में, तो YouTube पर आप इसे सुन सकते हैं।

हम पर मैं अभी आपका साथ दे रहा हूँ। एक और एक कम्युनिटी न्यूज़ है मेरे पास में, जहाँ पर वेद प्रचार वीक को मनाया जाएगा 28 सितंबर से लेकर संडे 4 अक्टूबर तक एट 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापटोए, जहाँ पर हर इवनिंग 6:20 PM से यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत होगी। इस साल का हाईलाइट ये है कि 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी मनाया जाएगा, जबकि आर्य समाज को न्यूजीलैंड में कुछ 30 ईयर्स हो गए हैं एस्टेब्लिश हुए, तो ये भी मार्क किया जा रहा है। तो वेद प्रचार मंडे 28 सितंबर से लेकर संडे 4 अक्टूबर तक आप जा सकते हैं 32 ग्लेसगो एवेन्यू पापटोए हर इवनिंग 6:20 PM से।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Briscoes, make some noise!
3: It's our birthday and everyone's invited to New Zealand's biggest house party at Briscoes, featuring 30 to 70% off housewide till Sunday. Plus, we're giving away $25,000 cash. See online for T&Cs.
4: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
5: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है. अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन.
6: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ.
7: और मैं नहीं करता.
5: दायरा नाउ शोइंग इन सिनेमास.
7: वो कौन सा केस है? उनकी स्टोरी ओवर है.
6: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है.
5: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग टीबीसी.

हम पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं अभी आपका साथ दे रहा हूं टिल सिक्स। और किसी ने कहा है कि जब आपको मुश्किलें 100 रीजन दे टूट जाने के लिए, बिखर जाने के लिए, रोने के लिए, तो आप उन मजबूरियों को पलट कर जवाब दे और ये दिखाए कि आपके पास में 1000 रीजन है स्माइल करने के लिए, मुस्कुराने के लिए और स्ट्रोंग रहने के लिए।

हम पर आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। 12 बजे से आपके लिए जस्टिन लेकर आए थे स्टूडियोज में, लेकिन समय कब और कहाँ कैसे चला गया पता ही नहीं लगा, क्योंकि आपके साथ में जब भी होते हैं समय को पर लग जाते हैं, टाइम जस्ट फ्लाइज। तो आप अपना आज के लिए ख्याल रखिएगा, जबकि संडे इवनिंग स्टिल यंग, तो इन्जॉय कीजिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल एक नई वीक की शुरुआत हो रही है, ऐसे में बेस्ट विशेस दिए जा रहे हैं। और जाते जाते आपके लिए एक गज़ल भी छोड़े जा रहे हैं, इसे भी आप इसका भी मज़ा लें। डू टेक केयर, फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। बाय।

गुड इवनिंग, संडे इवनिंग 6 बज चुके हैं। मैं हूँ रुजबे, आपके साथ यहाँ पे हम के स्टूडियोज में आ गया हूँ। 104.2 FM रोआ ऐप के जरिए आप हमें सुन रहे हैं, तो गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। संडे नाइट मेलोडीज ये शो का नाम है और दिल से आपके लिए ये शो लेकर आता हूँ, मतलब आ रहा हूँ आज काफी समय बाद। तो इस शो में एक्सपेक्ट क्या करना है आपने? एक्सपेक्ट करना है सम मेलोडियस गाने, इधर उधर की बातें, थोड़ी नटखट नहीं होगी आज बातें, थोड़ी प्यार भरी बातें होगी आज शायद, या डिपेंड करता है आपका मूड किस हिसाब से, उस हिसाब से आपको बातें यहाँ पे सुनाऊंगा। वेल वी आर ऑलमोस्ट मिड, क्या अभी टूवर्ड्स एंड ही पकड़ लो सितंबर के, एंड अक्टूबर बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेदर का हाल भी काफ़ी बेहाल होने वाला है, मतलब धूप बहुत ज़्यादा होने वाली है, गर्मी ज़्यादा बढ़ने वाली है। बट आप मुझे उससे पहले बताइए कि आपका ये वीकेंड गया कैसा? काफ़ी लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, फेस्टिव टाइम चल रहा है काफ़ी लोगों के घरों में, गणेश उत्सव सेलिब्रेट हो रहा है। आपके यहाँ पे क्या सेलिब्रेट हो रहा है इस वीकेंड पे, मेरे को ज़रूर बताइए 5599 पे मैसेज करते हुए।

सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट संडे नाइट मेलोडीज, ये शो आपके लिए जारी है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सैंडी और मैं हम जा रहे हैं बाली और बैंकॉक, एंड हम जाने वाले हैं ईस्टर 2027 में। अगर आप भी हमारा साथ देना चाह रहे हैं, अगर आपको कंपनी की ज़रूरत है टू ट्रैवल अलॉन्ग, तो हमारे साथ आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। सन टूर्स के अनिल भाटिया के साथ हम जा रहे हैं, आप अनिल भाटिया को कांटेक्ट कीजिए सन टूर्स के, जो आपको और भी इन्फॉर्मेशन देंगे इस ट्रिप के बारे में। बट यार, जॉइन अस सैंडी एंड मी टू आर एपिक ट्रिप टू बाली एंड बैंकॉक। ढेर सारी मस्ती हम वहाँ पे करने वाले हैं, देयर इज गोइंग टू बी सम एडवेंचर्स दैट वी आर गोइंग टू डू। और अगर आप सोच रहे हो ना कि यार एडवेंचर, यार मेरे को तो एडवेंचर इतना नहीं, आपको मज़ा आएगा। आप बस आइए, आप और ट्राई कीजिए। यू नो समटाइम्स इन लाइफ वी हैव टू जस्ट लेट इट गो, जैसे हमारे श्री ऋतिक रोशन ने कहा था, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, लेट इट गो। बस वही करना है हमने, लेट इट गो करना है और इन्जॉय करना है बाली, एंड देन उसके बाद बैंकॉक में भी लेट इट गो करके शॉपिंग ढेर सारी वहाँ पे इन्जॉय करनी है। वैसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, बहुत सारा फन है जो हम करने वाले हैं। और अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो एक चाय पे चर्चा इवेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम, जिसके डिटेल्स भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ थोड़ी देर में। बट या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप हमें मैसेज कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके या फेसबुक पे जाके आप मैसेज हमें लिख सकते हो, एंड वील डेफिनेटली गेट बैक टू यू। या फिर सन टूर्स को गूगल पे सर्च कीजिए और अनिल भाटिया को कांटेक्ट कीजिए और वो आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे।

आप सुन रहे हैं हम दिल से, ये शो आपके लिए जारी है। और मुझे यहाँ पे मैसेज आया है कि बाली बैंकॉक जाने के लिए और डिटेल्स अगर चाहिए तो क्या करना है, तो ड्राइव लिखकर भेजिएगा और हम वहाँ पे आपको एक फॉर्म हमने एक रखा है, उस फॉर्म में आपको बस आपके डिटेल्स फिल इन करने हैं एंड वील गेट इन टच विद यू एंड प्रोवाइड यू विद ऑल दी अदर डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रिप। सो ड्राइव इस कीवर्ड को आप लिखकर भेजिएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, रोवा ऐप को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। रोवा ऐप के थ्रू आप हमारे अलग अलग म्यूज़िक स्टेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे पॉडकास्ट एंजॉय कर सकते हैं, ढेर सारे पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आते हैं वहाँ पे। सो डेफिनेटली रोवा ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए, फ्री टू डाउनलोड ये ऐप है एंड इसके ज़रिए यू कैन लिसन टू अस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। गानों का सिलसिला भी जारी है आपके लिए एंड दिल से इस शो में आपके लिए एक बहुत ही सोलफुल ब्यूटीफुल वॉइस लेकर आ रहा हूँ। वैसे इनका सीज़न बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, अभी गणेश चतुर्थी के बाद यूजुअली इनका सीज़न अभी की तैयारी हो जाती है शुरू। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट नन अदर देन फाल्गुनी पाठक, जिनका नवरात्रि में सीज़न शुरू हो जाता है ना। वी जस्ट लव गरबा, डोंट वी? तो अभी के लिए एंजॉय कीजिए एक छोटा सा टीज़र।

104.2 FM और रोआ ऐप के जरिए यू आर लिसनिंग टू हम. मैं हूँ रुजबे, आज आपके साथ आज की शाम रात तक आपके साथ ही रहूँगा मैं 12 बजे तक. लेकिन आपको मैं बता दूँ, फ्राइडे नेक्स्ट लाइक दिस कमिंग फ्राइडे 25th ऑफ सितंबर वैदिक सेंटर पापा टोयोटो में होने वाला है रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग ऑफ हम कीर्तन संग्रह. अगर आपको भी इसका हिस्सा बनना है तो आप यहाँ पे ज़रूर इसका हिस्सा बन सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज़ जॉइन द हम टीम. एंट्री फ्री है सभी के लिए. रिफ्रेशमेंट्स और कावा विल बी ऑन सेल और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगे टू विन प्राइजेस. तो हम फीजी कीर्तन संग्रह, आप को अगर इसके लाइव रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनना है पापा टोयोटो में, पहुँच जाना आप 25th सितंबर को वैदिक सेंटर में. इसी के साथ साथ कुछ गाने भी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल गाने. आपकी अगर कोई ऐसे रिक्वेस्ट है, डेडिकेशंस है, 5599 इज़ द नंबर, आप मैसेज कर सकते हैं.

0: Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
2: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
3: अब हमारा क्या होगा?
4: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
2: तो क्या करें?
5: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
6: Briscoe's, make some noise!
7: It's our birthday and everyone's invited to New Zealand's biggest house party at Briscoe's, featuring 30 to 70% off housewide till Sunday. Plus, we're giving away $25,000 cash. See online for T&Cs.
8: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty, other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
9: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
10: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
11: The beat of Bollywood.
12: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
11: दिल से, दिल से.
13: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. और यहाँ पे पूजा, आपका मैसेज आया है और आपने ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाना आपके फ्रेंड के लिए यहाँ पे रिकमेंड मतलब भेजा है, रिक्वेस्ट किया है. तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड के लिए, ये स्पेशल फ्रेंड के लिए ये गाना मैं प्ले कर रहा हूँ. और ये एक्चुअली मैं बता दूँ कि ये सिर्फ आपके स्पेशल फ्रेंड का नहीं बट काफ़ी लोगों का फेवरेट गाना है, मी इंक्लूडेड. गजेंद्र वर्मा की आवाज़ और ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए, दिल से मैं.

with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई

गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मेरा नाम है रुजबे और आज संडे की शाम मेरे नाम मतलब मेरे साथ हो आप और आपके नाम है वैसे तो लेकिन देखो मेरी मस्ती करने की आदत है और आप तो समझती हो हमारा नेचर। एनीवे ये आवर जो है ये बहुत स्पेशल आवर होने वाला है और ये आवर इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस आवर में हम टच करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हमें मजबूर कर देता है हमेशा। ये हमारी वीकनेस भी है बिकॉज हमें अक्सर पास्ट में रहना बहुत अच्छा लगता है। दिस आवर इज़ नॉस्टैल्जिया आवर और मुझे लग रहा है मोस्टली हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी हम जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, कुछ ज़्यादा कंज्यूम अगर हमें अच्छा लगता है वो होता है हमारे पास्ट को लेकर, हमारे नॉस्टैल्जिया को लेकर। अब नॉस्टैल्जिया में देखें तो एक चीज़ जो हमने छोड़ दी है पीछे, काफ़ी चीज़ें वैसे छोड़ी है पर एक चीज़ जो हमने छोड़ दी है वो है मूवीज़ विद स्टोरीज़। अभी स्टोरी वाली मूवीज़ तो नॉस्टैल्जिया ही हो गया है मुझे लग रहा है। वैसे आती है अभी भी कोई मूवीज़ जिसमें होती है दमदार स्टोरीज़, बट जोक्स अपार्ट आई थिंक एक ज़माना था ना जहाँ पे हम कैसेट्स पे गाने सुनते थे और आप कभी सोचते हो कि आपको 2000s के गाने, 90s के गाने इतने रटे हुए क्यों है? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता था यार। एक कैसेट को हम बैक टू बैक इतना सुनते थे जब तक उसकी वो फिल्म ख़राब नहीं हो जाती थी तब तक हम उसको सुना करते थे। अगर वो इंटरट्वाइन हो गई तो उसको हम फिर पेंसिल डाल के ठीक भी करते थे। क्या दिन थे वो। वेल आपको जब आप नॉस्टैल्जिया सुनते हो तो आपको कौन सी चीज़ याद आती है आप मुझे 5599 पे यहाँ पे मैसेज करके बताइए। विच व्हाट आर दोज मेमोरीज ऑफ यू जो आपको ऐसे याद आती कि यार नॉस्टैल्जिया यार ये मतलब ये चीज़ हम करते थे, ये चीज़ होती थी, क्या आपको याद आता है। वेल ये टाइम भी अभी ऐसा है ना, अभी यहाँ पे अभी गणेश उत्सव का टाइम है, मैं तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील करता हूँ क्योंकि जो इंडिया में मैं जब बड़ा हो रहा था और वहाँ पे हम लोग गणेश उत्सव के टाइम पे ना हर दिन पे एक अलग अलग त्यौहार होता था, एक अलग अलग सेलिब्रेशन होते थे, तो मैं वो चीज़ें बहुत मिस करता हूँ। मेरी नॉस्टैल्जिया की यादें उनमें भी है काफ़ी। बट आप भी यहाँ पे ज़रूर शेयर कीजिए। 5599 इज़ द नंबर एंड इफ़ यू वॉन्ट सम हेल्प इन रिमेंबरिंग तो इनकी आवाज़ डेफिनेटली आपको आपके बचपन के दिन याद दिला देंगे। सोनू निगम फॉर यू।

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। अंजलि थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे मैसेज किया है और आपने नॉस्टैल्जिया के साथ काफ़ी रिलेट किया है। आपको भी कैसेट्स याद है, आपको याद है ताल मूवी की कैसेट आपके पास होती थी, क्या बात है। एंड या आई थिंक मेरे पास भी होती थी, ताल वॉज वन ऑफ दोज जिनके गाने हमको रटे हुए होते थे। इसके साथ परदेस मूवी के भी गाने बहुत ही बढ़िया होते थे, आई रिमेम्बर कुछ कुछ होता है। और ना कैसेट्स के साथ एक खास बात, आपने यहाँ पर कैसेट्स बोला है, उसकी खास बात ये भी होती थी कि उनके कवर बहुत इंटरेस्टिंग होते थे। कवर में काफ़ी अलग अलग पोस्टर्स होते थे, अलग अलग मतलब यू नो शॉर्ट्स होते थे मूवीज़ से, काफ़ी फ़ोटोशूट्स

You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Nostalgia की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ये आवर भी है नॉस्टैल्जिक आवर, जहाँ पे आपको गाने भी मैं सुना रहा हूँ जो आपको ले जाएंगे उन दिनों में जहाँ पे आप बड़े हो रहे थे, जवानी के आपके दिन थे या बचपन के आपके दिन थे, जो लाइफ फेज में आप हो. काफ़ी लोग हमें जो सुन रहे हैं शायद पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, लेकिन आज आप उनके रिक्रिएटेड गाने सुन रहे हो क्योंकि वो खास होते थे यार वो गाने उस टाइम पे. वेल, सवाल मैंने आपको पूछा था कि ऐसा कौन सी पहली मूवी थी मल्टीप्लेक्स में जो आपने देखी थी, और यहाँ पे कई आंसर्स आए हैं. लक्ष्य एक आंसर आया है. वेल, आई ऑल्सो रिमेंबर लक्ष्य को मैंने मल्टीप्लेक्स में देखा था, बट माई फर्स्ट मूवी इन मल्टीप्लेक्स वॉज हम तुम. क्लियरली मुझे याद है, पता नहीं क्यों हम तुम वॉज द फर्स्ट वन. हमारे यहाँ पे नया ही खुला था मल्टीप्लेक्स वो टाइम पे, एंड या आई रिमेंबर उस टाइम पे हमने बोला था यार ये जो कार्टून वार्टून जो इन्होंने किया है ना वो थोड़ा ज़्यादा हो गया यार, वो नहीं होता ना तो मूवी सही होती. बट एनीवे, आप भी यहाँ पे मैसेज कीजिएगा ज़रूर और बताइएगा विच वॉज द फर्स्ट मूवी दैट यू वॉच्ड इन अ मल्टीप्लेक्स. अभी के लिए इट्स ओवर टू जुनू एंड दिस एपिक ट्रैक.

नॉस्टैल्जिया भरा आबोर आप सुन रहे हैं ऑन हम। आज संडे का दिन एंड ब्यूटीफुल दिन रहा आज। काफ़ी लोगों ने बहुत एंजॉय किया, मुझे मैसेजेस आए यहाँ पे दैट क्लीनिंग वाला दिन तो होता ही है लेकिन काफ़ी लोग आज थोड़े बहुत आउटडोर्सी एक्टिविटीज़ में भी रहे। आई एम ग्लैड यार कि अभी मौका मिल रहा है आपको आउटडोर्सी काम करने का। लेकिन नॉस्टैल्जिया की बात जब करें तो एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ वो है बचपन के कुछ खाने। खाना मतलब जो हम खाते थे, अलग अलग टाइप का खाना होता था यार। लाइक मेरे को रैंडमली द अदर डे मैंने एक कुछ खाया तो मुझे याद आया कि मैं ब्रेड को पाव जो होता है ना, पाव लादी पाव जो होता है, लादी पाव को मिल्क में डिप करके खाता था। पता नहीं क्यों, आई थिंक दैट वॉज सम काइंड ऑफ अ डेलिकेसी और समथिंग, आई थिंक विद सम अदर थिंग्स एडेड इन। बट ऐसे रैंडम चीज़ें हमने बहुत खाई है यार। ऐसी कौन सी रैंडम चीज़ आपने खाई है जो आपको याद है, ये हम मुझे आप बताइए यहाँ पे मैसेज करके। अनफॉर्चुनेटली आज हम फोन लाइन नहीं आंसर कर पाएंगे आपके, आज फोन लाइन हम नहीं ले सकते, बट 5599 इज़ द नंबर जहाँ पे आप हमें टेक्स्ट ज़रूर कर सकते हो। बताइए कौन से ऐसे खाना टाइप, मतलब खाने वाली चीज़ें हैं जो आप बचपन में खाते थे और उसके बाद कहीं छूट गई है वो।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: It's Woolworths $5 Frenzy. Fill the trolley with Lucifora mandarins, just $5 a kg. And Wattie's baked beans or spaghetti, 420 gram 3-pack, just $5 each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.
3: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
4: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
5: अब हमारा क्या होगा?
6: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
4: तो क्या करें?
0: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800 722 462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
7: Get into New Zealand's greatest range of garden sheds online at Trade Tested. From classic steel sheds to fancy designer sheds to amazing tiny houses, Trade Tested is the best place to sort your shed out. Make your backyard great today.
8: Non-stop Bollywood.
9: Hum.
8: Playing Bollywood's biggest hits.

your voice. I am singing song. Soup song. Flop.

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Intaha ho gayi intezaar ki.
2: Hum, the beat of Bollywood.
3: World's best, hamari koi branch nahi hai.
2: Hum. Dil se. Dil se.
4: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits 104.2 FM or Rova app ke zariye you can tune into us from anywhere in the world. Mera naam hai Ruzbe aur main hu aapke saath yahan pe 12 baje tak aapko ek se ek gana yahan pe suna raha hu. Aise 8 baj gaye is ghante kuch special aapke liye lekar aa rahe hain and the special thing this hour is unplugged songs. Sare unplugged gaane aapko is ghante sunne milenge. संडे पूरा सेट हो रहा है ना. देखो अपने नॉस्टैल्जिया से नॉस्टैल्जिया में गए, अब नॉस्टैल्जिया के बाद हम आ गए हैं अनप्लग्ड में. अब आप बस इंतज़ार कीजिए और देखिए इस रात को हम और कैसे जवान बन करते हैं. बट लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस आवर विद सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स ओनली फॉर यू. किसी खास के लिए कोई गाना रिकमेंड रिक्वेस्ट या शाउट आउट करना चाहते हैं बताइएगा मुझे 5599 पे मैसेज करके.
5: पल भर

मोहम्मद फैज की आवाज में आप सुन रहे थे ये बहुत ही बढ़िया गाना। वैसे मोहम्मद फैज यहाँ पे आए थे, परफॉर्म भी किया था उन्होंने। एंड जो नेक्स्ट गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं, ये जो बैंड है और ये जो सिंगर है, ये पॉपुलर ही हुए हैं अनप्लग्ड गाने प्ले करके और अनप्लग्ड गाने सुना के। एंड उसके बाद उनकी मूवीज़ में भी कुछ गाने आए हैं, बट आज भी मुझे लग रहा है हम उनके जो अनप्लग्ड गाने हैं उनको बहुत इन्जॉय करते हैं। टॉकिंग अबाउट नन अदर दैन सनम बैंड, जो सनम पुरी जिसके मेन लीड सिंगर है। और यहाँ पे भी अभी काफ़ी बैंड्स

हसल बसल में फंस गए हो, जहाँ पे अब आप बोल रहे हो कि अब मैं भी तुमको दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ है. वेल, सोचिए इस बारे में, बट इस गाने को सुनते सुनते.

0: के लिए।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: It's normal to feel low sometimes, just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
5: अनप्लग्ड आवर है ये दिल से इस शो में आपके लिए। एंड वैसे मूवीज़ की अगर बात करें तो वाइब, कुणाल खेमू की वाइब रिलीज हो गई ओवर द वीकेंड। एंड या रिव्यूज़ आर क्वाइट ओके एक्चुअली। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। एंड यहाँ पे भी वी आर फॉर्चुनेट कि रिलीज़ हुई है मूवी। सो या आई डोंट सी अ लॉट ऑफ रिव्यूज़, मैंने कुछ देखे हैं बट दे बीन नाइस, सम हैव बीन ओके। I am super excited for the movie, yeah, and I really am looking forward to watching it. But आप बताइएगा अगर आपको भी interest है ये movie देखने में, या आप कौन क्या देख रहे हो, क्या binge कर रहे हो, ये आप मेरे साथ यहाँ पे share कर सकते हो। Well, कृपा, thank you so much, आपने यहाँ पे message किया है और आपने गाना भी request किया है। थोड़ी देर में आपका मनपसंद गाना मैं ज़रूर play करूँगा यहाँ पे। सुनते रहिए हम

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। और वैसे पिछले हफ्ते पे अगर ध्यान दे जो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई उस हफ्ते। आईफोन का जो लेटेस्ट रिलीज़ है 18 और डुओ, इसकी अनाउंसमेंट्स हुई। एंड इसकी अनाउंसमेंट जैसे हुई तो लोग दीवाने हो गए। कुछ लोगों ने बोला कि भाई अभी किडनी, तो पहले किडनी से काम चल जाता था, अब क्या करें, अब दो तीन चीज़ें बेचनी पड़ेगी यार डुओ लेने के लिए। 4,500 से स्टार्ट हो रहा है यार फ़ोन, $4,000 से स्टार्ट हो रहा है एंड 6,500 का उसका टॉप वर्जन मिल रहा है। बट इसी के साथ बॉलीवुड का भी कुछ रिएक्शन रहा इसको लेकर। सोनू सूद ने आईफोन 18 के लॉन्च को लेकर थोड़ी नाखुशी दिखाई। उन्होंने कहा एक्स पे जाकर, एक्स हैंडल पे जाकर उन्होंने शेयर किया और बोला कि भाई स्मार्टफोन अपग्रेड करने से बेटर आप एक बेटर सोसाइटी के लिए प्लान करो। न्यू फ़ोन, न्यू EMI, सेम ओल्ड बिल्स, मे बी इट्स टाइम टू क्यू अप टू मेक अ डिफरेंस, नॉट जस्ट अपग्रेड आर फोन्स, द रियल अपग्रेड इज़ अ बेटर सोसाइटी, ऐसा सोनू सूद कह रहे हैं। सो या लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग अ डिग। आई होप उन्होंने ये सब लिखने के बाद फिर बाद में नीचे पोस्टेड बाय माई आईफोन ऐसा नहीं आया होगा नीचे। बट या एनी वे, आई थिंक वॉट सोनू सूद इज़ ट्राइंग टू से इज़ दैट मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो है वो आपको टेम्पररी खुशी दे सकती है, लेकिन एक अगर बेटर सोसाइटी हम क्रिएट करेंगे तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा एंड दैट शुड बी आर एम एज वेल। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हम जितना दूर जाए उतना ही शायद हमारी सोसाइटी के लिए भी बेटर है, क्योंकि अक्सर जो भी आप देख रहे हो दुख दर्द हमारे अराउंड है, इट्स ऑल इन द चाह ऑफ मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अगर हम दूर कर देते हैं तो मुझे लग रहा है दिस वर्ल्ड डेफिनेटली विल बी अ मच बेटर प्लेस। आई डिडंट मीन टू गिव यू ज्ञान, बट अब सोनू सूद ने अगर शुरू किया है तो किसी ना किसी को तो ख़त्म करना पड़ेगा ना।

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। आपको मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्शन इस साल हो रहे हैं और बिकॉज इलेक्शंस हो रहे हैं इस साल, आपके लिए एक स्पेशल शो हम लेकर आ रहे हैं ड्राइव शो में, जहाँ पे स्पेशल इलेक्शन सेगमेंट होगा एवरी थर्सडे 5 बजे से 6 बजे के बीच। इस हफ्ते हमने बात की, लास्ट थर्सडे हमने बात की डेविड सिमर जो एक्ट पार्टी के लीडर है, उनके साथ हमने बात की, एक बहुत ही ओपन कॉन्वर्जेशन हमने किया और उनको क्वेश्चन किया कि इनके ने जो पॉलिसीज़ अनाउंस की है 3 ईयर मिनिमम वेज फ्रीज, अंडर 20 का ट्रेनिंग वेज, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में हमने उनको ओपनली सवाल पूछे, उन्होंने उसके जवाब भी दिए। हमने फिर से कोई सवाल पूछे, उन्होंने फिर कोई जवाब भी दिए। अगर आपको वो पूरा कॉन्वर्सेशन सुनना है तो ड्राइव लिखकर आप भेजिए 5599 पे एंड यू विल गेट दी एंटायर एपिसोड जो हमने उस दिन रिकॉर्ड किया था, मतलब जो बात की थी हमने। इसी के साथ साथ अगर आपको ब्रेकफास्ट कैचअप चेकअप करना है तो वो भी आप कर सकते हो, वहाँ पे उन्होंने टॉपिक छेड़ा है बियॉन्ड द डेट, व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मीन, ये इसके बारे में इन्होंने डिटेल में बात की है, फ्रॉम होम लोन्स टू मैरिज एंड व्हाई लिसनर्स आर रीडिफाइनिंग व्हाट इट ट्रूली मीन्स टू बी सेटल्ड। क्या बात है, बहुत ही डीप कॉन्वर्जेशन। आपको अगर चेकआउट करना है BF लिखकर भेजिए 5599 पे, आपको पूरा ऑडियो वहाँ पे मिल जाएगा।

रात भर शोर मचाए रखता है, तुम्हारा ख्वाब है शायद जो जगाए रखता है। लिखना तो चाहता हूं तुम्हें कि कितना उदास हूं तुम्हारे बिना, पर दिल है कि तुम्हारी यादों में उलझाए।

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Non-stop Bollywood.
3: Hum.
2: Playing Bollywood's biggest hits.
4: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. गुड इवनिंग. 9 बज चुके हैं एंड गजल टाइम शुरू हो गया है आपके लिए. मेरा नाम है रुजबे और आपके लिए यहाँ पे एक से गाने मैं लेकर आऊँगा. इस घंटे इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट गजल्स. गजल की बात करें तो पंकज उदास के गाने ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. आई थिंक काफ़ी लोगों की जवानी, काफ़ी लोगों का बचपन गुजरा है पंकज उदास के गाने सुनते हुए. बचपन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स तो अपनी जवानी में थे ना, तो वो तो सुनते ही थे. तो वो जब सुनते थे तो हम थोड़ी कान बंद करके बैठते थे, हमारे भी कानों में पड़ ही जाते थे वो गाने. तो बचपन से ही हम भी शुरू होते थे. बट या मजाक से दूर, बहुत ही बढ़िया गाने होते थे. आई थिंक गज़ल्स की खास बात ये होती थी कि काफ़ी डीप मीनिंगफुल मैसेज होता था उन गानों में. काफ़ी बार इट यूज़ टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ तन्हाई, लोनलीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, सो मेनी डिफरेंट एक्सप्रेशंस. एंड मेरी मॉम हमेशा बोलती थी कि यार क्या तुम रोतलू गाने सुनते हो. बट यार अब जाकर समझ आता है कि इट्स नॉट रोतलू सॉन्ग्स, इट्स जस्ट लाइफ सॉन्ग्स जिनको सुनकर हम ऐसे सोचते हैं कि यार ये मेरी कहानी गा रहा है यार शायद. एनीवे एंजॉय कीजिएगा ये घंटा. अभी के लिए पंकज उदास आपके लिए है.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। निकुंज, आपने यहाँ पे एक मैसेज किया पंकज उदास की बात की, तो आपने ये गाना रिक्वेस्ट किया पंकज उदास का, तो डेफिनेटली आपके लिए गाना, एक ज़माने में ये बहुत रेलेवेंट होता था गाना यार, क्योंकि उस ज़माने में व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था ना, चिट्ठियों पे हमारा डिपेंडेंस होता था। आज मुझे लग रहा है गाने का फील है और बस शायद रेलेवेंट नहीं है आज के ज़माने में, बट आज भी मुझे लग रहा है चिट्ठी अगर किसी से आती है ना तो हम उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। But when was the last time you wrote a chitti to someone? इस गाने को सुनते सुनते सोचिए इसके बारे में।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
3: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
4: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
3: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
4: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
3: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
4: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
2: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
5: You're invited to IKEA Open House. Join us in store for 4 days of offers, inspiring ideas and family fun. Visit your local IKEA from 18 to 21st of September.
6: IKEA. Few things sound bitter than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.

गजल आवर सुन रहे हैं आप दिल से इस शो में आज। वैसे क्या आपको पता था कि एक क्रॉस लैंग्वेज अडॉप्शन हुआ था गजल का? पॉपुलराइज हुआ था गजल थ्रू उर्दू एंड पर्शियन लिटरेचर, नोटेबली बाय हाफिज एंड रूमी। बट वेस्टर्न पोइट्स ने फिर इवेंचुअली अडॉप्ट भी किया था इस फॉर्म को। अमेरिकन पोइट आगा शाहिद अली, इन्होंने चैम्पियन किया इंग्लिश गजल्स इन द लेट 20th सेंचुरी, और फिर उसके बाद कुछ इंस्पायरिंग वर्क किया ऑथर्स लाइक डब्ल्यू एस मर्विन और एड्रियन रिच ने भी। एक रॉयल फेयरवेल भी था, तो लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया जो थे बहादुर शाह जफर, ये एक रिनाउंड गज़ल पोइट हुआ करते थे, जाना जाते थे ये एज अ रिनाउंड गज़ल पोइट, और उन्होंने सम मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग गज़ल्स लिखी थी जब वो एग्जाइल में थे इन रंगून बाय द ब्रिटिश। तो ये चारकोल के साथ प्रिजन वॉल्स पे लिखा करते थे, क्योंकि उन्हें पेन और पेपर नहीं दिया था, तो वो चारकोल से प्रिजन वॉल्स पे अपनी ब्यूटीफुल गज़ल्स लिखते थे। वेल, वो भी एक टाइम था। गज़ल लेकिन आज भी मुझे लग रहा है बहुत ही पॉपुलर है, और गज़ल की अगर बात होती है तो साथ में सारंगी और तबला तो बनता ही है।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेशे भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
7: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
8: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है। अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
9: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
10: और मैं नहीं करता।
8: दायरा नाउ शोइंग इन सिनेमास।
10: वो कौन सा केस है? उनकी स्टोरी ओवर है।
9: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
8: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग टीबीसी।

You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Good evening. Yeah, good night bolne ka time aa gaya hai kafi logo ke liye. Aur agar aapki bhi abhi abhi shaam hui hai, 10 baje hai. And welcome to the show. Dil se ye show aapke liye jaari hai. Sunday Night Melodies. Main jahan pe hum aapke liye melodious gaane lekar aate hain. Aaj to humne nostalgia touch kiya. Fir unplugged gaane aapko sunaye. Gazals ka mahol bhi yahan pe rachaya. And now we are getting into the final segment of our show. जहाँ पे और भी सम मेलोडी ट्रैक्स आपके नाम. वेल शुरुआत करना चाहता हूँ इस घंटे की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम अगर आपको सुना सुना लग रहा है, मतलब मेरी आवाज़ सुनी सुनी लग रही है, तो मेरा नाम है रुजबे. यूजुअली मैं ड्राइव शो करता हूँ सैंडी के साथ, और आज मुझे मौका मिला है आपके साथ यहाँ पे संडे इवनिंग स्पेंड करने का. तो थैंक यू सो मच आपका, आपके साथ के लिए. आपका साथ मैं दूंगा यहाँ पे मिडनाइट तक. चलो शुरुआत करते हैं इस घंटे की कुमार सानू और अलका याग्निक के ये बहुत ही प्यारे से गाने के साथ.

90s के क्लासिक हिट्स आप एंजॉय कर रहे हैं दिल से ये प्रोग्राम में। मेरा नाम है रुजबे और आपके साथ मैं यहाँ पे मिडनाइट तक रहने वाला हूँ। वेल, आज 20 सितंबर खास दिन है अगर आपके लिए। आपको आज के दिन की ढेर सारी बधाइयाँ। आई होप आपकी ये जो शाम है बहुत हसीन गुजर रही है। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। बट आप बताइए, आपके जीवन में क्या चल रहा है अभी? आप देख रहे हो मेरी वोकैबुलरी कैसी चेंज हो गई है बिकॉज आई एम डूइंग द संडे नाइट शो। बताइएगा ज़रूर 5599 पर मैसेज करके।

104.2 FM पे और रोवा ऐप के जरिए आप सुन रहे हैं हम दिल से, ये शो जारी है आपके लिए। वेल, 90s के गाने आपको सुना रहा हूँ मैं अभी, और 90s का दौर एक ऐसा दौर था जहाँ पे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स की जोड़ियाँ थी वो काफ़ी ट्रेंड में थी, काफ़ी जमी हुई थी। म्यूज़िक डायरेक्टर जोड़ियाँ मतलब दो म्यूज़िक डायरेक्टर्स एक साथ जिनका नाम भी एक साथ होता था। तो आप बताइए 5599 पर मैसेज करके आपके नाम के साथ बताइए मुझे, ऐसे कौन से म्यूज़िक डायरेक्टर्स आपके जहन में आते हैं जब आप सोचते हो म्यूज़िक डायरेक्टर्स डुओ के बारे में। देखो 2000s के बाद के तो हमारे पास ट्रायो एक है, शंकर एहसान लॉय, लेकिन मैं 90s की बात कर रहा हूँ। 90s में ऐसे कौन से थे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, और बहुत है, काफ़ी है जो डुओज है। मैसेज आ रहे हैं यहाँ पे एक विशाल एंड शेखर, वेल ये भी मैं बोलूँगा यार ये 2000 के बाद के है, 90s के कौन है म्यूज़िक डायरेक्टर्स बताइएगा यहाँ पे 5599 पे मैसेज करके।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Phuket Kohi. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Phuket Kohi. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jenku.

You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. और यहाँ पे मैंने आपको पूछा था कि कौन से हैं ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो डुओ में काम करते थे 90s में. एंड काफ़ी मैसेजेस यहाँ पे आए हैं. नदीम श्रवण एक मैसेज एक नंबर एक ऐसे डायरेक्टर्स है, दो डायरेक्टर्स जो साथ में करते थे काम. यस, दैट इज़ करेक्ट. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. और भी काफ़ी है और यहाँ पे मैसेजेस भी आ रहे हैं. आप सोचिए और कौन से ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जो डुओ में काम करते थे. हमने रिसेंटली ट्रेंड मेकर्स में एक शाउट आउट किया था और उसमें भी हमने एक डुओ म्यूज़िक डायरेक्टर जो 80s के थे, एक्चुअली में 80s 70s के म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो, उनको हमने शाउट आउट दिया था, राम लक्ष्मण. लेकिन और भी ऐसे काफ़ी है, तो आप ज़रूर यहाँ पे हमें बताइए मैसेज करके. डुओज़ जो साथ में काम करते थे, साथ में म्यूज़िक बनाते थे और काफ़ी समय तक साथ में बनाने लगे थे.

0: दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

उन बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, sirf Rova par.
1: Non-stop Bollywood.
2: हम जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits.
3: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. वी आर इनटू द फाइनल आवर ऑफ द शो संडे नाइट मेलोडीज. दिल से ये शो आपके लिए जारी है. मेरा नाम है रुजबे, आपके साथ मैं हूं यहां पे 12 बजे तक. सो वी आर इनटू द फाइनल आवर, लास्ट आवर, और 90s के हिट्स आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. अभिजीत दा एक बहुत ही पॉपुलर 90s के सिंगर, जो 90s में उन्होंने बहुत ही कमाल हिट्स दिए. उसके बाद 2000s में भी काफ़ी अच्छे मूवीज़ के हिट्स दिए. एंड देन आफ्टर दैट यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी एक्चुअली में कपल ऑफ टाइम्स यहाँ पे टूर किया. उन्होंने एक शो कॉन्सर्ट किया था यहाँ पे. उन्हीं के आवाज़ में ये गाना आपके लिए इस बार. 90s के और कौन से सिंगर है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिनको आप बहुत ही सुनना चाहते हैं आज, बताइएगा मुझे.

सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। वैसे रोवा ऐप हमारा आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो फ्री टू डाउनलोड ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए। हमने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एपिसोड इस पर रिकॉर्ड किया है अनफिल्टर्ड ड्राइव में। अनफिल्टर्ड ड्राइव में हम ऐसी बातें करते हैं, ऐसे पॉडकास्ट लेकर आते हैं जो हम यूजुअली ऑन एयर नहीं कर पाते, सैंडी और मैं लेकर आते हैं आपके लिए। और इस बार हमने जो बात की है वो हमने एक पब्लिक ट्रस्ट के एक ट्रस्टी से बात की है और उन्होंने हमें बताया है द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ विल। विल होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये एक टैबूड सब्जेक्ट है ना हमारे घरों में कि हम डेथ के बारे में बात नहीं करते। हम बोलते यार ऐसी शुभ शुभ बातें करो, यार ऐसी अशुभ बातें मत करो। लेकिन काफ़ी बार हमने देखा है कि फैमिलीज बहुत स्ट्रगल करती है जब एक यू नो सडन डेथ हो जाती है फैमिली में, और अगर मेन ब्रेड विनर की अगर डेथ हो जाती है उसके बाद कहाँ पे क्या है, कैसे आगे फाइनेंसेस मैनेज होने वाले हैं, कैसे आगे की चीज़ें मैनेज होने वाली है, इंश्योरेंस का क्या है, यू नो बहुत सारी चीज़ें एक ब्लर में होती है, पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमने इस टॉपिक को लेकर एक पॉडकास्ट किया है, आप सुनिएगा अपने परिवार के साथ सुनिएगा और देखिए आपको वो कॉन्वर्जेशन अगर लगता है ज़रूरी है करना घर पे तो ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा उस पॉडकास्ट को सुनकर। 5599 पर अगर आप ड्राइव लिखकर भेजेंगे तो आपको उस पॉडकास्ट का लिंक हम भेज देंगे, या फिर आप अनफिल्टर्ड को सर्च कीजिए रोवा ऐप पे एंड यू विल गेट द एपिसोड देयर एज वेल।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer. 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है. अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स. दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन.
3: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ.
4: और मैं नहीं करता.
2: दायरा नाउ शोइंग इन सिनेमास.
4: ओपन शट केस है, उनकी स्टोरी ओवर है.
5: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है.
2: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स. रेटिंग टीबीसी.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

90s के हिट्स आपको सुना रहे हैं और सोनू निगम का ये गाना ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक. दिल से मूवी का ये गाना आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में. एंड आई थिंक 90s को डिफाइन करते हैं काफ़ी हद तक सोनू निगम. ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. वेल इसी के साथ मेरे कल्टी मारने का यहाँ पे टाइम आ गया है. थैंक यू सो मच आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए. आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द ड्राइव शो में आपके साथ. यहाँ पे मैं आ जाऊँगा कल 4 बजे से 7 बजे तक सैंडी के साथ. लेकिन हमारे बाकी शोज़ भी आप ज़रूर एंजॉय कीजिए. एंड याद रखिएगा कि इलेक्शन इज़ अराउंड द कॉर्नर. अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है वोट करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप रजिस्टर करें वोट करने के लिए. बिकॉज वोट इज़ आर राइट. आई थिंक इट्स नॉट जस्ट आर राइट, इट्स आर ड्यूटी एज वेल, ड्यूटी टूवर्ड्स दी अदर पीपल. क्योंकि अगर हम वोट नहीं करते हैं उसका मतलब हम हमारा जो राइट है उसको वेस्ट कर रहे हैं. और उसमें शायद कंट्री का मतलब यू नो आपका वॉइस नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है. सो आपकी सहायता करने के लिए हम एक स्पेशल शो लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको पता चले ना कि किसको वोट करना है, क्या करना है. तो हम हर एक पार्टी से रिप्रेजेंटेशंस लेकर आ रहे हैं आपके लिए ड्राइव शो में 5 बजे से 6 बजे के बीच ऑन थर्सडेज. तो ज़रूर आप टाइमर लगा मतलब अपना अलार्म लगा लीजिए वॉच में या मोबाइल पर रिमाइंडर सेट कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि 5 बजे से 6 बजे थर्सडेज को आपने ट्यून इन करना है हम पे. और रोवा के ज़रिए भी आप ट्यून इन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उनके पॉलिसीज़ क्या है, वो किस चीज़ के लिए स्टैंड कर रहे हैं, किस चीज़ की विरोध कर रहे हैं. और फिर आप सोच सकते हो कि यार मैं इस चीज़ का स्टैंड ले रहा हूँ या विरोध कर रहा हूँ, और उस हिसाब से आप फिर वोट कर सकते हो. सही है ना? तो सुनिएगा ज़रूर और हमें आपका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा. दिस इज़ मी रुज़बे साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. बाय. गुड नाइट.

0: Chevrolet Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए। Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए।
2: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था।
3: फिर ये घर कैसे?
4: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है।
5: एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
2: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
6: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.

0: उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट। द बीट ऑफ बॉलीवुड
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: Night Flight.

0: Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं उसको.
2: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया
2: अभी. अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Professional Financials है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
5: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
4: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो. सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
7: मुझे भी
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
8: Reliance Ventilation System.
9: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
8: Moisture और ventilation का problem लगता है.
9: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
8: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
10: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
11: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
12: Flooring Extra. Adore your floor.
13: Already got a quote for your bathroomware? But what about a second opinion? Email your cart or your list to Elite Bathroomware. Right now, take advantage of their massive spring sale and experienced staff. Quality reassurance, trending coloured tapware ranges, natural timber vanities, concrete freestanding baths, and everything else bathroomware. September only, spring bathroom sale in-store only. Or apply for VIP access online. Elite Bathroomware, market leaders in designer bathrooms. 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
5: हाँ। अच्छा
4: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: Very acceleration. That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range, now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes, it's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in store today.
2: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने
3: yeah.
2: हम

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. So what do you do when customers don't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that in our Indian community, business is built on trust, respect, and keeping your word. With 20 years of debt recovery experience, they can help recover your B2B debts. Want your old invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi. Visit kaydaar.co.nz.
7: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है। अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
8: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
9: और मैं नहीं करता।
7: दायरा नाउ शोइंग इन सिनेमास।
9: वो कल जब केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
10: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
7: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग टीबीसी।
0: Playing Bollywood's biggest hits.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
3: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
2: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
4: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
5: Hey! City Rail Link's now open, and our first trip's going to the game.
6: Now I can go east-west on just one train. So my first trip seeing an old friend in Swanson.
7: Our first train ride. We're surprising the kids with Tiwai Horatiu Station and a movie.
8: See our first trip? Coffee with friends, maybe K Road, maybe Pukekohe.
9: Oh, it'll be our millionth time going to the art gallery, but our first time taking the train.
10: Those all sound great. The City Rail Link's now open, so all aboard with Auckland Transport.
11: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
12: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
13: Check.
14: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
13: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
15: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. ACT leaders taking aim at the supermarket promises being made this election. Labor, National and the Greens have each rolled out policies. David Seymour says Labor's plan for a retail and wholesale breakup is crazy.
16: It's as if they're not aware we already have too much government and too much bureaucracy in this country. Imagine deciding what the fair price is for a lettuce delivered to a supermarket in Timaru.
15: Alarm bells are ringing for staff at Whanganui Hospital. The nurses' union claims its ED reached 680% capacity earlier this month. NZNO delegate Catherine Fleming says they've also issued multiple code reds.
17: People need to understand that it's not just a colour or a status. It represents an enormous amount of pressure being placed on the staff who are just trying to keep those patients safe.
15: Police hope they'll be able to finally bring closure to the families of seven people missing for nearly 50 years. The plane they were on disappeared in 1978, with a new search focusing on Lake Mauraki this week. Acting Inspector Mark Kirkwood says a sonar target was recently found.
18: We don't actually have a confirmed location of where this image was taken on the lake. However, we've got a couple of points that will be searched first.
15: In sport and to rugby league with Machinery House in a league of their own.
19: That's the end of the game! And the Newcastle Knights are off to the preliminary final!
15: It's NRL season over for the Warriors on Sky Sport, who were denied a late penalty in a 12-10 defeat to the Knights at Eden Park last night. And Ryan Fox finished tied for sixth place, earning $440,000 at the DP World Tour's PGA Championship in England.
13: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
20: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
13: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: It's
0: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको याद दिला दें कि मौसम के अनुसार आज बताया जा रहा है कि करंट टेम्परेचर इन सुपर सिटी ऑकलैंड राइट नाउ इज अराउंड 12 डिग्रीज और हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है बाद में चलकर ओवरनाइट टेम्परेचर अगेन 12 डिग्रीज तक रहेगा. मौसम के लिए कहा गया है मोस्टली क्लाउडी सम आइसोलेटेड शावर्स जो आज सुबह से होने की संभावना है. शाम होते होते बारिश थमती हुई नजर आएगी और आज का सनसेट अगर देखा जाए तो होगा 6:17 PM पर. सनराइज इसी घंटे अराउंड 6:12 AM पर होगा और इसके अलावा आज ओवरनाइट टेम्परेचर या हाई ऑफ 16 डिग्रीज जो है बाद में चलकर एक्सपेक्ट किया जा रहा है.
13: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
20: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
13: Breakfast Catch Up.
0: हेलो क्योरा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. आज है मंडे 21st of September. आज की सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार मुबारक हो और अ वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन आप सभी को हम विश कर रहे हैं. आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग,
21: वेलकम, गुड मॉर्निंग
0: जी, गुड मॉर्निंग. और अभी से लेकर ठीक दिन में 10 बजे तक जबकि हम और आप एक साथ बने रहेंगे तो ऑफकोर्स आज की सुबह को जबकि खास आपके नाम हम कर रहे हैं. शुरुआत हम कर रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा विद ब्रेकफास्ट कैचअप,
22: जिस दौरान वो ज़रूरी चीज़ें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो हम लेकर आएंगे, फन, एंटरटेनमेंट और आपके फेवरेट म्यूजिक.
0: चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सफर के आप सभी के साथ और इधर आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो ओनली ऑन 104.2 FM एंड रोवर ऐप.

0: Sunny Side Up.
1: तो चलिए बारी है आज की पॉजिटिव ब्यूटीफुल न्यूज की स्टोरी की जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ऑन हम और टॉकिंग अबाउट दिस वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. तो एक यू नो सुपरमार्केट है ऑल द वे इन थाईलैंड. 2019 में रिम पिंग सुपरमार्केट जो कि चियांग माई थाईलैंड में है, इसने इंटरनेशनल अटेंशन जो है ये अट्रैक्ट किया अपनी ओर. एंड द रीज़न वाज कि जिस तरह की पैकेजिंग का इस्तेमाल ये कर रहे थे अपने फ्रेश प्रोड्यूस के लिए या फिर प्रोड्यूस जो इनके सुपरमार्केट में था दैट दे वर सेलिंग फॉर द कस्टमर्स, इसके लिए द आइडिया स्पेसिफिकली एम्ड एट रिड्यूसिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक आइटम्स का जो इस्तेमाल है इसे कम करने के लिए. जिसमें इन्होंने क्या किया, जैसे वेजीज हो, फ्रेश वेजीज हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, चिलीज हो, एस्पैरेगस हो, केकम्बा, पेपर्स, जो भी है, इन सारी चीज़ों को रैप करने के लिए इन्होंने प्लास्टिक का नहीं बल्कि बनाना लीव्स का इस्तेमाल किया. और बनाना लीव्स के साथ साथ इन्होंने आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत से जगह पर उसे सिक्योर रखने के लिए उन्होंने बेम्बू लीव्स का भी इस्तेमाल जो है ये किया. या बेम्बू लीव्स नहीं, सॉरी, बेम्बू टाइज का इस्तेमाल किया तो इसको सिक्योर रखने के लिए जैसे बनाना लीव्स में रख कर उसे बांधने के लिए बेम्बू टाइज का इस्तेमाल किया.
2: एकदम ग्रीन.
1: या लाइक द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी इज कि पहले के ज़माने में जब न कागज़ हुआ करते थे न प्लास्टिक हुआ करती थी तो पत्तों का इस्तेमाल ही किया जाता था ज़्यादातर.
2: हाँ वो तो है.
1: फिर ये सारी चीज़ें आई, लोग जो है इनको ज़्यादा कन्वीनियंट मानते हुए इसका इस्तेमाल करने लगे. मैनी मैनी ईयर्स पास्ट एंड देन वी रियलाइज्ड कि ये चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है ज़्यादा से ज़्यादा. मतलब कन्वीनियंट तो है लेकिन हार्मफुल है, जो हमारे एनवायरनमेंट को और ख़राब कर रही है. और उसके बाद चलकर अगर समय रहते दिया आर सम पीपल सम कंट्रीज हु हैव टेकन द राइट स्टेप, तो उसमें गलत क्या है ना.
2: हाँ बहुत सारे कंट्रीज ने नो प्लास्टिक्स वगैरह जो है इन पर प्रतिबंध लागू कर दिया है और कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एडॉप्ट किया है इस तरह के ग्रीन पॉलिसीज को.
1: एब्सोल्युटली. एंड द फैक्ट दैट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, अगर आप यू नो जाकर गूगल भी करोगे यूड सी कि किस तरह से रिंग पिंग सुपरमार्केट जो कि थाईलैंड में है इन्होंने ये फ्रेश वेजिटेबल्स जो है रैप करने शुरू किए थे. और ये सिंपल आइडिया इट डेफिनेटली वाज यू नो टेकिंग नोट ऑफ और इसको इम्प्लीमेंट करने का. आई हैवन सीन एनी सच थिंग हियर इन न्यूजीलैंड बट सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स जबकि यहाँ पर बैन है तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेपर बैग्स जो प्रोवाइडेड होते हैं सुपरमार्केट्स में कि पेपर बैग्स का इस्तेमाल करते हुए आप अपने फ्रेश प्रोड्यूस जो है ना पैक कर सकते हैं या फिर घर से आप अपना खुद का बैग भी लेकर आ सकते हैं एंड उसमें आप डाल सकते हैं जो बैग्स आप बार बार इस्तेमाल करते हैं ना. बट ऑन द अदर हैंड दीज आइडियाज आर ऑल्सो नॉट बैड जहाँ पर यू आर रैपिंग इट अप इन अ फ्रेश प्रोड्यूस को जो आप बनाना लीव्स में रैप कर रहे हैं इट मेक्स इट लुक्स ब्यूटिफुल प्रेजेंटेबल और साथ ही साथ ये किसी भी तरह का हार्म नहीं है ना टू द एनवायरनमेंट. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना लीव्स की ज़रूर पड़ेगी. बट नेवरदलेस आज की हमारी सनी साइड अप स्टोरी जो आपके लिए हम लेकर आ रहे थे, याद रहे वी हैव एनकरेज यू टू टॉक अबाउट इट एज मच एज पॉसिबल. हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में हैं, हमारी कम्युनिटी में है, नेबरहुड में है, ऐसे बहुत से लोग हु आर आउट देयर हेल्पिंग द पीपल इन आवर कम्युनिटी इन दिस कंट्री एज वेल who definitely definitely deserve a shout out. और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे कुछ लोगों की beautiful moments और contribution के बारे में बातें करें तो आप ज़रूर details हमारे साथ share कर सकते हैं और sunny side up story में ये आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे. Only on हम playing Bollywood's biggest hits.

0: Mega Finance and Spindrel Home, Zeal Group, Perfect Panel Beaters and Paint Limited, Port Poles Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIA Science. Jankariyon ke liye hum sunte rahein.
1: Do 8 Sudokus. Save 3 people's lives. 2 chapters of an audiobook about stoicism. Help create life-saving products.
2: These are some things you can achieve in one blood or plasma donation appointment. Visit nzblood.co.nz to book.
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
4: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है.
3: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया. नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
5: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
6: ऑकलैंड, आर यू इमरजेंसी रेडी? इफ द अनएक्सपेक्टेड स्ट्राइक्स, डू यू नो व्हाट टू डू? मेक एन इमरजेंसी प्लान दिस डेलाइट सेविंग वीकेंड. Brought to you by Auckland Emergency Management. Make your plan at aem.govt.nz.
7: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. So what do you do when customers don't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that in our Indian community, business is built on trust, respect, and keeping your word. With 20 years of debt recovery experience, they can help recover your B2B debts. Want your old invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi. Visit kaydaar.co.nz.
8: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
12: Global Headlines.
13: सुबह के मुख्य समाचारों में, दिल्ली के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने के तहत एस जयशंकर, अरविंद केजरीवाल और चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता समेत कई बड़े नेताओं को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नोटिसेस जारी किए गए हैं. इलेक्शन कमीशन ने सफाई दी है कि नोटिस भेजने का मतलब वोटर लिस्ट से नाम हटाना नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंट्स में मिले डिस्क्रिपेंसीज को वेरीफाई करना है. कमीशन के मुताबिक रेखा गुप्ता और एस जयशंकर का मैटर रिजोल्व हो गया है और बाकी हाई प्रोफाइल लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर ली जाएगी. फिजी में सुबह के कमिंग स्ट्रीट पर

0: सात बजे फिजी की भिड़ंत वनुआतु से होने को है। इसके अलावा पैसिफिक नेशंस कप के फाइनल में फिजी को शनिवार को हार का सामना करना पड़ा। फिजी की हार इस मैच में जापान के खिलाफ 20-15 से हुई। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: Hollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: मोहित चौहान की आवाज सुबह सुबह 4 बजे में आपके लिए हम लेकर आ रहे थे फ्रॉम द फिल्म धूम 3, अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक टू लिसन टू इन द मॉर्निंग एंड आई होप कि आपको भी ऐसा ही फील हुआ इस गाने को सुनकर। अभी फिलहाल आगे बढ़ने से पहले कुछ गुड मॉर्निंग के मैसेजेस हमारे पास आए हैं, सो वेरी क्विकली हैविंग अ लुक एट दोज मैसेजेस जो आपने इतने प्यार से सुबह सुबह हमारे पास भेजे हैं। सबसे पहले आज अगर देखा जाए तो लाइक ऑलवेज बॉबी मान जी, इनका मैसेज आया है। इन्होंने हमें सुबह सुबह याद करते हुए अपना बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है। हर हर महादेव कहा है, गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, विशिंग यू बोथ एन ऑसम वीक अहेड फिल्ड विद हैप्पीनेस पीस एंड पॉजिटिविटी, मे महादेव्स ब्लेसिंग्स ऑलवेज बी विद यू। थैंक यू सो मच बॉबी जी एंड वी विश यू द सेम।
1: इसके अलावा सुबह सुबह सबसे पहले उधर टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर राज आरवी प्रकाश ट्रांसपोर्ट से सुबह 3:15 के वक्त इनका गुड मॉर्निंग मैसेज आया है। थैंक यू सो मच राज आपको एंड यू हैव अ वंडरफुल डे। साथ में मिस्टर मटर मटर, राम राम, जय श्री कृष्ण, हैप्पी मंडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। विनीता जी आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। और इसके अलावा सल्लू गल्फाबा फंग परुओ से आपने भी सुबह हमें याद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। बॉलीवुड में तमाम चीज़ें हो रही हैं एंड ग्लोबल हेडलाइन बन चुका है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक बार फिर पापा मम्मी बन चुके हैं।
0: Welcomed a very beautiful baby girl. I mean, I haven't seen it, but I bet she's beautiful. But I think on the 19th of September, ko na, इन्होंने अपनी दूसरी प्यारी सी बच्ची को वेलकम किया इन दिस वर्ल्ड और अपने सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन जो है ये शेयर किया। ओवर द वीकेंड आपको मौका लगा कुछ नया कुछ देखने को? एनीथिंग दैट यू सी सॉ इन द वीकेंड दैट यू एंजॉयड वाचिंग?
1: आई कांट रिमेंबर। नहीं,
0: हाँ कुछ नया नहीं देखा आपने?
1: I don't think so.
0: अच्छा, तो कल रात को क्या देख रहे थे आप?
1: कल रात को तो बस ऐसे ही just flicking through a few things.
0: हाँ, तो वो नया ही था वाइब फिल्म जो है। और नहीं, कल रात को वाइब का देखी आपने? I'm sorry, आपने क्या देखा था? वो चुंबक।
1: हाँ, चुंबक। I think चुंबक was the last thing that I watched.
0: हाँ, तो कैसी लगी आपको?
1: चुंबक was good. I liked गट्टू।
0: हाँ, गट्टू नहीं, उनका नाम देवेंग भोजानी है।
1: हाँ,
0: I think उनका बर्थडे था वीकेंड में,
1: पता नहीं, मुझे नेता नहीं मिला था तो आई डोंट नो। और सारे कैरेक्टर्स जो है नीना गुप्ता जी, दे ऑल प्लेड देयर रोल्स प्रीटी नाइसली। और वो देखने के बाद वो पुरानी उनका कौन उनके कौन से वेब सीरीज थे, नो सॉरी टीवी सीरीज थे, उनकी एक हल्की हल्की सी याद जो है ये रिफ्रेश हो जाती है।
0: देख के?
1: वो दिवेन भुजानी और जिस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है या फिर जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील आपको वैसा जरूर मिलता है।
0: राइट, तो इंटरेस्टिंग है, अगर आपने नहीं देखी आप ज़रूर देख सकते हैं। अपेरेंटली अ लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन देयर रिव्यूज़ अबाउट द फैक्ट कि उनको शायद ये वेब सीरीज़ अच्छी लगी, बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे विच वर लाइक एन एक्स्ट्रा काइंड ऑफ थिंग, शायद वो अगर नहीं भी होते स्टोरी में तो लोगों को कोई डिफरेंस नहीं मेक करता। अर्जुन बिजलानी बींग वन ऑफ देम, आई थिंक ही हैज़ ट्राइड हिज हैंड्स ऑन समथिंग कॉमेडिक रोल में पहली बार, बट या आई पर्सनली उतना पसंद नहीं आया मुझे वो। I personally didn't like him as much as well. On the other hand, एक बड़ी खूबसूरत फिल्म मैंने देखी एंड आई गॉट अ चांस टू वॉच इट जस्ट yesterday. और ये दरअसल रवि तेजा की फिल्म है।
1: अच्छा
0: जी, नेटफ्लिक्स पर आई है, इरुमुड़ी नाम है इसका, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। और इस फिल्म का जॉनर इज एक्शन थ्रिलर एंड स्पिरिचुअल ड्रामा। शिवा निर्वाणा जो है इन्होंने इसे डायरेक्ट किया है, रवि तेजा इस फिल्म में आपको दिखेंगे और 18th ऑफ सितंबर को ये रिलीज़ हुई है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी भाषाओं में ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। तो अपेरेंटली ये कहानी है एक शख्स की जिनका नाम है त्रिनाथ और ये एक अल्कोहल एडिक्टेड फादर है जिनका एक वायलेंट पास्ट रहा है और उसके साथ साथ अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। ये मणिकांता नाम है इनकी बेटी का, जिसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हिज डॉटर जो है वो इनकोरेज करते हैं कि वो दरअसल 41 डेज का अयप्पा दीक्षा स्पिरिचुअल वाव जो है ये रखे। और जो लोग इनके बारे में इस पर्टिकुलर वाव के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि ये क्या है। एंड दिस 41 डे सेलिब्रेशन इज़ अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ। तो एक ऐसा सिचुएशन इनकी लाइफ में आता है जहाँ पर डिसिप्लिन और डिवोशन इन दोनों की वजह से ये बदल जाते हैं, और कुछ बहुत बड़ी घटना भी इनकी लाइफ में घटती है जिसके अराउंड ये फिल्म जो है ये सिचुएटेड है. What I especially loved about the movie was the cultural representation. You know, मुझे साउथ इंडियन मूवीज़ की एक खास बात बहुत अच्छी लगती है. I haven't seen any other regional language film. I think मैंने एक बार एक मराठी फिल्म देखी थी और एक बार एक गुजराती फिल्म भी देखी है. तो मैंने उतनी नहीं देखी, that's why I can't compare. पर जितनी मैंने साउथ इंडियन मूवीज़ देखी है उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ. मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है जिस तरह से अपने कल्चर को रिप्रजेंट करते हैं, लाइक ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट. आप कंतारा को ही देख लो, और कंतारा में भी जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है, जो चीज़ें ये जो उनका स्पिरिचुअल बिलीव है वो उसे दर्शाने में ज़रा भी शाय नहीं फील करते, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस मूवी एज वेल. जिस तरह से अपना कल्चरल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिखाया, अपना बिलीफ, अपना यू नो स्पिरिचुअल बिलीफ जो है इसे पोर्ट्रे किया इस फिल्म की कहानी के थ्रू. एंड द फैक्ट कि इस फिल्म में एक और एक बहुत ज़रूरी चीज़ इन्होंने हाईलाइट की, विच वॉज लव एंड एनकरेजमेंट टूवर्ड्स अ गर्ल चाइल्ड. अगर आपके पास बेटी है तो उसको एक पर्टिकुलर वे से बढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, या सर्टन टाइप ऑफ चीज़ें सिखाने की ज़रूरत नहीं है. देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू टीच योर डॉटर एज अ पेरेंट ऑफ अ डॉटर और अ गर्ल चाइल्ड, जो इस फिल्म में आपको दर्शाता है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल टू सी एज वेल. इमोशनल भी है, बट अगर आपको मौका मिले आप देख सकते हैं. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है. रवि तेजा तो बड़े कमाल के एक्टर हैं, इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर. दैट्स व्हाट आई फील. इनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती मुझे, तो आप देख सकते हैं ये फिल्म अगर आपको भी ऐसी फिल्में जो है देखना अच्छा लगता है तो. एंड ऑन द अदर हैंड कुछ और भी नई चीज़ें जो है ये ऑनलाइन आई हैं, तो इसके बारे में भी आज बाद में चलकर प्रोग्राम में बातें करेंगे ना.
1: यस, जो फिल्म है पृथ्वीराज सुकुमारन और करीना कपूर खान की, देखेंगे.
0: हाँ
1: हाँ, दायरा दायरा का क्या हुआ, क्या कोई दायरा ये पार कर पाई ओवर द वीकेंड या नहीं.
0: और दूसरी ओर हैप्पी गुड मॉर्निंग ये कहा है धीर ने. थैंक यू सो मच धीर आपके मैसेज के लिए. विशिंग यू अ वेरी गुड मॉर्निंग एज वेल.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Traffic. Court's massive madness flooring sale on now.
5: Mostly cloudy today. Westerly winds a high of 16 degrees. Coming into the city, motorways aren't too bad so far. Northern, 18 minutes in from Constellation Drive, 34 Silverdale to town is slow at Silverdale and Constellation to Milford. Northwestern, slowing down close to the CBD, 20 minutes Massey to town. Southern, 24 in from Monaco, slow Papakura on and off to Papatoetoe. Southwestern, pretty good.
4: Save thousands on carpets, vinyl and hard floor. Sale on now. Visit Carpet Court today.
6: You're invited to IKEA Open House. Join us in store for 4 days of offers, inspiring ideas and family fun. Visit your local IKEA from 18 to 21st of September.
7: IKEA.
8: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like Pix peanut butter, 380 gram, just $3.89 each. And loose avocados, just 99 cents each. That's the fresh food feeling. T's and C's apply.
9: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.
10: Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. Coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
11: It's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
12: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने.
13: आजा ले ले तू मजा.
2: Hum, playing Bollywood's biggest hits. Yeah. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: 20 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में और आज 21st ऑफ सितंबर आज अगर देखिए सम वेरी इंपॉर्टेंट डेज मार्क किए जा रहे हैं सबसे पहले वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे
0: ओह दैट्स ब्यूटीफुल
1: ये आज मार्क किया जा रहा है अप्रिशिएट लिटिल थिंग्स जो हमारी जिंदगी में खुशी लेकर आते हैं यू नो हम बड़ी बड़ी चाहतों में इतने खो जाते हैं कि जो छोटी चीजें हमें मिलती हैं उन्हें अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं
0: एग्जैक्टली हमने इसके बारे में रिमेम्बर फ्राइडे को बात की थी जहाँ जापान में ऐसा ही एग्जीबिशन हुआ था जापान में एक एग्जीबिशन हुआ जहाँ पर ऐसी ही छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना नोटिस करना थैंकफुल होना उसके लिए ये पूरा का पूरा एग्जीबिशन जो ये रखा गया था
1: और उसके साथ आज सेलिब्रेट किया जा रहा है चाय डे
0: ओके
1: बहुत सारे लोगों को चाय बेहद पसंद है कुछ लोगों को चाय नहीं पसंद है तो आज इसको यू नो सेलिब्रेट करने का दिन है एंड इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ पीस टुडे
0: ओके
1: आर्मेनिया का आज इंडिपेंडेंस डे जो है ये भी मार्क किया जा रहा है बर्थडे की ओर देखें तो कई लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ विद करीना कपूर खान
0: ओह आज इनका बर्थडे है
1: हाँ सुधा चंद्रन
0: ओके
1: अतली कुमार
0: डायरेक्टर है ये ना
1: हाँ,
0: जवान फिल्म इन्होंने तो बनाई थी
1: और उसके अलावा रिमी सेन ये भी बर्थडे मना रही है गुलशन ग्रोवर
0: राइट
1: इनका बर्थडे है और एन अमेजिंग अमेजिंग सिंगर यू नो आई जस्ट लव्ड हर वॉइस आई स्टिल लव हर वॉइस नूरजहान क्या ओ
0: ये पहले के जमाने की सिंगर
1: जी,
0: ना
1: जी, जी,
0: जी
1: हाँ,
0: राइट राइट
1: बहुत ही फेमस पाकिस्तानी सिंगर और एक्ट्रेस थी ये
0: okay,
1: नूरजहान तो हाँ. आज ही के दिन उनका भी जन्म हुआ था
0: ओके इंटरेस्टिंग तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो है ये आज मार्क की जा रही हैं एंड डेफिनेटली अगर आप भी इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं तो आप कीजिए और मार्क कीजिए इनके रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में बातें जो है ये भी आप जरूर कर सकते हैं चलिए अब बारी है आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे जो है ये गेस करने की और आज की बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे के 3 एलिमेंट्स जो है हम आपको दे रहे हैं और इसे सुनते ही आपको अनुमान लगाना है कि किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट लव गुरु दूसरा एलिमेंट फुकेट तीसरा एलिमेंट छोटा डॉन हाँ तो ये तीन चीजें सुनकर आपको किस फिल्म की याद आई क्या लगता है किस फिल्म के बारे में आज हम बातें कर रहे हैं 3 एलिमेंट्स ऑफ द मूवी जो आपको इस फिल्म के नाम को गेस करने में हेल्प कर सके नंबर 1 इज लव गुरु नंबर 2 इज फुकेट और नंबर 3 इज छोटा डॉन क्या आपको पता चला किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं इफ यस तो जल्दी से हमारे पास आप टेक्स्ट करें बीएफ लिखे सबसे पहले फिर अपना आंसर अपना नाम और सेंड कर दे इसे ऑन 5599
7: लेट्स गो
2: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद एनजेड पीएमआई योर

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: 주보장 파피오 주보장.
2: March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
3: Rusbi, tickets book ho gaye.
4: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
3: Sunset, beach club और थोड़ा सा सुकून भी
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
6: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
7: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum. Accurate traffic.
8: Pasco's The Jewellers store-wide sale.
9: A high of 16 degrees, staying a cloudy one for us all day today. Coming into the city, Southern Motorway, slow Papakura on and off to East Tāmaki. Drive time's not too bad, 26 minutes Manukau to town, 45 from Drury. Fine on the southwestern, northwestern 22 and from Massey, slowing St. Luke's to the city. Northern 20 from Constellation Drive, slow at Silverdale, Constellation to Milford and at Esmond.
8: Massive savings on stunning jewellery and top brand watches at Pasco's The Jewellers.
10: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के
11: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
10: It's time to sit back, relax, and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites, or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: Throwback.
10: Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
12: इधर बाय द वे आपको हम याद दिला दें दिस इज़ द फाइनल वीक ऑफ स्कूल क्योंकि अब छुट्टियां जो है ये इसी फ्राइडे से शुरू हो रही है ना टर्म थ्री की छुट्टियां जो है आई मीन टर्म थ्री इज़ कमिंग टू एन एंड तो छुट्टियां शुरू होने वाली है फ्राइडे बीइंग द लास्ट डे फॉर मेनी स्कूल्स एंड आई होप कि एज पेरेंट्स यू ऑल आर प्रिपेयर्ड आपने अपना प्लान बना लिया है कि आपको इन टू वीक्स हॉलीडे के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है हाउ आर यू गोना गेट आई मीन कीप द किड्स एंटरटेन्ड और साथ ही साथ कैसे आप उनके साथ यू नो टाइम स्पेंड करने वाले हैं
13: ये सारी चीज़ें तो करनी ही हैं लेकिन उसके साथ दिस संडे और भी स्पेशल है क्योंकि इसी संडे से डेलाइट सेविंग जो है ये शुरू होने जा रहा है
12: देयर यू गो अ लॉट इज हैपनिंग तो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा हम सारे के सारे डिटेल्स जो है ये लेकर आते रहेंगे फिलहाल के लिए चलिए आज हमने आपसे पूछा कि हमारी बॉलीवुड मूवी जो आपको गेस करनी है कौन सी फिल्म लगती है आपको जवाब आपको देना है और आपने 5599 पर हमारे पास मैसेज करने हैं अपने सबसे पहले आज अगर देखा जाए तो फर्स्ट मैसेज जो हमारे पास आज आया था वो रोनल्ड का इन्होंने अपना जवाब जो है कि हमारे पास भेजा
13: थैंक यू सो मच रोनल्ड आपके मैसेज के लिए. उसके बाद निर्मल जीत, थैंक यू सो मच. रवनील हैं, साथ में एडी हैं, सल्लू गल्फ हाबर से. इसके अलावा 5627 ने अपना जवाब भेजा है. जीनत, थैंक यू सो मच. विश्नील हैं और जयेश, आपका भी जो जवाब है ये आया है. एंड लेट्स सी, अभी भी वक्त है आपके पास, क्योंकि 7 बजे के बाद जो जवाब है ये हम आपको देने वाले हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. तो अपने आंसर्स आप हमें ज़रूर भेजें.
12: बिल्कुल, आप हमारे पास BF लिखकर टेक्स्ट कर सकते हैं अपने नाम के साथ, और 5599 पर आपको अपने मैसेजेस सिंस भेजने हैं. 3 elements दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू जो हेल्प करे आपको टू गेस द नेम ऑफ द मूवी. नंबर 1 इज लव गुरु, नंबर 2 इज फुकेट, और नंबर 3 इज छोटा डॉन. दीज आर द 3 elements जिसके जरिए आप इस फिल्म का नाम जो है ये अनुमान इसका लगा सकते हैं. Remember, BF space, your answer, your name. 5599% correct, click on it. You will get the correct answer.

0: finance experience, call 0800-634-234.
1: Good morning, Kiara, namaste. Welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. 104.2 FM या Rover App के जरिए अगर आप हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ चुके हैं तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. आज है मंडे 21st of September और आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार मुबारक हो. एक नई सुबह के साथ हमेशा मिलती है एक नई शुरुआत और ये नई शुरुआत आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेक द मोस्ट ऑफ इट और इस पूरे सप्ताह को अपने लिए अपने हित में चेंज करने के लिए जितनी भी मेहनत आपको करनी है मेक श्योर यू गेट दैट डन. एंड हम आपके साथ हमेशा जबकि बने रहते हैं तो इफ़ देयर इज़ एनीथिंग वी कैन हेल्प यू आउट विद आप हमें भी ज़रूर यू नो इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्लान में,
2: बता सकते हैं. और इस घंटे भी तमाम चीजें जो है ये होंगी. 7:30 बजे न्यूज हेडलाइंस. ब्लैक कैप्स टीम को इंडिया टूर से पहले एक बहुत बड़ा झटका लगा है, इस पर डिटेल्स जो है ये हम आपको देने वाले हैं. और इसके अलावा यू स्टार्स फॉर द डे ये भी थोड़ी ही देर में.
1: तो इन सारी चीजों के लिए आपको तैयार रहना है. बट राइट नाउ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं. हमने पिछले घंटे सवाल भी आपसे किया था. आई थिंक नितिका का मैसेज लास्ट आया था जिन्होंने हमारे पास सवाल का जवाब भेजा. बॉबी मान जी इन्होंने भी आज के हमारे सवाल का आंसर जो है ये भेजा, जहां पर हमने आपसे कहा था आज की हमारी बॉलीवुड मूवी जो है ये गेस करने के लिए. सो वी हैड गिवन यू दीज थ्री एलिमेंट्स एज क्लूज, जिसमें सबसे पहला वाज लव गुरु, नंबर टू वाज फुकेट और नंबर थ्री वाज छोटा डॉन. सो द करेक्ट आंसर ऑफ द मूवी इज The correct answer for this question is Partner. ये film 2007 में आई थी और अगर आपको याद हो इसमें सलमान खान और साथ में गोविंदा एंड लारा दत्ता एंड कटरीना कैफ इन सभी ने काम किया था.
2: वेरी नाइस.
1: या सो दैट इज द करेक्ट आंसर. जितने लोगों ने हमारे पास अपने अपने आंसर्स भेजे हैं बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. दिस इज मॉर्निंग मैडनेस मेगा फाइनेंस की ओर से आपके लिए से हम लेकर आ रहे हैं. तो याद रहे थोड़ी देर बाद राशि वाइब्स, आज का आपका दिन कैसे रहेगा अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप्स ये जानेंगे. और थोड़ी देर बाद आपके लिए आज का सेलिब्रिटी अलार्म.

0: dance experience, call 0800-634-234.
1: Rashi Vibes.
2: कैसा रहेगा आज का आपका दिन? सबसे पहले मेष यानी एरीज, आज आपके काम में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन रात के समय किस्मत का पूरा साथ रहेगा। बिजनेस में आज हो सके तो किसी तरह का रिस्क ना ले। अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ का आज आपको ख्याल रखना चाहिए।
3: उसके बाद वृष ने टोरस, आज आपके लिए कहा जा रहा है कि ये जो दिन है आपके लिए काफी हैवी रहने वाला है इमोशनली, तो आपको इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड रहना है। कीप थिंग्स स्टेडी, रश ना करें किसी भी चीज को लेकर। आज प्रैक्टिकल अप्रोच आपके लिए काफी ज्यादा काम करेगा, और साथ ही साथ बहुत अच्छा दिन है अपने फाइनेंसेस को रिव्यू करने के लिए, सो मेक श्योर गेट दैट डन।
2: उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, आज आपके ऑपोजिशन में और ज़्यादा लोग आने वाले हैं। वैसे आज पति पत्नी के बीच संबंध काफ़ी मजबूत रहेगा। ऑफिस में रुके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं और फाइनेंशियली दिन बढ़िया रहेगा।
3: करके ने कैंसर, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि आज का दिन दरअसल विल बी मोस्टली अबाउट यू प्रोटेक्टिंग योर पीस, और ऐसा होना भी चाहिए। आज इस पर आप ज़्यादा काम करेंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा डिफरेंट ट्रेट रहेगा ऑफ योर पर्सनैलिटी, जो लोगों को शायद देखने को और समझने को मिले। दूसरी ओर आपके लिए ये भी बताया गया है कि हर किसी का प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आज क्वालिटी टाइम आपके लिए ज़्यादा मैटर करेगा ओवर ग्रैंड जेस्चर्स।
2: सिंह यानी लियो, सुख सुविधाओं पर आज आप काफ़ी ध्यान देंगे और डिसीशंस लेने में आज आप बहुत सक्षम रहेंगे, और इसका अच्छा फायदा आपको मिलने वाला है। प्रॉपर्टी के डील्स जो है ये आज फाइनलाइज हो सकते हैं, और आपके लिए भी कहा गया है कि आज फाइनेंशियली दिन बढ़िया होगा।
3: उसके बाद कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है कि आज आपका दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाला है। इनफैक्ट एक बहुत बढ़िया दिन है, ताकि आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकें और अनफिनिश्ड चीज़ों को आप कंप्लीट कर सके। एक सलाह भी दी जा रही है आपको कि आज हर चीज को ओवर एनालाइज करने की कोई जरूरत नहीं है आपको।
2: तुला यानी लिब्रा, आज आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, नेटवर्किंग आप और तेजी से करेंगे, इससे आपको फायदा भी होगा, और इसके अलावा आज आपका हेल्थ काफी बढ़िया रहेगा।
3: वृश्चिक ने स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखें, लेकिन फैक्ट चेक्स भी आप जरूर कर सकते हैं। और दूसरी ओर आपके लिए ये भी बताया गया है कि अपने प्लान्स पर फोकस करें और उन्हें प्राइवेट रखें, जब तक कि आप 100% श्योर नहीं है कि आप ये किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज यू रीच्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ एश्योरिटी की हाँ अब आपके लिए चीज़ें जो है ये अच्छी हो सकती है।
2: धन यानी सेजिटेरियस, दिन भर आज भाग दौड़ होगी इधर उधर, इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी बढ़ेगा, और हो सके तो उधारी से बचे, चाहे वो देना हो या फिर लेना हो। नए प्रोजेक्ट्स आज आपको मिल सकते हैं, निजी जिंदगी में जो गलत फहमियाँ थी ये आज दूर हो सकती हैं।
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है यू आर इन सीरियस अचीवमेंट मोड, आप लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तो फाइनली आप उस मोड में पहुंच चुके हैं। इसी तरह से स्टे फोकस्ड आपके लिए कहा गया है, और आपका एक वो चीज़ बोलते हैं कि कमिटमेंट रहना, कंसिस्टेंसी बरकरार रखना ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ हाउ आप प्रोग्रेस अपनी लाइफ में नोटिस करेंगे। मेक श्योर कि आप अपने आसपास उन रिश्तों पर भी ध्यान दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज आपके काम की वजह से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आज इनकम के नए रास्ते आपके लिए इख्तियार होंगे, चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी हो, तरक्की आज आप करेंगे और अपने जीवन साथी के साथ कुछ यादगार लम्हे गुजारने का मौका आज आपको मिलेगा।
3: फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि आपका इंट्यूशन स्पेशली आज के इस दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, सो इसीलिए उस पर भरोसा करें। अगर कोई भी फीलिंग आपको आ रही हो वेरीफाई कर सकते हैं आप, लेकिन उस पर ट्रस्ट ज़रूर करें, ये सलाह दी जा रही है। आज सिंसियर कॉन्वर्सेशंस होंगे, जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सकती है, स्पेशली इन सर्टेन रिलेशनशिप्स जो आपके लिए काफ़ी मायने रखते हैं, और इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के दूर होते पर या होने पर आज यूड फील वेरी रिलीव्ड। इमोशनल स्पेंडिंग अवॉइड करें, अदरवाइज इमोशनल स्पेंडिंग करते करते कब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके लिए शुरू हो जाएगी, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं रहेगा। सो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे।
1: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
5: Driving you home. Right.
0: ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
5: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
6: ये गलत बोल दिया यार।
5: और पहनता भी नहीं है उसको।
6: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी, बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
5: इंटरेस्ट
7: ब्रांड हो गया
6: अभी, ब्रांड हो गया ना
5: रुस्बे के बाल लगे उस।
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuko and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuko and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jenku.
8: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी, जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
9: मुझे भी।
8: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
10: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Huge side-by-side stainless steel fridge freezer $699. 10kg 9-star energy heat pump dryer $799. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
11: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
12: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Vitapet Morsum's Dog Treats 300 to 350 gram, just $12.99 each. And Purina One Cat Food 1.4 to 1.5 kg or Dog Food 2.5 kg, just $18.69 each. T's and C's apply.
13: Spruce your backyard for spring at Trade Tested. Smash the winter grime with a Kartcha water blaster. Get a Hyundai chipper in to shred the branches or deal to the weeds with a fancy Greenworks electric garden sprayer. Be first up, best dressed this spring at Trade Tested.
1: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manuko. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manuko.
1: Celebrity Alarm.
3: Hit it. सेलिब्रिटी अलार्म की बारी आई है और आज एक नई आवाज़ एक बार फिर आपके लिए हम लेकर आए हैं। देखना ये है कि क्या ये आवाज़ आप पहचान पाते हैं या नहीं, कि ये किन की आवाज़ है। तो पहले तो आवाज़ सुनाते, फिर उसके बाद कुछ बातें करेंगे। एंड हियर वी गो।
14: सो मिस्टर गोल्डी, योर किड्स आर वेरी वीक इन डांस एंड इंग्लिश टू।
15: नहीं नहीं नहीं, डांस में वीक हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में अनपॉसिबल। बच्चों के होने वाली मम्मी का फोन है।
14: Please talk in English.
3: तो ये जो हमने आपको सुनाया है, आपको इस ऑडियो में से अनुमान लगाना है कि ये किसकी आवाज है। But I'm talking about

0: kids are very weak in dance and English too.
1: नहीं नहीं नहीं नहीं. डांस में वीक हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में अनपॉसिबल. एक बच्चों के होने वाली मम्मी का फोन है.
2: प्लीज टॉक इन इंग्लिश.
1: सॉरी.
3: तो जल्दी से बताइए कि ये कौन है जिनकी आवाज हमने आपको अभी अभी सुनाई. और जवाब देने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज
4: BF, अपना आंसर, अपना नाम ये लिखें और 5599 पर हमें भेज दें.
3: जवाब देने के लिए आपके पास है 5 मिनट का समय. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
5: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
6: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
7: मैं लाऊं अपना ए गेम.
5: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 1800 634 234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, ऑकलैंड में सप्ताहांत हुए दो अलग अलग सीरियस असॉल्ट्स के बाद दो लोग हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए हैं। पहला इंसिडेंट ग्रेलियन के पॉलिन स्ट्रीट पर रात 1:45 AM पर हुआ, जहां एक शख्स को मॉडरेट कंडीशन में ऑकलैंड सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। दूसरा हमला न्यू विंडसर के न्यू नॉर्थ रोड पर सुबह 4:55 AM के करीब हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को सीरियस इंजरीज के साथ इमरजेंसी डिपार्टमेंट भेजा गया। पुलिस दोनों इंसिडेंट की छानबीन कर रही है। कंज्यूमर न्यूजीलैंड ने ग्रोसरी सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नए प्रपोजल्स और सॉल्यूशंस पर खुशी जताई है। लेबर ने जितने पर फूडस्टफ और वुलवर्थ्स के होलसेल और रिटेल आर्म्स को अलग करने और छोटे स्टोर्स को गारंटीड होलसेल एक्सेस देने का प्लान बनाया है। इससे पहले नेशनल और न्यूजीलैंड फेस्ट ने फूडस्टफ को स्प्लिट करने की बात की थी, जबकि ग्रीन्स ने पब्लिक इंटरेस्ट में एक नया स्टेट ओन्ड क्यूवी मार्ट शुरू करने का प्रपोजल दिया है। कंज्यूमर न्यूजीलैंड के सीईओ जॉन डफी के मुताबिक, अब डिबेट ये नहीं कि सरकार को स्टेप इन करना चाहिए या नहीं, बल्कि ये है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस को सही तरीके से कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। वॉरियर्स टीम का ये सीजन जो है कल एक हार के साथ खत्म हो गया। NRL सेमीफाइनल में कल वॉरियर्स की हार नाइट्स के खिलाफ 12-10 से हुई। प्रीलिमिनरी फाइनल से इस वीकेंड पर खेले जाएंगे। फ्राइडे को डॉल्फिन्स रूस्टर्स से खेलेगा, जबकि संडे को 7 PM पैंथर्स और नाइट्स का मैच खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर रचिन रविंद्र ऑकलैंड में एक कमर्शियल शूट के दौरान राइट शोल्डर डिसलोकेट होने के बाद इंडिया के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर होने के कगार पर हैं। मेडिकल टेस्ट में मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज तो नहीं मिला है, लेकिन 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली 5-match T20 सीरीज के लिए उनका फिट होना अभी अनसर्टेन है। ब्लैक कैप्स के हेड कोच रॉब वॉल्टर ने साफ किया है कि आगे बड़े टेस्ट मैचेस को देखते हुए रचिन की रिकवरी में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco. Accurate traffic.
4: ThePropertyDirectory.com.
5: 16-hour high today, staying a cloudy one all day. Coming in on the Northern Motorway, 26 minutes, Constellation Drive to town, 50 from Silverdale. We're very heavy Silverdale to Snow Planet. Slow Constellation to the bridge with a few heavier patches. Northwestern, half an hour Massey to the city, slow on the causeway, heavy on and off from Point Chev. Southern 43, Monaco to town, slow Papakura to the city, heavy patches from Mount Wellington.
4: Thinking about property? Everyone you need in one place. ThePropertyDirectory.com.
6: Professional Finance है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846 9934 और सर्च PFSL. T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।

0: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
1: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is to Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
2: Buy a birthday bundle at Macca's and get a birthday bonus. Choose between 35% off toys online at The Warehouse or free 30-minute time play at Time Zone. The more the merrier at Macca's 50th. T's and C's apply. Birdie.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
3: Birthday greetings.
5: Is your birthday, bhai?
6: Mera bhi birthday. Chalo line mein aa jao.
5: Happy birthday to you.
7: A very, very happy birthday. आपको विश करने का समय हो रहा है जहाँ कहीं भी आज अपना बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं. हैप्पी बर्थडे. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हमारी पूरी की पूरी हम टीम की ओर से हम विश कर रहे हैं. आज सबसे पहले अ वेरी हैप्पी बर्थडे हम विश करना चाहते हैं बबीता जी को. अपना बर्थडे आप मना रही हैं. हैप्पी बर्थडे टू यू. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपके समस्त परिवार वालों की ओर से आज के आपके जन्मदिन के खास मौके पर आपको याद किया जा रहा है और विश किया जा रहा है.
8: प्रंजलि चिताले जी हैं माउंट रॉस्किल में. अपना जन्मदिन आज आप मना रही हैं. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. जितने भी परिवार वाले हैं सभी आज आपको शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. हम सभी की ओर से भी ये खास दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो.

0: dance experience. Call 0800-634-234.
1: Let's go.
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
3: 24 minutes away from 8 for now. T-card पर आपके लिए न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये हम जरूर लेकर आएंगे. और दूसरी ओर आज के हमारे जो सेलिब्रिटी अलार्म की वॉइस आपको गेस करनी थी, इसके लिए मैसेजेस आपने भेजे, थैंक यू सो मच. मोविन ने सबसे पहले अपना आंसर भेजा, साथ में सनी है, विधि है, जसमीत का भी जवाब आया है, कविता है, और इसके अलावा किसी ने मैसेज किया है, नाम नहीं लिखा है. विकास, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू आपके मैसेज के लिए. शबनम ने भी अपना आंसर भेजा है. बाय द वे एक मैसेज है, उन्होंने कहा मॉर्निंग विजन पूजा, हु वाज द विनर ऑफ द ट्रैवल वाउचर. ये आई थिंक बोर्डिंग कोल के बारे में बात करें ना, वनवातु के ट्रिप के लिए.
4: अच्छा, ड्राइव में जो विनर है ये अनाउंस हुए थे ऑन फ्राइडे, एंड जो हमारे विजेता हुए थे उनके बारे में लगे हाथों हम आपको बता दें कि कौन थे और जिन्हें मिला है रिटेन टू रिटेन एयर टिकट्स टू वनवातु विद $1,000 स्पेंडिंग मनी. और इनका नाम है धीर सिंह. धीर सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको. अगर अभी आप सुन रहे हैं, इन्होंने 100 में से 98 बोर्डिंग कॉल्स जो है ये एंटर किए थे.
3: वाओ, सी द मोर यू टेक पार्ट द मोर चांसेस ऑफ विनिंग, इनके लिए सही साबित हुआ. सो 100 में से 98 आपने कहा ना.
4: यस, धीर सिंह,
3: दैट्स अमेजिंग. तो धीर सिंह इज आवर विनर, जिनको मिला है टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वनवातु विद $1,000 स्पेंडिंग मनी एज वेल, हमारे हम बोर्डिंग कॉल के विनर. बाय द वे इधर आपको ये भी हम बताएंगे थोड़ी देर बाद कि न्यूजीलैंड में दे इज अ पर्टिकुलर डे विच इज द मोस्ट कॉमन डे फॉर बर्थडेज.
4: अच्छा
3: जी, इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, कौन से ये दिन है इस पर कुछ चर्चा आपके साथ हम जरूर करेंगे. द मोस्ट कॉमन डे ऑफ बर्थडे इन न्यूजीलैंड, तो थोड़ी देर बाद ये रहेगा. लेकिन उससे पहले आज के हमारे सेलिब्रिटी, जिनकी आवाज हमने आपको सेलिब्रिटी अलार्म में सुनाई थी, वॉज नन अदर देन विजय राज. बड़े कमाल के एक्टर है, कई यू नो सीरियस रोल्स में काम किया इन्होंने, कई फनी कॉमेडिक रोल्स में भी नजर आए हैं ये. लेकिन आई थिंक द मोस्ट पीपल जिन जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर्स इनको जानते वुड बी
4: कौवा बिरयानी.
3: या रन फिल्म में जो उन्होंने, हाउएवर उस कैरेक्टर का नाम कौवा बिरयानी नहीं था, बट दैट्स द वे पीपल आइडेंटिफाई हिम नाउ.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना.
0: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: हम एक्यूरेट ट्रैफिक.
2: लूज एन आवर्स स्लीप, नॉट योर लाइफ.
3: Cloudy today with westerly winds, high of 16. Into the city, Northern Motorway, 32 minutes from Constellation Drive to town, 55 from Silverdale. Heavy Silverdale to Snow Planet and heavy patches, Constellation to the bridge. Northwestern, 28 minutes messy to the city, slow from Pātiki, heavy Point Chief to St. Luke's. Southern, 46 Mataco to town, slow Takanini to the city, heavy Otahuhu to Green Lane.
2: Install smoke alarms where you sleep this daylight saving.
4: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call.
5: Dash!
6: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range. Now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes. It's a natural choice for everyday feeding. So, looking for nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition and supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in store today.
7: Looking to turn business payments into points? With the American Express Gold Rewards business card, you could earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Offer ends 14th December 26, 1.5k min spend in first 3 months. New card members only. Membership rewards, T's and C's apply.
8: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged, or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Don't mind, lekin aap dono ki jodi badi cute hai.
9: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
11: 15 मिनट बाकी इस समय हमारे स्टूडियोज में वैसे 8 बजने में और ठीक 8 पर आपके लिए न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये हम जरूर लेकर आएंगे रश हवा में. नाउ गेट रेडी. अगर आप फिलहाल हमें सुन रहे हैं, पुट द वॉल्यूम ऑफ द रेडियो अप अ लिटिल बिट ताकि आप अच्छे से ध्यान से इसे सुन सके.
12: अच्छा,
11: मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड में सबसे कॉमन बर्थ डेट
12: कौन सा है.
11: यस, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, ये एक नया डाटा जो है ये रिवील किया गया है स्टेट्स न्यूजीलैंड द्वारा. Looking at births between 1980 से लेके 2023 के बीच में.
12: Okay.
11: And इस particular data में ये reveal हुआ है कि the most common and least common birthdays New Zealand में कौन से हैं.
12: Hmm.
11: अगर मैं आपको बोलूँ एक अनुमान लगाने के लिए कि आपको क्या लगता है कौन सा दिन इज द मोस्ट कॉमन दिन जहाँ पर ज्यादातर लोग जो न्यूजीलैंड में है इनकी पैदाइश हुई है 1980 से लेके 2023 के बीच में, तो आप कौन सा डेट चुनोगे? ये कैलकुलेशन क्या करने लगे आप?
12: से अराउंड 20th ऑफ नवंबर, 25th ऑफ नवंबर, समथिंग लाइक
11: दैट. 20th और 25th ऑफ नवंबर.
12: हां, मिड नवंबर.
11: ओके, इंटरेस्टिंग. आई कैन से कि आप थोड़ा आगे चले गए हैं.
12: हां, आई मीन ऑब्वियसली
11: द मोस्ट कॉमन बर्थडे इन न्यूजीलैंड जो नोट किया गया है इस पर्टिकुलर डाटा के हिसाब से ये इसी हफ्ते है.
12: September में
11: है. And the day is 27th of September. 27th of September is the most common day जहाँ पर according to this particular data or research stats New Zealand ने जो रिलीज किया है 1980 से लेकर 2023 के बीच में सबसे ज्यादा लोग जो है ये बर्थ डेट शेयर करते हैं 27th of September. In fact, 10 most common birthdays जो न्यूजीलैंड में हैं, they all fall within just 13 days of time, जो 22nd September से लेके 4th of October के बीच में है. 10 most common birthdays ये इन 13 days के अंदर अंदर है.
12: Yeah.
11: 30 most common birthdays ये 14th September से लेके 19th of October के बीच में फॉल होता है.
12: Okay.
11: The 30 most common birthdays in New Zealand.
12: समझ गए.
11: अगर मैं बोलूँ कि आपको, अगर मैं ये पूछूँ कि आपको क्या लगता है सबसे रेयर लीस्ट कॉमन डेट बर्थडे का ये क्या होगा यहाँ पे, आप क्या चुनोगे? यहाँ देखने की जरूरत नहीं.
12: अप्रैल फूल्स डे.
11: अप्रैल फूल्स डे नहीं.
12: इट्स ओके, तो बता दो
11: कोशिश की आपने, बट देयर आर टू डेट्स जिसे सबसे रेयर लीस्ट कॉमन माना गया है व्हेन इट कम्स टू बर्थ डेट्स इन न्यूजीलैंड. नंबर वन बीइंग 25th ऑफ दिसंबर व्हिच इज क्रिसमस डे. इट्स लाइक द रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस कि आपका बर्थडे इस दिन फॉल होता है. एंड अनदर रेयर डे ऑब्वियसली क्योंकि ये चार सालों में एक बार आता है,
12: 29th
11: ऑफ फरवरी. तो दीज आर द टू मोस्ट रेयर डेट्स जो न्यूजीलैंड में पाया गया है किसी का बर्थडे अगर फॉल होता है. लीस्ट कॉमन या कम से कम लोगों का जन्मदिन इन दो डेट्स पर नोट किया गया है. और अदर बर्थडेज दैट आर लीस्ट या लेस कॉमन टेन टू फॉल अराउंड पब्लिक हॉलीडेज जिसमें 24th ऑफ दिसंबर से लेके 27th ऑफ दिसंबर, फिर 1st ऑफ जनवरी से लेके 2nd जनवरी, वे टांगी डे और एनजेक डे जैसे पब्लिक हॉलीडेज ये शामिल है. एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये पैटर्न सिर्फ न्यूजीलैंड में नहीं नोट किया गया है. ये सिमिलर पैटर्न ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेल्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स में भी नोट किया गया है.
12: वहाँ भी न्यूजीलैंड को फॉलो करते हैं लोग?
11: नहीं, न्यूजीलैंड को नहीं फॉलो करते, बट सिमिलर पैटर्न जहाँ पर दीज आर द कॉमन बर्थ डेट्स एंड दीज आर द लीस्ट कॉमन बर्थ डेट्स. तो आज मैंने सोचा कि अभी आपसे जानना चाहते हमारे साथ जितने भी लोग राइट नाउ शामिल हैं, जरूरी नहीं कि आप, पर समवन यू नो अगर वो भी आपके यू नो जानकारी में है तो आप बता सकते हैं दिस इज द पर्सन. हमें तलाश है उन लोगों की जिनका जन्म ऑन दिस लीस्ट कॉमन डेट्स पे हुआ है. द टू डेट्स जो मेंशन किए गए अकॉर्डिंग टू स्टेट्स न्यूजीलैंड आर 25th ऑफ दिसंबर व्हिच इज क्रिसमस डे एंड 29th ऑफ फेब जो चार साल में एक बार आता है. तो क्या आप या आपके किसी जानकार का बर्थडे इन दो डेट्स पे फॉल होता है या नहीं? लेट्स सी, इज इट लाइक रियली सो अनकॉमन टू हैव बर्थडेज ऑन दीज डेट्स?
12: ना,
11: नहीं,
12: इट्स नॉट रियली अनकॉमन.
11: अच्छा, परविंदर का कॉल आ रहा है, लेट्स सी इनको क्या कहना है. गुड मॉर्निंग परविंदर.
5: गुड मॉर्निंग,
11: कैसी हो आप?
5: एक और हफ्ता रह गया
11: छुट्टी जो है ना इसके लिए. तो बताइए क्या कहना है आपका, आपने कॉल किया.
5: हाई स्कूल में मेरी एक क्लासमेट थी पहले, उस टाइम तो अच्छी फ्रेंड थी पर अब इतना टाइम हो गया ना, इतनी बात नहीं होती. उसका बर्थडे 29 फेब को होता था.
11: ओके.
5: और वो मतलब ऐसे ही बोलती थी कि मेरी तो एक चार साल में एक बार पड़ती है.
11: अच्छा, जिनका बर्थडे 29 फेब को पड़ता है वो क्या चार साल में एक ही बार सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज आई नो ऑफ समवन जिनका पड़ता था ऐसे 29 तो फेब को, बट वो एक डेट हो लो चाहे वो 28 तो फेब हो या फिर 1st ऑफ मार्च वो चुन लेते थे हर साल बर्थडे मनाने के लिए.
5: वो 28 को करती थी.
11: अच्छा, वो 28 को करती थी. ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग. थैंक यू परविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, हैव अ वंडरफुल डे. तो परविंदर ने बताया कि उनकी फ्रेंड हाई स्कूल में थी जिनका था 29 फेब को. अभी आप भी मैं बता सकते हैं, सीम्स लाइक काफी रेयर है बिकॉज़ अभी तक सिर्फ एक ही कॉल आया ना.
12: तो आप बताएं कि क्या आप किसी को जानते हैं जिनका जन्म जो है आइदर 25th ऑफ दिसंबर या फिर 29th ऑफ फरवरी को हुआ है.
11: जी, क्योंकि हम तलाश कर रहे हैं उन लोगों की जिनके लिए कहा जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स न्यूजीलैंड का नया डाटा, न्यूजीलैंड में ये सबसे लीस्ट कॉमन बर्थडेज है, द लीस्ट कॉमन डेट्स अगर किसी का बर्थ हुआ है यहाँ न्यूजीलैंड में. गुड मॉर्निंग. हम
13: हाय, गुड मॉर्निंग विजय पूजा, हाउ आर यू?
11: बढ़िया जी, आप कैसी हो?
13: बिल्कुल बढ़िया
11: जी.
13: पूजा, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका डाटा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा बर्थडे वेंसडे को है.
11: अच्छा,
13: 23rd September
12: परसों.
13: हैप्पी
12: बर्थडे इन एडवांस.
13: थैंक यू. मेरा नेफ्यू है, बर्थडे होता है 1st of January को.
11: 1st January, ओके, दैट्स आल्सो लीस्ट कॉमन बर्थ डेट अकॉर्डिंग टू दिस डाटा.
13: इट इज. और मेरा एक और फ्रेंड है, उसका बर्थडे होता है 31st December को.
11: 31st December. Interesting.
13: So very, very, very uncommon birthdays.
12: आप popular वाले में हैं? I mean most common.
11: Most common में, ये तो least common में है यार. नहीं, actually आपका nephew least common में सिर्फ, क्योंकि 31st of December is also kind of not in least common.
13: Oh,
11: जी.
13: I thought it would be least common.
11: 24th December to 27th of December is marked as least common. लेकिन 1st and 2nd January काफी, I mean, वो भी लीस्ट कॉमन है. थैंक यू आपके कॉल के लिए मैम, हैव अ वंडरफुल डे. एक फाइनल कॉल हो जाए. गुड मॉर्निंग.
14: गुड मॉर्निंग जी, हाउ आर यू?
11: बढ़िया जी, आप कैसे हो?
14: ठीक. 25th का तो बड़ा अच्छा दिन है, मेरी मॉम का बर्थडे है.
11: 25th ऑफ व्हाट?
14: दिसंबर.
11: दिसंबर, चलो एक मिला लीस्ट कॉमन.
14: मॉम का बर्थडे है
11: जी.
14: और मेरे बहन के बेटे का बर्थडे, दो बहनों के बेटों का बर्थडे 29 फरवरी को है.
11: 29 फरवरी, वाह. तो आप कैसे आपके नेफ्यूज कैसे सेलिब्रेट करते हैं, लाइक 28th ऑफ फेब को कि 1st मार्च को?
14: वो तो 3 दिन करते हैं.
11: कब करते हैं?
12: 3 दिन.
14: 27th को शुरू हो जाते हैं, कहते हैं हमारा तो आएगा नहीं. 27th को भी, 8th को भी और 1 तारीख को भी.
11: क्या बात है यार, बढ़िया जी. थैंक यू.
14: बहुत तंग करते हैं.
11: थैंक यू जी. इनको गिफ्ट देने पड़ते होंगे ना 3 दिनों के लिए. नेफ्यूज का बर्थडे तो देना ही पड़ेगा. सो इंटरेस्टिंग. अभी तक देखा जाए तो सिर्फ एक कॉल आया जिन्होंने कहा कि मेरा मेरी मम का बर्थडे 25th ऑफ दिसंबर को है. सो क्या आप भी लीस्ट कॉमन बर्थ डेट्स वाले उस ग्रुप में फॉलो होते हैं?
12: प्रीतिका का कहना है, माय नीस was born on 29th of Feb.
11: So the two least common birthdays are 25th of December and 29th of Feb. Do you also fall in that category?

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: सुपर सिटी ऑकलैंड में आज का मौसम बताया जा रहा है ज्यादातर क्लाउडी रहेगा. लेट मॉर्निंग शावर्स जो है ये भी प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं. सनसेट तो 6:17 पीएम पर होगा. राइट नाउ टेम्परेचर 13.7 डिग्रीज तक है. हाई ऑफ 16 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है, जबकि ओवरनाइट टेम्परेचर 12 डिग्रीज आज रहने वाला है.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
2: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून. एंड हैरिंगटन लिविंग Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: Aaj ki Trend Patrol kahani jo hai is really interesting. ये अभी गणपति उत्सव जो है बड़े हर्ष के साथ सेलिब्रेट किया गया. इवन यहाँ न्यूजीलैंड में भी बहुत से जगह पर लोग गणपति को अपने घर पर लेकर आए और फिर विसर्जन हुआ. एक मंदिर है पुणे में जहाँ पर एक मोदक शेप में एक केक जो है ये चढ़ाया गया.
1: ओके.
3: श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति को.
1: ओके.
3: और ये पूरी दुनिया में अभी ट्रेंड कर रहा है क्योंकि ये मोदक शेप केक जो है 251 kg का था.
1: वाओ,
3: 251 kg,
1: काफी ह्यूज होगा ना.
3: हाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पिक्चर कि ये कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन जो फोटो दिख रहा है ये काफी बड़ा है उस फोटो में.
1: right.
3: और ये कोई ट्रेडिशनल मोदक जो यूजुअल इंग्रेडिएंट से बनता है वैसा नहीं था. ये जो जायंट 251 kg का जो मोदक शेप केक है वॉज ए रस मलाई फ्लेवर्ड केक. और पुणे स्थित डब्ल्यू एस बेकर्स ने एज अ स्पेशल ऑफरिंग ये तैयार किया था. और 40 से 50 लोग जो है इन्होंने मिलकर इस 251 kg केक पर काम किया था. एंड दिस वॉज द सेकेंड ईयर इस बेकरी ने इस तरह का कोई जो क्रिएशन है ये किया था. द आइडिया वॉज टू ब्रिंग टूगेदर टू थिंग्स क्लोजली एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशन, ट्रेडिशनल मोदक और मॉडर्न सेलिब्रेशन केक. इन
1: nice.
3: दोनों को उन्होंने कंबाइन किया और ये बहुत ही ड्रामेटिक बैकड्रॉप में आया. इस साल दगड़ू सेठ गणपति पंडाल जो है उसे डिजाइन किया गया अराउंड वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है.
1: अच्छा.
3: वहां पर और ये स्ट्रक्चर जो है 120 फीट लॉन्ग, 90 फीट वाइड और 100 फीट हाई है. और टेंपल इंस्पायर्ड डिटेलिंग्स ये सारी चीज़ें जो है. और पुणे में ये फेस्टिवल 14th ऑफ सितंबर को शुरू हुआ और ये 25th ऑफ सितंबर को जाकर ख़त्म होगा. और वहीं पर ये जो 251 kg का जो मोदक केक है
1: ये चढ़ाया जाएगा.
3: Yeah.
1: I mean, चढ़ाया गया. हाँ. हाँ. Nice, यार. I mean, जब भी गणपति फेस्टिवल जो है ये आता है, I mean, गणेश चतुर्थी जब भी आने वाला होता है उससे पहले ही काफ़ी ऐसी चीज़ें लोग करते हैं विच बिकम्स वेरी इंस्पायरिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज वेल. और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिस पर कई सवाल भी उठते हैं, स्पेशली द वे पीपल जो है गणपति जी की मूर्ति विसर्जित करते हैं और उसके बाद जो भी देखने को मिलता है वो भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है. बट एट द सेम टाइम ऐसी क्रिएटिविटी भी लोग दिखाते हैं. इनफैक्ट मैंने भी एक चीज़ जो है ये नोट की थी और वो था ये कि स्वप्निल, आपको याद है स्वप्निल जोशी करके एक टीवी स्टार है, उन्होंने रामानंद सागर जी की जो रामायण है इसमें लव कुश का किरदार में से एक आई थिंक लव या कुश कुछ तो प्ले किया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इज वेल. सो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं ये. और इन्होंने रिसेंटली रिवील किया कि हर साल जब इनके घर गणपति जो है ये जी आते हैं, गणपति जी आते हैं, तो ये प्रसाद नहीं लेकर आते
3: हैं.
1: ये प्रसाद के बदले नोटबुक्स जो है ये लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनके घर थाउजेंड्स ऑफ लोग आते हैं गणपति जी गणपति के दौरान, लाइक फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जब तक गणेश चतुर्थी ये सेलिब्रेट करते हैं, जितने दिनों के लिए भी ये बप्पा को अपने घर रखते हैं. तो उतने सारे सिचुएशन में अगर कितने भी अमाउंट का, कितने भी किलो का आप मिठाई लेकर आते हो तो वो कभी कभी वेस्ट हो जाता है, लाइक पीपल डोंट ईट ऑल ऑफ इट. हाँ, उसके एक सोल्यूशन है कि ये बांट देते हैं गरीबों में. बट ही थॉट कि इंस्टेड ऑफ दैट, क्यों ना जो नोटबुक्स है ये दिए जाए. एंड दोज नोटबुक्स पीपल आर एनकरेज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल्स और टू ऑफनेजेस जहां पर बच्चों की पढ़ाई में वो काम आ सकता है. इन प्लेसेस लाइक जहां पर शायद बच्चे वो खुद या उनकी फैमिली वाले खुद अफोर्ड नहीं कर पाते, तो एज अ डोनेशन वो चला जाता है. एंड इट इज समथिंग जो वेस्ट नहीं होता, मतलब उसको यूजफुल तरीके से जो है ये स्पेंड करते हैं.
3: इट्स अ गुड आइडिया. शायद उनको खुद मुमकिन नहीं होगा उनके लिए सभी जगह पर पहुंचना, तो
1: हाँ,
3: इतने सारे
1: तो
3: लोग आते
1: हैं थ्रू ये करते
3: हैं. हाँ, कर देते हैं. बहुत बढ़िया. और ये जब मैंने रसमलाई केक के बारे में या फिर मोदक शेप रसमलाई केक इसके बारे में पढ़ा, तो मैंने सोचा एक सवाल पूछते हैं
1: जी.
3: आपका फेवरेट फ्लेवर ऑफ केक?
1: उफ, ओह माय गॉड, इंटरेस्टिंग. आपका क्या है ये फेवरेट फ्लेवर?
3: माय फेवरेट फ्लेवर,
1: हाँ ओए उसका फेवरेट फ्लेवर भूल गए आप.
3: समथिंग टू डू विद बटर मे बी, बटर केक और समथिंग लाइक दैट.
1: अच्छा, बटर केक. ओके, चलो वही कर लेते हैं.
3: आपका कौन सा है?
1: मेरा बनाना फ्लेवर केक, जिसे बनाना
3: I didn't know until today कि आपको बनाना फ्लेवर केक पसंद.
1: मुझे बनाना केक पसंद है.
3: I like बनाना ब्रेड, but बनाना केक.
1: Yeah. ये शॉकिंग एक्सप्रेशन मेरी बेबी शावर में भी लोगों ने मेरे को दिया था, जब मुझसे पूछा गया था कि अच्छा आपका फेवरेट फ्लेवर क्या है, ताकि सीक्रेटली मेरे लिए केक ऑर्डर हो बेबी शावर के लिए. एंड व्हेन आई एक्चुअली फाउंड आउट कि इन्होंने बेबी शावर के लिए बनाना फ्लेवर्ड केक किया था, आई वाज लाइक ओके फाइन, बिकॉज ऑफ कोर्स हर किसी को नहीं पसंद आता, मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक इट. एंड द पीपल हु वर एट द बेबी शावर, दे एट दैट बनाना फ्लेवर्ड केक.
3: कोई चॉइस नहीं था ना,
1: क्योंकि वो मेरी पसंद थी. बट ऑफ कोर्स मेरे को बड़े आप जैसे नहीं, आपने जैसे भी एक्सप्रेशन दिया वैसे एक्सप्रेशंस मैंने पहले भी देखे. व्हेन आई टेल पीपल आई लाइक दैट केक.
3: बनाना का इस्तेमाल आए जब वैसे बहुत रेयरली मैं केक बनाता हूं.
1: हाँ, एक्सक्यूज मी,
3: या वेरी रेयरली आई मेड इट वंस, बट
1: वेरी रेयरली नहीं बोलते इसको, हार्डली एवर.
3: हाँ, तो रेयरली तो हुआ ना.
1: हाँ, अच्छा बताइए.
3: तो क्या हुआ कि अंडे के जगह पर मैंने बनाना का इस्तेमाल किया था एज अ सब्स्टिट्यूट.
1: ओके,
3: या
1: इंटरेस्टिंग, राइट. तो आप भी बताइए अपना फेवरेट फ्लेवर ऑफ केक, कौन सा वो फ्लेवर ऑफ केक है दैट यू एब्सोल्युटली लव. BF Space answer your name 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं. थोड़ी देर बाद आज का वन से टेक टॉपिक आपके लिए हम लेकर आएंगे. इश्क

0: और अब रिसेंटली जो सर्वे किया गया इसमें 47 सेकंड्स,
1: स्लाइटली ओवर हाफ अ मिनट।
0: या
1: दूसरी चीज जो रिसर्च में सामने आई है कि एक एवरेज कस्टमर जो है विल कंप्लीटली वॉक अवे फ्रॉम अ स्टोर और लाइन आफ्टर 8 मिनट्स।
0: अच्छा,
1: Gen Z, इनका मैक्सिमम वेट टॉलरेंस जो है 5 to 8 मिनट्स बताया गया है।
0: ओके,
1: एंड बेबी बूमर्स दे कैन गो अप टू 25 मिनट्स।
0: वाओ, वेरी पेशेंट।
1: 80% ऑफ कंज्यूमर्स ने एडमिट किया है कि वो एक्टिवली अवॉइड करते हैं स्टोर्स जहां पर बहुत लंबी लाइन हो, कतार हो, दे ट्राई नॉट टू गो देयर।
0: राइट,
1: इसके अलावा वेब पेजेस, आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ये कब किक इन करता है। वेब पेज के बारे में बात सामने आई है, पीपल विजिबली गेट फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर 16 सेकंड्स।
0: वाओ,
1: अगर 16 सेकंड्स में आपका पेज लोड नहीं हुआ, यू स्टार्ट टू गेट फ्रस्ट्रेटेड।
0: ओके,
1: ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पर अगर आप खड़े हैं,
0: जनरली
1: वेट कर रहे हैं टू गो फॉर द लाइट टू गो ग्रीन, After 25 seconds,
0: you lose your patience.
1: Patience khatm hone lagta hai.
0: Wow.
1: Video streaming. People start cursing their TV screen ya laptop agar stream jo hai within 22 seconds nahi start hota hai. Aur is tarah ki aur bhi bahut sari cheeze jo hai ye samne aayi hain. Maine socha aaj aap se poochte hain ki Have we become so
0: impatient? Why
1: हम इतने बेसब्र क्यों हो गए हैं वक्त के साथ? हमारे में वो पेशेंस जो है ये क्यों खत्म हो जाता है? Why do we want things immediately? ना कुछ करते हैं उसका रिजल्ट हमें इमिडिएटली चाहिए।
0: राइट,
1: और अगर नोटिफिकेशन का किसी एक सोशल मीडिया टैब पर आप हैं अपने फोन पर, अगर नोटिफिकेशन का कुछ नया नहीं आया within maybe 20-30 seconds आप देखेंगे कि आप naturally उसको refresh कर रहे हैं in search for a new notification.
0: Yes, that is true.
1: ये जैसे मैंने कहा कि subconscious mind से ही हम कर रहे हो, लेकिन हमारा patience level जो है पहले के मिलान में बहुत
0: कम होता जा रहा है। Yes, कम हो गया है, not कि नहीं हुआ है, कम हो गया है और कम होता जा रहा भी है। So what do you think is the reason that you feel like कि आप impatient हो रहे हैं? As an individual, अपने आप को आप evaluate कर बता सकते हैं। We are not asking for a generalized view कि आजकल की generation नहीं, ऐसा कुछ नहीं। We just talking about you,
1: अपना निजी experience। ये जब मैंने ये research किया over the weekend और आज सुबह जब इन चीजों के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं I found myself guilty also। पेशेंस लूज हो जाता है व्हेन इट कम्स टू सर्टेन थिंग्स, जैसे कि रिफ्रेश, अगर नहीं आया नोटिफिकेशन आई विल रिफ्रेश। और फिर स्ट्रीमिंग, अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, अगर वो नेटफ्लिक्स नहीं खुला टाइम पर आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड्स, देन यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। आप रिफ्रेश करते हैं, बैक करते हैं, फोर्ड करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं टू सी कि ये किसी तरह से, पहले हम लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर का इंतजार करते थे, अब किसी के पास वो सब नहीं है। लोग इंतजार करते थे कि रेडियो पर एक गाना बजेगा, उसका इंतजार अब नहीं होता है। यू नो, इससे पहले वो डायल अप वाला इंटरनेट आता था ना, आपको डायल इन करना पड़ता था शुरू शुरू में। उन सभी चीजों के लिए
0: पेशेंस नहीं है। आई थिंक आई पर्सनली वुड से यस, इवन आई हैव बिकम वेरी इंपेशेंट। जहाँ पे शायद पहले थोड़ा पेशेंस चीजों को लेकर, लोगों को लेकर भी होता था, अब वो भी नहीं रहा।
1: तो हमें सुपरसोनिक स्पीड पर सब कुछ जिंदगी में क्यों चाहिए?
0: यस, तो आप भी बता सकते हैं आपकी राय क्या है, कि आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं हमारे पास ऑन 0800 004866 पर, और हमें बता सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक इज द कोर्स, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन जिसकी वजह से हम impatient होते जा रहे हैं।
1: हाँ, course, I mean course तो I don't know what the course
0: है। नहीं, आपको evaluate कर करना। हाँ,
1: क्या patience जो है has become boring?
0: हाँ।
1: Think about it, कभी आपने सोचा है? अब सब्र जो है ये बोरियत हो गई है हम लोगों के लिए।
0: Possibly। तो चलिए, टॉपिक हमने आपको बता दिया, इतने डिटेल में हमने डिस्कस की हुई है। एक गाना प्ले करते हैं, उसके बाद विल टेक यू ऑन एयर। अगर आप हमारे पास कॉल करना चाहें, रिमेंबर द नंबर टू कॉल इज 0800 004866।
2: मैं लाऊं अपना ए गेम. Brought to you by In

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: तो हमने आज का टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया व्हाट्स योर टेक के लिए, और हमने कहा कि अगर आप कॉल कर अपने व्यूज शेयर करना चाहें 0800 हम 0800 4866 पर आप जरूर कॉल कर सकते हैं. बट वी हैव आल्सो रिसीव्ड अ मैसेज.
3: या लगता है मंडे के लिए बहुत भारी हो गया टॉपिक.
2: नहीं भारी नहीं. सी दिस इज व्हाट आई आल्सो फील. आई फील लाइक देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके बारे में हमें बातें करनी. बिकॉज जब कभी कभी हम थोड़ा फन टॉपिक लेकर आते हैं, हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि टॉक अबाउट समथिंग सेंसिबल, कुछ अच्छे टॉपिक्स. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ऐसे मैसेजेस आते हैं. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट सर्टन थिंग्स जो इम्पोर्टेंट है. जैसे ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बट कहीं ना कहीं आप भी ये एडवाइस करते हैं कि शायद मॉर्निंग शो के लिए सूट नहीं करता, लिसनर्स उतना रिलेट नहीं करेंगे. सो वी रिस्ट्रेन फ्रॉम शेयरिंग सच टॉपिक्स.
3: रिलेट हर कोई कर रहा है.
2: हाँ,
3: अभी जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस टॉपिक से रिलेट कर रहा होगा.
2: एंड ऑल ऑफ अस हु इज लिसनिंग, वो खुद ये चीज करते भी होंगे.
3: हाँ, तो द सैड पार्ट इज की यू नो वी गो बैक. जब कोई भी आइडिया दिमाग में आता है, वी गो बैक. जैसे कि आई वेंट बैक एंड आई हैड टू लुक फॉर नंबर्स कि क्या इस पर कोई रिसर्च किया गया है, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. और जब सारी चीजें हम तैयार करके लाते हैं, आप कहते हैं कि कुछ अच्छा टॉपिक लेकर आओ. जब अच्छा टॉपिक लेकर आते हैं और आप एकदम शांत हो जाते हैं, तो इट ऑल गोज टू अ वेस्ट.
2: या एंड देन वी हैव टू गो बैक टू द सेम टॉपिक, हस्बैंड वाइफ, ये वो. आई मीन वी आर नॉट सेइंग कि दोस टॉपिक्स आर बैड, फॉर फन इट्स ओके, बट देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स एज वेल जिसके बारे में हम खुद बातें करना चाहेंगे. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसे टॉपिक्स पर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो बेसिक चीज जो वी कैन मेक आउट इज बेसिकली कि यू डोंट लाइक सच टॉपिक्स. सो वी हैव टू मूव.
3: समझना तो वही पड़ेगा ना.
2: Exactly.
3: अगर आप नहीं वो करें.
2: हाँ.
3: खैर छोड़ो उसको. ऑटोमेशन कैन अफेक्ट ह्यूमन पेशेंस, पर्टिकुलरली व्हेन पीपल बिकम अकस्टम्ड टू थिंग्स हैपनिंग इंस्टेंटली. I can see this for myself. ये किसी ने कहा है.
2: Very interesting. इन्होंने एक और एक मैसेज है, इन्होंने कहा है कि हाय, I feel like it's because we expect instant results. If something takes time, it can feel like we're falling behind. And also the every growing technology has trained us to wait. We can get an answer, order something or contact someone within seconds. ये उन्होंने कहा है. अच्छा, एक कॉल आ रहे हैं, तो let's see. Good morning.
4: Good morning, Vijay जी. Good morning, कैसे हो?
3: Good sir. आप कैसे हो?
4: Vijay जी, good morning.
2: Good morning जी, good morning.
4: मैंने सोचा चलो आप बात कर लेंगे, बहुत दिन हो गए आपसे बात करते हैं. पेशेंट के बारे में
2: जी.
4: ओके, पेशेंट जो एक होती है, ये तो भगवान का गिफ्ट होती है. विच एवरीवन, आई मीन सबको मिलता नहीं मिलता उन्हें मालूम, ये तो गॉड गिफ्ट होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू हैव पेशेंस.
3: बिल्कुल.
2: आपको क्या लगता है कि आजकल लोग इम्पेशेंट क्यों होते जा रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन वी आर आस्किंग.
4: अच्छा, मैं आपके छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. यही है, मैं यही हूँ ऑकलैंड में. अच्छा, आपको सपोज बिकॉज आई रन एन हॉस्पिटल, आई डोंट वांट टू ज्यादा
3: नहीं आप बोलो
4: हॉस्पिटैलिटी में चला था. हॉस्पिटैलिटी में रन करता हूँ
2: जी.
4: मेरे पास दो तीन चार किस्म के लोग है होते. ओके, द पेशेंट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर यू नो. If you tell someone, if you hire someone, if you tell someone to get a, example, get a iPhone from here, from the storeroom. Wo laega Samsung.
3: Okay.
2: Achha.
4: Oh, achha. Aapne bola iPhone. Achha, main Samsung laya. Okay. So, there you start reacting, you know. Aap kya karte, okay. Aapke dimaag mein ye iPhone hai. Main bolta hoon, dusre bolte, hey, chhod, mazaak le aap 2 minute mein. ऐसा होता है क्या, ऐसा करते क्या. दिस इज डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. वो बोलते कि मैं ये काम बोला तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे वहीं लगाया था मैं अभी आके 2 मिनट जाके लाता. वो बंदा जाता है, ढूंढ के आता है, बहुत देर के बाद आता है, बोलता है मैं लाया ये दिस प्रोडक्ट. देन दूसरा बंदे जो उसका पेशेंट नहीं, वो रिएक्ट करता है. ओ सारे रिएक्ट, ओ यू डोंट नो एवरीथिंग, वी आर देयर, आई टोल्ड यू देयर लेफ्ट साइड एम कॉर्नर इज देयर. Then mere hisab se my what I do is okay, you bought iPhone, go get a Samsung.
3: Okay, thank you sir.
4: Aap थैंक यू
2: थैंक यू जी, थैंक यू कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. सो डिफरेंट लोगों का डिफरेंट लेवल ऑफ पेशेंस होता है और डिफरेंट तरीके से लोग डील भी करते हैं ना.
3: सब्र हर किसी का जो है ये अलग होता है,
2: सेम नहीं होता है.
3: टॉलरेंस लेवल भी हर किसी का अलग होता है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जितना भी हो अगर इनफ था आप में तो या हम सभी में इनफ होता है एंड वक्त के साथ वो कम हो रहा है विद द चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस. हां, ये इन सभी चीजों की वजह से. एंड द थिंग इज, सोचो आप थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में कि क्या आर वी गिविंग इनटू ऑल दिस चेंजेस दैट आर हैपनिंग अराउंड अस, या फिर यू आर टेकिंग अ स्टैंड कि आई विल टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स. ये मेरे लिए अच्छा नहीं है,
2: राइट,
3: या मेरी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है,
2: खुद के लिए डेफिनेटली.
3: बच्चों को भी आप नोटिस करो, अगर उनको कोई चीज चाहिए तो इमीडिएटली चाहिए होता है अभी के टाइम पे ना. उनको अगर एक पर्टिकुलर शू चाहिए तो मम्मी पापा कैन यू प्लीज गेट इट टुडे, कैन यू गेट इट नाउ, कैन आई वॉच यूट्यूब नाउ, समथिंग लाइक दैट ना. वो सारी चीजें, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि उनके आसपास क्या कुछ हो रहा है.
2: एंड हाउ वी रिएक्ट वो भी उनके ऊपर पड़ता है ना, कि वी आर बीइंग इंपेशेंट, तो वो चीज वो भी तो सीखेंगे. सो राइट नाउ व्हाट वी गोना डू इज गिव यू सम टाइम. आप अगर चाहे तो टॉपिक ऑफ द डे आज का हमारा जो है अपना व्यू टेक्स्ट कर सकते हैं
3: 55. एक कॉल आया वो हमने लिया,
2: कुछ और कॉल आ रहे बट वी अनफॉर्चूनेटली अब टाइम नहीं है ना,
3: और टाइम खत्म हो चुका है हमारे पास. आप 5599 पर टेक्स्ट कर दे तो आपके व्यूज हम जरूर शेयर कर लेंगे.
0: Are you ready? Chatbusters.
1: थोड़ा माहौल बना दे.
0: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate. Up to 60% off on now.

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Traffic.
3: Switch to AMI car insurance.
4: A high of 16 today, staying cloudy one most of the day. Into the city, starting to ease. Southern motorway 36 minutes, Manukau to town. Slow from Otahuhu, heavy a lot of the way in though. Northwestern 27 minutes in from Massey. Slow from Pātiki, heavy spots until Point Chev, easing at Grayland. Northern 28 Constellation to town. Slow at Silverdale and Constellation to the bridge for your heavy spots. Southwestern slow northbound through Whitty.
3: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
5: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Huge side-by-side stainless steel fridge freezer $699. 10kg 9-star energy heat pump dryer $799. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
6: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800 862 342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
7: Discover more with Air New Zealand flights on sale now. Wherever you're going, enjoy a more Kiwi way to get there. Sales periods vary by destination. Travel periods and conditions apply. Book now at Air New Zealand or your preferred travel agent.
8: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
0: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800 722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
9: अभी तो 10 मिनट रह गए हैं 9 बजने में और 9 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। डोंट फॉरगेट इसी फ्राइडे को वैदिक सेंटर पापाटोई टोई में हम कीर्तन संग्रह के लिए रिकॉर्डिंग जो है ये की जाएगी। और ओवर द वीकेंड भी बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, मैसेजेस जो है ये किए, रियली इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग। तो अब जो फाइनल तैयारियाँ हैं ये चल रही हैं एंड वी होप टू सी यू ऑल इसी फ्राइडे को। आपके लिए एंट्री फ्री है, यू कैन कम डाउन एंड एंजॉय द नाइट।
10: यस, रिमेंबर दिस फ्राइडे ये सब हो रहा है तो इसका हिस्सा आप श्योरली बन सकते हैं 32 ग्लासगो पापाटोई पहुंचकर। और जैसे कि हमने आपको याद दिलाया कि यहाँ पर आने के लिए आपको कोई भी टिकट्स के लिए पैसे नहीं भरने, टिकट्स नहीं लेने, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री। और ऑफ कोर्स जब आप यहाँ पर आते हैं तो रिफ्रेशमेंट्स वगैरह जो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा ऑन साइट, ओनली दैट यू हैव टू परचेज। अदरवाइज कम डाउन और एक्सपीरियंस कीजिए कि कैसे एक कीर्तन रिकॉर्डिंग होती है। और जो कलाकार हैं इनको आप यहाँ पर आकर अपना इनकरेजमेंट दे सकते हैं, सपोर्ट शो कर सकते हैं। और अगर आपको भी फिजी कीर्तन का शौक है, आप पसंद करते हैं इसे सुनना, तो आप आराम से बैठकर इसका मजा भी ले सकते हैं ना।
9: बिल्कुल ले सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। कम एज फ्रेंड्स, कम एज फैमिली, हमारी टीम के भी कई साथी वहाँ पर रहेंगे जहाँ पर उनसे आप मुलाकात जो है ये कर सकेंगे। सरप्राइजेज भी होंगे कुछ आपके लिए जिन पर अभी काम चल रहा है।
10: फिलहाल चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए, अभी 8 मिनट बाकी इस समय हमारे स्टूडियोज में, वैसे 9 बजने में, ठीक 9 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के साथ आपके लिए अगले घंटे क्या बकते हो ये हम लेकर आएंगे। क्या बकते हो मैं आज की क्या स्टोरी है कि आपके साथ हम शेयर करने के लिए एकदम रेडी है। होपफुली यू आर रेडी टू हियर अस आउट एज वेल। बट राइट नाउ आप अगर हमें सुन रहे हैं 104.2 FM पर या फिर रोवा ऐप के जरिए, तो अपने अपने मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं 5599 पर, एंड वी वुड लव टू डू अ क्विक शाउट आउट फॉर यू ऑल।

0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
1: Accurate traffic.
2: Leap Motor electric vehicles are unignorable.
3: Staying a cloudy one all day, westerlies and a high of 17. Now into the city, Southern Motorway 32 minutes, Manukau to town. We're slow from Wātahu, heavy spots Mount Wellington to Green Lane. Southwestern slow northbound at Wiri. Northwestern 23 minutes in from Massey, just slow Pātiki to St. Luke's. Northern 24 in from Constellation, slow at Silverdale and Constellation to the bridge. It is easing at times.
2: Buy a Leap Motor this month, pay nothing until 2027 with $2,000 off your finance. Terms apply.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
5: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
6: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
7: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
8: Know someone who may need support to enrol or vote? Ask them what would make it easier. It might be helping to find the nearest voting place, providing a lift, or supporting with the paperwork. Find more accessible information at vote.nz. Choose from audio, braille, easy read, large print, and New Zealand Sign Language. Or call 0800 36 7656. Brought to you by the Electoral Commission.
9: Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800-00010.
10: Good morning, I'm Amit Nobushre.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Two 19-year-olds have been charged after a child was found with a severe injury in Southland. Emergency services were called to an Ōtautou home last night. The man and woman are accused of wounding with intent to cause grievous bodily harm. The child is in a critical condition in hospital. A search for a plane that went missing nearly 5 decades ago resumes at Westland's Lake Moldaki. Police are leading the operation to find the Piper Cherokee that disappeared in 1978 with 7 people on board. Acting Inspector Mark Kirkwood says they received a tip.
12: He provided a sonar image of an item of interest, and I looked at the image and I believed it needed further investigation.
11: A small plump forest dweller has taken out the annual Bird of the Year competition. The Kaururi Chatham Island Black Robin received the most votes, with the Kakapo coming in at second. Spokesperson Rebecca Hatch says the competition carries a serious message.
13: One thing we've heard again and again this year from voters was, I didn't realise how many of our birds are in trouble. The reality is that 4 out of 5 of our native New Zealand manu are in some or serious trouble.
11: In sport and to rugby league, with Machinery House and a league of their own, a controversial end to the NRL season for the Warriors on Sky Sport.
14: Well, what happens here? Is there potentially a penalty?
15: Tyson was holding his ground, it's a collision.
11: The Warriors weren't awarded a late penalty as the Knights won 12-10 at Eden Park. Coach Andrew Webster thought the referees got it wrong.
16: He's going across like a pretending to try and catch the ball, which they told us you can't do.
11: Newcastle will now face Penrith for a place in the grand final.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, hamari koi branch nahi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: तो आज के मौसम के लिए कहा गया ज्यादातर बादल छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत बारिश जो लेट इन द डे होने की संभावना है। सनसेट तो 6:17 पीएम पर होगा। टेम्परेचर फिलहाल 14.1 डिग्रीज है, ओवरनाइट 12 डिग्रीज एंड हाई ऑफ 16 डिग्रीज एक्सपेक्टेड है। बाद में चलकर
0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
1: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरी विन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग मोनाको। स्प्रिंग सेल ऑन नाउ, ब्यूटीफुल फर्नीचर विद 60 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री। These apply only at Harrington Living Monaco.
9: What's going on? Kya bakte ho?
18: Are kehna kya chahte ho?
10: My goodness, I came across this story like I think last week sometimes, और मैंने ये save किया हुआ था कि अच्छा इस segment के लिए तो एकदम apt है ये share करने के लिए। और आज की ये जो story है, ये क्या बकते हो story? इधर दरअसल शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक video है। और ये वीडियो वट एवर द इंफॉर्मेशन आई कैन गेट इज इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड लास्ट ईयर इन नवंबर, और उसके बाद चलकर ये वीडियो जो है अभी फिर वापस से वायरल हो रहा है। दैट्स हाउ आई केम अक्रॉस टू इट। तो इस वीडियो में दिखाया गया है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन बी आइडेंटिफाइड एज म्यूनसिपल काउंसलर्स, जो हाथ में पानी जो है ये लिए, अपनी हथेली में पानी लिए, ये प्रण ले रहे हैं, ओस ले रहे हैं। और इस वीडियो में एलिजिडली वो कह रहे हैं कि उन्हें जो भी पैसे मिलेंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वो इक्वली उसे डिवाइड करेंगे अमंगस्ट 60 काउंसलर्स, एंड दैट द ग्रुप विल सपोर्ट मेंबर्स हु गॉट इनटू ट्रबल फॉर इट। तो उन्हें कहीं ना कहीं वी कैन से कि इट्स लाइक चोरी, ब्राइबरी, जालसाजी करके जो पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे अपने 60 काउंसलर्स के बीच इक्वली डिवाइड करेंगे, और अगर कोई भी पकड़ा गया तो वो उनके सपोर्ट में आएंगे। इस बात का लेकर वो ओथ ले रहे हैं, वो प्रण ले रहे हैं। Do you get the point what I'm saying?
19: Yeah, yeah, I get the point.
10: So, शाहजहांपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन्होंने आफ्टर दिस वीडियो वेंट वायरल एक इंक्वायरी बिठाई, और म्यूनसिपल कमिश्नर सौम्या गुरुरानी इनको कहा गया कि said the footage जो है it had been recorded in November 2025, जबकि एक डिफरेंट कमिश्नर जो है ये इंचार्ज में थे उस दौरान। However, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि इस वीडियो की जो ऑथेंटिसिटी है, आइडेंटिटीज है जो इसमें दिखाया गया है, इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकती कि एग्जैक्टली ये शख्स कौन है। बट इट इज़ क्वाइट रेयर टू सी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओपनली ओथ लेते हैं कि अगर उनको ब्राइबरी मिली तो वो लेंगे, इक्वली उसका हिस्सा करेंगे, और उसके साथ साथ वो दरअसल कोई भी अगर प्रॉब्लम में गया ऐसा करते हुए तो उसको सपोर्ट करेंगे।
19: My God, that's next level.
10: It is next level. तो ये थी आज की हमारी क्या बकते हो स्टोरी जो आपके लिए लेकर आ रहे थे। If you want to fact check, तो आप ये वीडियो इनफैक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसे ढूंढ कर देख भी सकते हैं, फैक्ट चेक भी कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव डन दैट एंड इट इज अ ट्रू स्टोरी जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया था। दे हैड स्पोकन अबाउट दिस वीडियो। सो या इंटरेस्टिंग ना, वेरी इंटरेस्टिंग। या 5 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर इस समय हमारी स्टूडियोज में। दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आएंगे व्हाट्स अप ऑकलैंड, यानी हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में कहां पर क्या कुछ हो रहा है, इस पर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे।
20: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है।

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: तो सुपर सिटी ऑकलैंड में हमारी कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें हो रही है जिसका हिस्सा आप श्योरली बन सकते हैं। सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे, ये वेद प्रचार वीक जो है मंडे 28 सितंबर से शुरू होने वाला है और इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। याद दिलाए आपको, अगले सोमवार से लेकर संडे 4 अक्टूबर तक 32 ग्लेसगो पापाटोटो यहाँ पर 6:20 PM से आप वेद प्रचार वीक में पार्ट ले सकते हैं। और इस साल का जो हाईलाइट है इस प्रोग्राम का, यहाँ पर 30th anniversary जो है ये सेलिब्रेट की जाएगी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड। और इसके अलावा आपको याद दिला रहे हैं कि होने जा रहा है श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन, यहाँ पर श्री राम कथा और पूज्य राजन जी जो है यहाँ पर श्री राम कथा आपके लिए लेकर आएंगे। वेंसडे 30th सितंबर से शुरू हो गई, यानी नेक्स्ट वीक वेंसडे से लेकर फॉलोइंग वीक ट्यूजडे 6 अक्टूबर तक हर रात 7 PM to 9 PM ये होने वाला है। अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो आप इसके लिए श्री राम मंदिर हैंडरसन या 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में जो है इन्हें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं और आप चाहते हैं कि इनकी जानकारियां हम अन्य लोगों तक पहुंचाएं, तो याद रहे आप मैसेजेस हमारे पास ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Hey, देखो आ गए।
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
2: अभी 18 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर. वीकेंड जो है गोलमाल फैंस के लिए अच्छा रहा.
3: क्यों?
2: क्योंकि रोहित शेट्टी ने अनाउंस कर दिया है द रिलीज डेट.
3: ओह कौन सा?
2: नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट गोलमाल 5.
3: हाँ.
2: गोलमाल 5 ये रिलीज होने जा रहा है 8th of January को 2027.
3: अगले साल. ओके. हाँ.
2: और गोलमाल इंटरेस्टिंगली गोलमाल रिटेन्स 2008, गोलमाल 3 2010, गोलमाल अगेन 2017, ये सभी दिवाली रिलीजेस थी.
3: हाँ.
2: इसीलिए गोलमाल 5 मच लाइक गोलमाल 2006 ये किसी मेजर हॉलीडे फेस्टिवल के एडवांटेज के साथ नहीं आ रही है.
3: राइट.
2: लेकिन ये पता चला है कि काफी सोच विचार कर ये डेट जो है ये चूज किया गया है. रोहित शेट्टी जो है काफी समय से ये सोच रहे थे अबाउट द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग गोलमाल 5 इन जनवरी. और उन्हें एहसास हुआ कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वुड हैव कंज्यूम्ड यू नो लाइक किंग, एवेंजर्स, डूम्सडे, ये सारी फिल्में दिसंबर में, तो जनवरी में वो तैयार होंगे. दूसरी चीज है रोहित शेट्टी ने काफी अच्छा बिजनेस जो है ये गुजरात में किया है. द स्टेट विल हैव अ ह्यूज हॉलीडे मकर संक्रांति के लिए ऑन थर्सडे 14 जनवरी. जनवरी 15 विल ऑल्सो बी हॉलीडे ऑफ सोर्ट्स. इसीलिए गोलमाल 5 जो है इज एक्सपेक्टेड टू टेक अ ह्यूज बूस्ट इन द सेकेंड वीक थैंक्स टू गुजरात.
3: ओके दैट्स इंटरेस्टिंग. तो प्लानिंग कर रही है, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे रिलीज कर रहे हैं इस डेट पर. प्लानिंग तो की है, रिसर्च तो किया है. और आई थिंक नो मैटर वट एवर द केस इज, जब भी फिल्म रिलीज हो ऐसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. अनलेस एंड अनटिल पीपल आर अ फैन ऑफ योर फिल्म मेकिंग, पीपल आर अ फैन ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेंचाइज, you know, people will go and watch.
2: Yeah, definitely. Dusri taraf kitni planning karte hai? Abhi dekho iPhone 18 Pro aur Pro Max jo hai, ye India ke milan mein United Arab Emirates mein saste hain.
3: Maine bhi suna ye.
2: Ha, aur Gulf News ne ye prices compare kiya hai mere khayal se. Aur kuch buyers ke liye ye difference is good enough to even fly to Dubai
3: and buy it.
2: हाँ,
3: इनफैक्ट मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें दो लड़कों ने क्या किया, उन्होंने 20 आईफोन प्रो जो ये लिए.
2: इतने पैसे कहाँ से आए उनके पास?
3: आई थिंक 1 करोड़ समथिंग इन्वेस्टमेंट रहा उनका, बट वो अलग अलग लोगों का, लाइक वो दुबई में ही थे.
2: अच्छा.
3: तो बहुत से लोगों के लिए शायद उन्होंने ऑर्डर्स भी प्लेस किए, कुछ कुछ 3-4 अलग जगह से लिए, बाकी ऑर्डर्स पर था वो, जैसे आएगा तो इनको मिलेगा ऐसे करके. Because they find it's cheaper in Dubai than it is in India.
2: But yeah, I can't understand. Abhi ki ye, you know, every time a new, I don't know kya bolte hain,
3: new iPhone series,
2: naya,
3: yeah.
2: Haan, naya vision aata hai. Abhi to basically dekho Samsung iPhone.
3: Haan.
2: Ye dono ek alag race mein chal rahe hain. Udhar baaki ke jo phones hain, unka shayad ek alag competition ho.
3: Yeah.
2: Jahan tak meri understanding hai ki iPhone aur Samsung
3: ज़्यादा कम्पीट करते हैं. ट्रू.
2: तो जब भी हर ऑलमोस्ट एवरी ईयर शायद कुछ ना कुछ नया आता है इसका ना.
3: आई हैव नो आइडिया, आई डोंट फॉलो, आई डोंट नो. मैं एक्चुअली पूछना चाहूंगी सभी से, क्या आपके लिए कोई डिफरेंस करता है कि लाइक
2: मैं ये जानना चाहता हूँ आपके पास कौन सा फोन है भाई? मेरे पास है आईफोन 14 प्रो मैक्स.
3: राइट.
2: या आई एम प्रो एंड आई यूज इट मैक्सिमम टाइम्स.
3: हाँ, तो आपके पास 18 iPhone 14 Pro Max है.
2: हाँ, so I'm basically 4 कदम पीछे. अगर
3: and don't judge me for

0: I'm not a very क्या बोलते हैं
1: पता नहीं क्या बोलते
0: like I'm not someone who is on the phone for technical reasons कि मेरे को you know ये features चाहिए ये चीजें इसमें होनी चाहिए इतना data होना चाहिए इतनी
1: basically video call and
0: that's the only thing I use it for
1: and watching
0: to scroll to watch something and to communicate with my loved ones जो मेरे से दूर हैं whatever बट वही दो पर्पस है मेरे लिए तो मेरे लिए से जरूरी नहीं था बट आई वॉज गिफ्टेड दिस फोन बाय समवन फोर्सफुली सो आई टुक इट वो एक चीज है
1: चलो आप बताओ आपके पास इनके पास है सैमसंग S26
0: अल्ट्रा
1: हाँ. मेरे पास है आईफोन 14
0: प्रो मैक्स राइट
1: आपके पास क्या है तुम्हारे पास क्या है साउंड लाइक अ बॉलीवुड फिल्म डायलॉग वो कौन सी फिल्म थी
0: दीवार
1: की तरह मेरे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स है उसके पास सैमसंग S26 अल्ट्रा है तुम्हारे पास क्या है
0: हाँ तो वही बताना है
1: हिम्मत है तो बताओ
0: वही बताना है आपको आप अच्छा इन्होंने लिखा आईफोन XS मैक्स मुझे नहीं पता
1: मुझे तो पता ही नहीं या ऐसा कोई फोन आया है
0: मैं तो I don't even use iPhone so I have no idea about iPhone much but
1: अच्छा किसी ने बताया है उनके पास iPhone XS Max
0: हाँ
1: यार नाम भी इतना difficult क्यों रखते
0: हैं जरा टंग ट्विस्टर टाइप लग रहा है मुझे तो ये तो 2018 में आया था ये 2018 का रिलीज है या iPhone XS Max
1: तो आपके पास कौन सा फोन है 5599 पर हमें टेक्स्ट करें और बताएं लेट्स सी अभी लेटेस्ट फोन्स में अगर देखें सैमसंग में आप सबसे आगे चल रही हैं
0: राइट
1: कोई आपसे आगे निकल पाता है या नहीं विच आई डाउट
0: अरे होगा ऐसा क्यों डाउट कर रहे हैं अरे होगा डेफिनेटली कोई ना कोई
1: उसके बाद कुछ आया अभी
0: मुझे नहीं पता आई डोंट नो
1: तो आईफोन में कौन सबसे आगे और कौन सबसे पीछे वो भी पता चलेगा
0: आईफोन में सबसे आगे ये जिन्होंने अभी मैसेज किया इन्होंने कहा कि इनके पास करंटली आईफोन 14 प्रो है 18 प्रो ऑन द वे है तो 18 प्रो इनके हाथ लगने वाला है वेरी सून राइट तो
1: आपने भी ऑर्डर दुबई तो नहीं भेजा था
0: बता सकते 5599 पे टेक्स्ट करते डोंट हैव टू रिवील योर नेम जस्ट लेट अस नो कि आपके पास किस मॉडल का फोन है आज आईफोन और सैमसंग की बातें हम कर रहे हैं और इसीलिए हम पूछ रहे हैं ना देखते हैं कि सबसे आगे कौन चल रहा है किसके पास है आईफोन 18 आईफोन 17 प्रो मैक्स ऑरेंज कलर वाला इनके पास है
1: किन के पास है
0: अरे किसी ने मैसेज किया है नाम नहीं पूछ रहे हम ना
1: ओ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो राइट 17 प्रो मैक्स ऑरेंज कलर
0: हाँ जो ऑरेंज कलर में आया था ना
1: नारंगी
0: या लास्ट आईफोन 17 आपने नहीं देखा था एक ही कलर में ऑरेंज
1: नहीं मैंने नहीं देखा
0: आईफोन हाँ वो ऑरेंज वाला बहुत पॉपुलर हो रहा था तो वो वाला उनके पास राइट अगला गाना है आपके लिए हम प्ले करने जा रहे हैं तब तक आप हमारे पास अपने मैसेजेस भेज सकते हैं ऑन 5599
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
3: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ
4: मैं लाऊं अपना ए गेम
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: الشرم. और फोन्स के बारे में बातें हम कर रहे थे, वैसे समय देखे 24-26 मिनट रह गए हैं 10 बजे में। द लास्ट वन ऑरेंज वाले के बारे में बात हमने बातें की थी, उसके बाद किसी ने बताया आई हैव आईफोन 12 प्रो मैक्स, ओडा 18 प्रो मैक्स।
1: अच्छा, ऑर्डर कर दिया इन्होंने मतलब अपना।
0: हाँ,
1: राइट। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि आई हैव 16 प्रो, iPhone 16 Pro है इनके पास।
0: Okay, I got iPhone 16 which I bought last year after my iPhone 6 died.
1: Oh, nice, yeah.
0: Direct 10 कदम ऊपर गए।
1: हाँ, 10 सालों का नहीं, सॉरी, 10 सीरीज ऊपर चले गए ये। iPhone 17 Pro ब्लैक कलर है इनके पास।
0: Okay, I have iPhone 13 Pro Max. My wife owns iPhone 13. Previously, I owned iPhone 6 Plus until 13 Pro Max. Abhishek,
1: very interesting.
0: Wellington से।
1: Yeah, the fact that कि मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल लोग of course अलग अलग चीजों के लिए करते हैं, हर किसी का purpose different है। तो उसके हिसाब से different mobile phone with certain amount of storage and the features, ये सारी चीजें matter करती हैं। बट इफ़ यू कम टू द पॉइंट जहाँ पे अगर मोबाइल फ़ोन को सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन के लिए अगर यूज़ किया जाए तो शायद ये सारे फ़ोन्स का ज़रूरत ही ना पड़े ना, वो नोकिया ही बेहतर होगा। मुझे किसी ने एक्चुअली सजेस्ट किया था यू शुड गो बैक टू दैट बटन नोकिया फ़ोन। आई थिंक नोकिया वॉज अ वेरी गुड फ़ोन।
0: हाँ, नोकिया था, एक और ब्रांड था उस टाइम पर काफ़ी, Alcatel।
1: हाँ, Alcatel,
0: Alcatel था, और Motorola।
1: Motorola, I remember Motorola, yeah। मेरे पास Nokia था जो बटन वाला, और दूसरा 3315, मुझे वो नहीं याद है, सिर्फ इतना पता है नोकिया था क्योंकि बड़ा सा नोकिया ऊपर से लिखा होता था एंड ग्रे कलर का था वो,
0: उसमें वो सांप वाला खेलते थे।
1: हाँ, वो गेम। एंड आई हैड मोटोरोला एज वेल, वो फ्लिप वाला मोटोरोला मेरे पास था, बट वो मैंने बहुत बाद में सेकंड हैंड खरीदा था, बट वो बहुत बाद में खरीदा।
0: उतना डिटेल देने की जरूरत नहीं है।
1: अरे, मैं सिर्फ बता रही हूँ, मेरी आदत है ना, दिस इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, हाउ मेनी ओल्ड मोबाइल फोन्स डू यू गाइस रिमेम्बर दैट यू हैड?
0: मैंने तो बताया नोकिया, Alcatel, मोटोरोला, तीन मैंने बताया,
1: तीन बताया आपने, राइट। आप लोगों को कितना याद है कौन कौन से वो मोबाइल फोन्स थे? व्हाट डू यू थिंक वाज द बेस्ट वन एट दैट टाइम जो आपके पास था?
0: सोनी एरिक्सन भी था।
1: नहीं, मुझे पर्सनली ब्लैकबेरी एक याद है आपको, बहुत पॉपुलर हुआ था, बटन वाला वो भी था।
0: मेरे पास अभी भी कहीं पड़ा हुआ है
1: ब्लैकबेरी। हाँ, मुझे ब्लैकबेरी भी याद है, आई नेवर ओन्ड इट, बट मुझे पर्सनली फील होता है नोकिया वाज द बेस्ट। व्हाट अबाउट यू गाइस, आपके हिसाब से हाउ मेनी ओल्ड ब्रांड्स ऑफ मोबाइल फोन्स डू यू रिमेम्बर जो आप जब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप इट वाज देयर, एंड आपके हिसाब से बेस्ट वाला कौन सा था? हाँ, वो आप हमें आप बताइए, ठीक है?
0: तो मैंने चार बताए।
1: हाँ, तीन बताया आपने,
0: नोकिया,
1: सोनी एरिक्सन बोला था।
0: हाँ, मोटोरोला, Alcatel, सोनी एरिक्सन।
1: हाँ, मैंने तीन बताए, नोकिया, मोटोरोला एंड ब्लैकबेरी।
0: ओके,
1: ठीक है, तो आप भी बता सकते हैं हाउ मेनी डू यू नो एंड अकॉर्डिंग टू यू द बेस्ट वन कौन सा था।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with electoral commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enroll, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
2: Home loan ke saath thoda cash bhi pana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the squirrel effect. squirrel.co.nz.
3: This is your business. This is your business supercharged with the help of Xero Accounting Software. This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom. Supercharge your business today with the help of Xero.
4: It's Briscoe's birthday, and we're celebrating with a huge $25,000 birthday cash giveaway. Take the pressure off your mortgage or treat yourself to something special. Briscoe's Club members only. See online for T's and C's.
5: It's double points week at Woolworths. Simply hit Boost in the Everyday Rewards app, spend $50 or more in store or online, and scan your Everyday Rewards card and collect double points on every shop. End Sunday. T's, C's and exclusions apply.
6: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath, and you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
7: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है, अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
8: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
9: और मैं नहीं करता।
7: दायरा नाउ शोइंग इन सिनेमास।
9: ओपन शट केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
10: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
7: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग टीबीसी।
11: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
16: What's going on?
17: 19 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में। आज के डेली राउंडअप में नेशनल पार्टी अगर वापस सरकार में आती है तो वो चाहेगी कि एली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स में स्क्रीन टाइम जो है इसे लिमिट कर दिया जाए इस 1-3 में। और पार्टी का कहना है कि वो चाहती है अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन बुक्स, हैंड राइटिंग, कॉन्वर्सेशंस, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ और डायरेक्ट इंटरेक्शन टीचर्स और बच्चों के बीच। पार्टी की जो एजुकेशन प्रवक्ता हैं एरिका स्टैनफोर्ड ने बताया कि न्यूजीलैंड वाज नॉट अलोन इन रिकॉन्सिडरिंग हाउ मच टाइम चिल्ड्रन स्पेंड लर्निंग थ्रू स्क्रीन्स, विद इंटरनेशनल डायरेक्शन जो है ये दिखाता है खासतौर पर यंग बच्चों के लिए डिजिटल डिड नॉट ऑटोमेटिकली मीन बेटर। और काफ़ी एविडेंस भी सामने आ रहे हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड राइटिंग और लर्निंग बाय हैंड।
16: और इसके अलावा मेरे पास जो स्टोरी है, इट इज़ अबाउट दिस न्यू इंटरनेशनल एजुकेशन रिपोर्ट जो सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स अचीवमेंट ये दुनिया भर में धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है. न्यूजीलैंड इस मिलान में वैसे पहले से थोड़ा अच्छा कर रहे हैं इन कंपेरिजन विद the other countries who are part of this particular education report, लेकिन हमारे results अभी भी below the levels seen 15 years ago इससे कम है. Experts का कहना है कि they are actually trying to figure out कि what has caused this change. Is it because the way young people use technology, जिसमें social media constant scrolling भी शामिल है, जिसकी वजह से their ability to concentrate and learn ये काफ़ी effect होता है. And this latest data tells us about New Zealand is कि in science New Zealand ने 509 points score किए. These 509 points is actually higher than the average score across the countries जिन्होंने इस particular survey में part लिया या इस particular organization का हिस्सा है, which is Organization of Economic Cooperation and Development, जहाँ पर 38 countries एक साथ मिलकर compare करती है education, economy, jobs, health and living standards. तो New Zealand भी इस organization का हिस्सा है और इसी organization के जो average points के हिसाब से New Zealand ने science में 509 points score किए, average है 482 points. But there are some concerns also क्योंकि 19% of Kiwi students जो है वो struggle कर रहे हैं to reach the basic level, which has been compared with 13% जो 2019 में आया था. और the number of students achieving the highest level ये भी अब गिर चुका है, 18% से 13% हो चुका है. So people who are struggling उसका percentage बढ़ चुका है, people who are achieving well or highest levels उसका percentage कम हो चुका है. In maths, New Zealand has scored 480 points compared to the average of OECD, which is 463 points. लेकिन 29% of students जो है, they were well below the basic level. Almost double the percentage जो record किया गया था mid-2000s में. और reading के मामले में, New Zealand ने 497 points score किए हैं, which basically अगर हम इसका comparison with the average देखें, is 461 points. So average points से ऊपर ज़रूर है, लेकिन फिर भी New Zealand के खुद के records के हिसाब से कम है. There's also a concern around technology. 38% of Kiwi students जो है ये कहते हैं कि उनके जो classmates हैं वो अक्सर science lessons में digital devices से काफ़ी distract होते हैं, जबकि New Zealand फ़िलहाल अच्छा कर रही है when it comes to the Organization of Economic Cooperation and Development के average points के हिसाब से. Long term picture ये दिखाता है कि keeping New Zealand students focused and improving their learning ये एक बहुत बड़ा challenge है.
17: That's interesting. वैसे Tiamutu रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से धक्का लगने के बाद कल एक व्यक्ति की जान चली गई. सीनियर सर्जन जॉन मैकार्थी ने बताया कि एमरजेंसी सर्विसेज को कल शाम 6:30 बजे के वक्त इसकी जानकारी दी गई और अभी मामले की तहकीकात की जा रही है कि कैसे ये दुर्घटना जो है ये घटी थी.
18: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातें
2: कहते हैं कि संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं।
3: ओह, ओके। संभाल कर रखी हुई चीज
2: और ध्यान से सुनी हुई बातें।
3: इंटरेस्टिंग।
2: इसीलिए जब कोई कुछ बोल रहा हो
3: तो ध्यान से सुनना चाहिए।
2: और आज की दूसरी बात,
3: जी,
2: मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है।
3: ओह, नाइस, अगेन, एक बार फिर से।
2: मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है।
3: Who decides that though? कि कौन सही है? क्योंकि अपने अपने जगह पर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में अपने अपने जगह पर लोग सही होते हैं अपने अपने मामले में।
2: हाँ, आप खुद सोचो, मुझे गलत कहना है अगर तो इतना ख्याल रखो कि आप सही हो।
3: इट्स लाइक दैट थिंग ना, कि किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले ये बात याद रखो कि आपने क्या कभी कोई गलती नहीं की है, वैसे हिसाब से ना। If I'm not mistaken, I mean, to my understanding, मैं समझ रही हूँ। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत, जाने की, जाने का समय हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के साथ के लिए, आपके समय के लिए। हम और आप अब मुलाकात करेंगे एक बार फिर कल ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। टेक केयर।

0: Monster.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू पीपल. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:03 होने वाले हैं. आपका साथ निभाने के लिए मैं कशिका आ चुकी हूँ स्टूडियोज में. 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है बस थोड़ी ही देर बाद. मेरे पास तो ऑफकोर्स खजाना है बहुत सारी चीज़ों का रिमाइंडर के हिसाब से, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर मेरे लिए तो यही है दैट मैं आपसे पूछूँ आपका वीकेंड कैसा गया. अच्छा बता दो. रीज़न बीइंग कि आपको पता ही है कि आपकी सेहत के लिए आपका खुद का समय, आपका अपना स्वयं का समय कितना ज़्यादा महत्व रखता है. और ऐसे में जब महत्व की बात करती हूँ तो मैं बहुत महत्वाकांक्षी हो जाती हूँ, जहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि भाई क्या आप मेरे दोस्त हो ना, तो क्या आपने अपने लिए टाइम निकाला कि नहीं. भाई आप नहीं तो मैं नहीं, है कि नहीं. अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी. तो इसलिए आप मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है. माय टाइम लेकर मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक का शिकार जाती हूँ और 10 से 12 का ये सफ़र आपके लिए अच्छा रहता है. बर्थडे एनिवर्सरी है तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी. बाय द वे आपको बता देती हूँ, आपका बर्थडे आप शेयर कर रहे हैं एक ऐसी हीरोइन के साथ जिनके दो गाने मैं बजाने वाली हूँ. एंड आई होप यू आर एबल टू गेस कि आज किसका बर्थडे है. ओके चलो ये तो हो गई बात, लेकिन थोड़ी देर के बाद लीगल एसोसिएट से हमारा साथ निभाने के लिए राज प्रदीप सिंह जी इस टेलीफोन लाइन पर आ जाएंगे. तो भाई कोई सवाल है तो मुझे जरूर बताइए.
2: बचाओ क्या

हम कीर्तन संग्रह 25 तारीख को इसी फ्राइडे के दिन वैदिक सेंटर में रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, और कलाकार जो हैं रिकॉर्ड किए जा रहे वो रोवा ऐप पे आप हम फीजी कीर्तन संग्रह पर सुन पाएंगे। भाई आप पहुंच सकते हैं इस ब्यूटीफुल से भव्य चीज़ को देखने के लिए, एंट्री बिल्कुल फ्री है और सेल पे रिफ्रेशमेंट्स और कावा भी मिलने वाले हैं। हम की टीमें वहाँ मौजूद होगी।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: आज एक्सपर्ट अड्डा में मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सवाल है एंड इसके लिए नन अदर देन लीगल एसोसिएट्स के राज जी को मैंने कॉल किया जब आपका टेक्स्ट आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट वेलकम हिम। नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप सर?
2: गुड मॉर्निंग कशिका जी एंड मॉर्निंग टू ऑल हम एफएम लिसनर्स।
1: थैंक यू सो मच सर। सर मेरे पास एक टेक्स्ट आया एंड दे आर टॉकिंग अबाउट माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन। सर यू नो समथिंग अबाउट, ऑफ कोर्स यू मस्ट बी डूइंग समथिंग अबाउट इट, बट उसके बारे में कुछ बताइए आप।
2: दैट्स राइट कशिका जी, एक्चुअली जो माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन है, इमिग्रेशन में ऑप्शन है ये, अगर जो लोग यहाँ पे एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा पे हैं और उनको लगता है कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके लिए ऑप्शन होती है। तो टेक्स्ट आपका क्या है, उन लोगों के किसी के साथ कुछ हुआ है या उनको लगता है हो रहा है या ऑप्शन क्या क्या
1: व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एट दैट फ्रंट?
2: ओके, तो इसमें यह है, एक तो इमिग्रेशन की तरफ से सबके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा घंटे काम कर रहे हो या आपको जॉब देते हुए किसी ने, कोई एजेंट आपके बीच में था या एम्प्लॉयर आपसे कोई पैसे ले रहा है, या आपको पेमेंट टाइम पे नहीं मिलते, या आपको ब्रेक्स ढंग से नहीं मिलते, या आपको ज्यादा काम एम्प्लॉयर आपके साथ कराता है, तो ये सारी चीजें माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन में आती है। तो उसके लिए माइग्रेशन एक्सप्लॉयटेशन के अंदर दो ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के साथ। एक तो ये है कि भी पहले जो आपकी कंप्लेंट है ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन है डिपार्टमेंट, जिसमें MBIE है उनका एक पार्ट है, तो MBIE में आप पहले तो ये कंप्लेंट आप अपनी दर्ज कराओ। तो नेचुरल अब आपको पता, कंप्लेंट तो देखो कोई भी कह सकता है, माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन इज काइंड ऑफ यू नो वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव इशू, कि उसमें जो एम्प्लॉयर है उसका अपना काइंड ऑफ पार्ट होता है, जो एम्प्लॉई होते हैं उनका अपना पार्ट होता है, दोनों अपना कंप्लेंट का पक्ष रखते हैं उसके अंदर। तो वो जो जो लोग हैं इंटरव्यू भी लेते हैं उनसे भी आपने ये किया और एम्प्लॉयर के साथ भी वो चेक करते हैं, तो अगर उनको लगता है कि माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो वो फिर आपको एक सपोर्ट लेटर देते हैं जिसके बेस पे फिर आप 6 मंथ्स का ओपन वर्क वीजा देते हैं। और कई बार ये होता है, काफी जगह पे हमने देखा है कि जैसे 2 साल का वीजा लो स्किल का उनका पहले लगा होता है या 3 ईयर्स का भी लगे हुए हैं, तो उसमें जब उनका एंड में आ रहा होता है, 2-3 महीने बचे होते हैं, 4 महीने बचे, तब वो लोग अप्लाई करते हैं। तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का ये रूल है, इवन तो माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन हुआ है लेकिन आपका वीजा जो बचा हुआ है अगर आपका 3 महीने का, तो फिर न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपको जो बचे हुआ ड्यूरेशन है वही देती है एंड मैक्सिमम जिसका टाइम फ्रेम है वो है 6 मंथ्स। तो ये डिफरेंट प्रोसेस है, तो ऑफकोर्स किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है तो ऑफकोर्स दे शुड टेक ए लीगल एडवाइस ऑन दिस एंड अकॉर्डिंगली दे कैन फाइल ए कंप्लेंट। तो ये प्रोसेस है, अभी भी चल रहा है ये सारी चीजें। और ये चीजें ऐसी हैं लॉ की, लाइक स्पेशली लीगली, जैसे एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का होता है भाई टर्मिनेट कर दिया, यू नो, या आपका आपको सस्पेंड कर दिया, या वो कहते हैं भैया आपका अब जॉब नहीं है, हमारा बिजनेस बंद हो गया, या कई बार एम्प्लॉयर होता है ओवरसीज चला गया एंड बिजनेस काइंड ऑफ बंद नहीं किया है, इट्स लाइक अंडर मैनेजमेंट चल रहा है। तो देयर सो मेनी सिचुएशन होती है जिसके अंदर, तो ये लोग उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं एंड होपफुली यू नो उनको अपनी जो कंप्लेंट है इसका सोल्यूशन मिल जाएगा।
1: एब्सोल्युटली
2: एंड अगेन हमारे साथ डिस्कस करना।
1: आपकी इन्फॉर्मेशन पास आउट कर दूंगी, यू कैन ड्रॉप द कॉल इफ यू वॉन्ट टू एंड जीरो। थैंक यू सर। 09279-9439 इज द नंबर वे यू कैन गिव अ कॉल एंड टॉक टू लीगल एसोसिएट्स एंड ये इस तमा की रोड पापाटो एंड हैमिल्टन में लोकेटेड है।
0: My time with Kashika.
3: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप ही तो नहीं।

Such a pretty song and absolutely rightly guessed. भाई बर्थडे है करीना कपूर को और अगर आप भी उनका बर्थडे शेयर करते हैं तो why not? This is something interesting. लेकिन एक सर्च जो है

0: एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इट्स अंडर वे, जहाँ पे कुछ लोग रोटोएहू फॉरेस्ट में बताए गए हैं कि खो चुके हैं। अब मंडे की सुबह यानी कि आज सुबह 1:20 के आसपास ये पता चला है कि ईस्ट ऑफ रोटोरुआ में ऐसा कुछ हुआ है। ये रेस्क्यू एंड सर्च प्लान जो है इट इज़ पुट इन प्लेस, कोई इंजरीज रिपोर्ट नहीं की गई हैं। लेट्स प्रे फॉर देम।
1: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
3: अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं, पर दुनिया की सब तो मीठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी ओपल मैनू आज भी याद है। इन्ना सोना चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था जी।

0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
1: ये तो खबर आप तक पहुंच ही चुकी है और हमारे फेसबुक पर भी हमने ऐलान कर दिया है. दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह हैव वेलकम्ड अ बेबी गर्ल. और ये डेफिनेटली हुआ है इनका बहुत ही खूबसूरत एक नोट था, वेलकम होम बेबी गर्ल. और ये इनकी 19th को बेबी इनके यहाँ हुआ है. सो थोड़े दिन पहले आई थिंक आई डिड सी दैट ये लोग दोनों गए हुए थे और वहाँ पर गणपति जी के दर्शन करने के लिए. और देखिए इस 10 दिनों के दौरान ये यहाँ पर नज़र आए. एंड ऑफ कोर्स इट ऑल स्टार्टेड द रोमांस स्टार्टेड फ्रॉम गोलियों की रास लीला रामलीला. और उसके बाद 2013 में हुआ, 2018 में वेडिंग हुई. ऑफकोर्स ये ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना तो बहुत बहुत मज़ा आता है देखने में. अगर अभी मज़े की बात ये है कि कोई ड्रीम ऐसा आपके पास आया है तो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं. देखते हैं कुछ इंटरप्रेट हम कर पाते हैं कि नहीं.
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली दर्शन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
8: डिब्बा खुल गया
9: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे. संजना का डिब्बा खुल गया.
10: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा. फिर यही तो होगा, डिब्बा खुल गया. हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले. बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
11: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
12: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम. और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
13: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
14: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
15: अब हमारा क्या होगा?
16: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
14: तो क्या करें?
17: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
18: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
19: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
2: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
20: You're invited to IKEA Open House. Join us in store for 4 days of offers, inspiring ideas and family fun. Visit your local IKEA from 18 to 21st of September.
21: IKEA.
0: My Bedtime with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
1: Exactly, I think I'm your reminder clock. और जब मैंने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बेबी के बारे में बात की तो आपने कहा ओ माई गॉड आई ड्रीम्ड ऑफ यू नो अ न्यूबॉर्न. तो एक न्यूबॉर्न अगर आपने ड्रीम किया है तो आपको इतना बताना चाहती हूँ कि सीइंग अ बेबी ये एक रिफ्लेक्ट करता है क्लीन सेट या एक फ्रेश एस्पेक्ट आपकी खुद की पर्सनालिटी के लिए जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है. एक नया देखने का नज़रिया, एक हैबिट या एक फेज जहाँ पे आपका पर्सनल एवोल्यूशन जो है वो चेंज हो रहा है. तो चलो ये आपके लिए अच्छा ही होगा, आई एम वेरी श्योर. बट अच्छी अच्छी बातों के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी आपके साथ मुझे करनी होती हैं जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अबाउट द इलेक्शन ईयर. अब जब मैं बात करती हूँ कि इलेक्शन ईयर में क्या होने वाला है, तो इस इलेक्शन ईयर में एक स्पेशल इलेक्शन सेगमेंट है हर थर्सडे के दिन 5 से 6 बजे के टाइम. आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो अब सब यू नो ऑन आर प्लेटफॉर्म दे विल बी कमिंग. तो पहले एपिसोड में एक्ट के पार्टी लीडर डेविड सिमर सैंडी रुस्बे के साथ आए जहां एक्ट की पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन की. नाउ दे विल डिस्कस द ट्रीटी ऑफ वाइटांगी और ये कमेंट्स जो हैं वो किए नन अदर देन परमजीत परमार ने जो इमिग्रेशन एक्ट की प्रपोजल को फ्रीज करना चाहते हैं विद द अडल्ट मिनिमम वेज और बाकी इश्यूज जो कंट्री को शेप अप कर सकते हैं. सो डेफिनेटली ट्राई एंड लिसन टू देम ऑन दिस कमिंग थर्सडे 5 से 6 बजे के दरमियान. इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट कैचअप में बियॉन्ड द डेट व्हाट डज सक्सेस एक्चुअली मीन और विजय पूजा जो है ये बताना चाहते हैं कि हाउ सोसाइटी इज मेजर्ड जब हम कहते हैं कि सेटल्ड हैं. इनका ऑडियो लेने के लिए आपको 5599 पे टेक्स्ट करना पड़ेगा BF.
0: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4 NZPMI.

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: So, पिछले हफ्ते हमने डिवाइन स्टोरीज के बारे में बात की थी और आज आई एम लिटिल बिट ब्लैंक. सो इफ़ यू आर एबल टू टेल मी इस हफ्ते की क्या थीम सिक्स वर्ड स्टोरी की रखें तो मैं उसी के बेस पर पूरा हफ्ता भर आपके साथ जुड़ी रहूँगी और सिक्स वर्ड स्टोरी हम और आप मिलकर क्रिएट करेंगे. तो आई विल वेट फॉर अ टेक्स्ट टू से कि भाई कशिका ऐसा है इस हफ्ते हम ये ट्राई कर लेते हैं कि इस थीम पर हम बातें कर लेते हैं. वो क्या थीम होगी 5599 पे आप मुझे टेक्स्ट करें और अगले घंटे पे मैं वो स्टोरी जो है मैं अनाउंस करूँगी न्यूज़ के ठीक बाद कि भाई जब इंट्रो करूँगी कि इस हफ्ते की ये हमारी थीम होगी. तो चलो इंतज़ार है आपका और उससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ ये बहुत ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपके लिए.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: देखो जी, ऐसा है कि बारिश वारिश भी शुरू होने वाली है. क्लाउडी डे रहेगा, हल्की शावर्स दोपहर के बाद पड़ सकती हैं. किस एरिया से आप सुन रहे हैं इस समय? वैसे इट फील्स लाइक 15 डिग्रीज. 6:17 पर सनसेट बताया गया है.
0: माय टाइम विद कशिका ब्रॉट टू यू बाय कशिश फूड्स. ईट बेटर, लिव बेटर.
2: मिड मॉर्निंग मजा.
3: Ladies and gentlemen, दिल थाम के बैठे क्योंकि आ रही है
2: My Time with Kashika.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है जहां पर मैं कह सकती हूँ कि

बातचीत की थी, तो फोन से रिलेटेड सिक्स वर्ड स्टोरी, भाई है कोई स्टोरी मेरे साथ जरूर शेयर करें। लेफ्ट ओवर की कुछ रेसिपीज जो है उसको किस तरह हम रेस्क्यू कर सकते हैं वो भी हम जानकारी हासिल करेंगे कुछ।

पीजी कीर्तन संग्रह के ऑफकोर्स रियाद में फ्राइडे के दिन वैदिक सेंटर में रिकॉर्डिंग होने वाली है कुछ कलाकारों की। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपके समक्ष वो ये प्रस्तुत भी करेंगे और ये रिकॉर्डिंग होते हुए भी आप देख सकते हैं। एंट्री बिल्कुल फ्री है। रिफ्रेशमेंट और कावा जो है वो सेल पर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बचाओ क्या

बंदों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: एक चीज तो है जो जेमिनी है, इसने 3 कंपनीज को हैक किया है एंड कहा जाता है ये ब्रेकआउट होने ब्रेक यू नो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, जहाँ पर इंटरनेट में हम जब जाते हैं इंटरनेट पे जाते हैं तो साइबर सिक्योरिटी की कैपेबिलिटीज़ जो हैं कितनी ज़्यादा यू नो बढ़िया हो चुकी हैं. ये हैक जो है दिस अकर्ड समटाइम्स इन द मंथ ऑफ मे, जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के टेस्ट जो थे वो हो रहे थे. अब यहाँ पे एक टेस्टिंग एवेल्यूएशन के दौरान जेमिनी को पता चला दैट कुछ पब्लिक इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन है, जो कुछ क्रेडेंशियल्स हैं 3 वेबसाइट्स के, वो किस तरह से वो एक्सेस होना शुरू हो चुके हैं. फिर उन्होंने क्या किया, 3 इन्होंने इंश्योर किया. गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि 3 एंटिटीज़ दे वर मेड अवेयर कि इस तरह से हो रहा है. उनके जो ट्रेनिंग पार्टनर थे उनके साथ उन्होंने ये बातें टेस्ट की और उसके बाद ये टेस्टिंग की एक प्रोसेस शुरू की गई. ये जो इवेंट्स की जो हाईलाइट थी, इससे क्या हुआ कि ये ट्रेनिंग के पावरफुल AI मॉडल्स जो थे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है बढ़ती चली गई. लेकिन अब क्या है कि इशू जो ये आया है कि ये रेमेडी जो थी उसको रिजॉल्व कर दिया गया कुछ हफ्ते पहले ही. इसी तरह के इंसिडेंट्स मेटा, एंथ्रोपिक, OpenAI, इस तरह की चीज़ों पे ये इंसिडेंट्स ज़रूर पकड़े गए हैं. और इन वन ऑफ द केसेस जेमिनी मॉडल ने बताया कि पासवर्ड भी क्या है एंड विच वॉज इन अ वेरी प्रोटेक्टेड सिस्टम. दिस इज़ वेरी अलार्मिंग. और केसेस में पता चला कि कुछ और ऐसी चीज़ें जो लगता था कि नहीं पता चलनी चाहिए थी वो भी सामने निकल कर आई. ओके, 6 वर्ड स्टोरी आ रही है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि 6 वर्ड स्टोरी अराउंड फोन क्या हो सकती है. जल्दी करो.
1: Driving you home. Drive show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या. रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Phuket Kohi. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Phuket Kohi. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jenku.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे.
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
9: There's a new kind of goodness in the pet aisle. Nature's Gift. Discover the new Nature's Gift grain-free range. Now in convenient pouches and delicious kibble. Made with real meat, real vegetables and grain-free recipes. It's a natural choice for everyday feeding. So, looking for Nature's goodness? You'll love Nature's Gift. All new look, same great nutrition in supermarkets now. The delicious dog food packed with real goodness. Give them the gift of Nature's Gift grain-free. Discover the range in store today.
10: At Bunnings, there's now a rewards program for everyone. When you shop for your home, earn points with Bunnings Rewards. Or you can turn your eligible business spend into rewards with PowerPass Pro Rewards. So join today and get rewarded however you shop at Bunnings. T's and C's and eligibility applies.
11: When you're finishing off that DIY project this weekend, remember to have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
12: Hey, how's it going?
13: Yeah, good, good. You?
12: Yeah, good. Okay, I've got a question for you.
4: Have you heard of Thomason Does Advertising?
12: No, I don't think so. What do they do?
4: Starts with A.
12: Oh, okay, advertising. I get it. But you know that I hate advertising.
4: No. They do the good ones. I know you like the good ones.
12: Okay, yes, I'll give you that. I do like the good ones.
4: And you'll know most of them too.
12: Really?
4: Well, you're in one right now. One of these.

0: word story.
1: ये सिक्स वर्ड स्टोरी जो है ना, ओ माई गॉड. ओके, सो आपका आया 7545. ग्रैंड मा कॉल्ड, हर ट्रेम्बलिंग हैंड्स रिमेम्बर्ड. ओके, हर ट्रेम्बलिंग हैंड्स रिमेम्बर्ड. ग्रैंड मा कॉल्ड, हर ट्रेम्बलिंग हैंड्स रिमेम्बर्ड. ओके, तो आपको जब फ़ोन आया होगा तो शायद ये सिचुएशन आपके ज़रूर आई होगी. तो जब आपकी ग्रैंड मा का फ़ोन आया होगा, उनके आपको कांपते हुए हाथ जो हैं वो ज़्यादा नज़र ज़रूर आए होंगे. सो माय गॉड, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. आई एम श्योर ग्रैंडमा का जब फ़ोन आता है तो बच्चों में एक एक्साइटमेंट अलग सा हो जाता है. वैसे आपको बताना चाहती हूँ कि वेद प्रचार हफ्ता जो है ये 4 अक्टूबर तक चल रहा है, फ्रॉम 28th ऑफ सेप्टेम्बर. 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोई में शाम 6:20 से ये 30th ईयर की सेलिब्रेशन है ऑफ एस्टैब्लिशिंग आर्य समाज इन न्यूजीलैंड. श्री राम मंदिर श्री राम कथा जो कर रहे हैं वो पूज्य राजन जी के साथ करने वाले हैं. 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक महाप्रसाद का आयोजन हर रोज़ किया जाने वाला है. चलिए, यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं. माँ दुर्गा टेम्पल 43 ऑनस्लो एवेन्यू में भी जो है 3 दिन का एनुअल श्री गणेश उत्सव का महोत्सव जो है वो है 22 तारीख से, यानी कि कल से लेके 24 तारीख तक 7 से 8:30 बजे कथा जो है वो सब नील नारायण जी पंडित जी करने वाले हैं. और 25 तारीख को फ्राइडे को 6:30 बजे विसर्जन होगा वेस्ट हेवन सिटी हार्बर ब्रिज पर. तो आप सभी को आमंत्रित किया जाता है. कोशिश कीजिए कि आप जब भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आपके आपके लिए आपकी आवाज़ बनकर सामने आ जाते हैं. जब ऐसा होता है तो buzz@hamfm.com पे आपको हमें ज़रूर ईमेल करना ही करना है. तो याद रहे buzz@hamfm.com इज़ द राइट नेम. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि आई हैव फोन 12 प्रो मैक्स. आई हैव फोन 12 प्रो मैक्स. ओ नो, यू रिटन सॉरी, आई हैव iPhone 12 प्रो मैक्स. ओके, एक्सेप्टेड. आई थिंक ये भी एक सिक्स वर्ड की स्टोरी बन गई रिगार्डिंग द फोन्स, विच इज़ वेरी नाइस. चलो आपको बता देती हूँ, ये सम अप में सिक्स वर्ड स्टोरी डेफिनेटली करने वाली हूँ हफ्ते के एंड में.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Rewind with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
3: You know, ऐसी situations आती हैं ना life के अंदर जहाँ पे आपको लगता है आप क्या करें. अब सेंट जॉन्स की एक बहुत अच्छी खबर है जो मैं आपके साथ देना चाहती हूँ. हेल्थ मिनिस्टर साइमन ब्राउन, इन्होंने अनाउंस किया कि जो पैरामेडिक्स जो आते हैं, दे हैव बीन ट्रेन्ड टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 232 मेडिसिन, जो कॉमन इन्फेक्शन ट्रीटमेंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है, जहाँ पे कम्युनिटी को अर्जेंट केयर की ज़रूरत होती है. और ये एक प्रिस्क्रिप्शन जो है, रिपीट प्रिस्क्रिप्शन जो है, ये इशू कर सकते हैं. ये लिस्ट ऑफ मेडिसिन जो है काफ़ी सेंसिबल हैं. और एम्बुलेंस के सर्विस के जो डिप्टी चीफ हैं, उन्होंने भी ये बात कंफर्म की. उन्होंने कहा, इट रिफ्लेक्ट्स अ नीड बोथ इन व्हाट पैरामेडिक्स आर लाइकली टू सी आउट देयर इन द कम्युनिटी, बट ऑलमोस्ट मोस्ट ब्रॉडली मेक श्योर वी डू दिस इन द वे दैट इज सेफ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी हम बाय द टाइम हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं ना, तब तक लगता है कि क्या हो गया. लेकिन हाँ, अगर ये पैरामेडिक्स जो पहुँच जाते हैं और आपकी हेल्प करते हैं, आपको इंस्टेंटली कोई मेडिसिन दे देते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी सच अ सेवियर. सो इट्स अ ग्रेट एडिशनल टूल जो मैं कह सकती हूँ फॉर पेशेंट सपोर्ट. एंड द फर्स्ट पैरामेडिक सब्सक्राइबर या प्रिस्क्राइबर जो हैं, दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट लेट टूवर्ड्स 2027. सो वी विल वेट फॉर इंफॉर्मेशन की डेट क्या होगी.
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

लेफ्ट ओवर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो घर में भी बच जाती हैं, आपको पता है कि क्या क्या रह जाता है घर पे कि क्या करें। लेकिन ऐसे में एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज एक रेसिपी है जहाँ पे मैं कहूँगी इसको फ्रिज रेड सूप। इस फ्रिज रेड सूप के बारे में इतना कहूँगी, आपको 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, फाइनली चॉप किया हुआ 1 प्याज, आपको साथ में चाहिए 2 कैरेट्स छोटी छोटी काट लीजिएगा, सेलरी आपको चाहिए 4, आपको लहसुन के क्लोव्स चाहिए, और साथ में आप हरा धनिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं, टोमेटो प्यूरी 1 टेबलस्पून आपको चाहिए, 1 लीटर आपको वेजिटेबल या चिकन स्टॉक जो भी आप लेते हैं वो लीजिए, 400 ग्राम्स चॉप किए हुए आपने टोमेटोज ले लिए, और साथ में आपके पास देखो घर में पड़ा ही होता है बीन्स है, राजमा है, जो भी कुछ है आप उसको ड्रेन करके सुखा लीजिएगा, और घर में कोई सब्ज़ी जो आपकी बच जाती है उसको भी आप ले सकते हैं, 1 आलू उसको पील करके आप उसको अच्छी तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिएगा, दैट्स इट। तो अब आपको क्या करना है, तेल गरम करना है, उसमें प्याज डालना है, कैरेट डालनी है, और साथ में सेलरी डाल के करीब 10 मिनट तक सौते कीजिए। अब इसमें लहसुन, थाइम है तो थाइम, साथ में अब आप टमाटर की प्यूरी ले सकते हैं, और रिड्यूस फ्लेम पे इसको 10 मिनट और पकाइए। आपके पास जो बची हुई बीन्स हैं घर के अंदर, बची हुई सब्जियां हैं घर में जिसे आप ड्राई कर चुके हैं, पानी नहीं होना चाहिए, और छोटे छोटे कटे हुए आलू अगर आप इसको लेंगे, बस आपको लेके 15 से 20 मिनट इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है, जब तक आपको लगे नहीं कि सब टेंडर हो चुका है, बस अब आपको इन्हें लेना है, और ये थूप आपका सूप आपका थिकन होने लग जाता है, और जब इसको आप टॉप अप करना चाहते हैं इसमें पार्सले ऐड कर सकते हैं, क्रम्बल किया हुआ फेटा ऐड कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। थोड़ा सा ओरिजिन ऑयल, ऑलिव ऑयल का आप ऐड कर दीजिए। देखिए बहुत ही कंफर्टेबल सा आपका ये एक फ्रिज रेड का डंप सूप तैयार हो जाता है। दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI.

0: यू बाई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन
1: तो चलो वक्त आ चला है जहां पर मैं आपसे कहूँ टाटा बाय बाय क्योंकि यही कह सकती हूँ कि कीजिए स्वीकार का शिकागर नमस्कार। आज का दिन कहलाता है सोमवार। आने वाला हफ्ता आपके लिए और भी ज़ोरदार दमदार और शानदार बना रहे। बस इसी नोट पर यही कहूँगी अपने ख्याल रखिएगा स्वस्थ रहो मस्त रहो जहाँ भी रहो तंदुरुस्त रहो। बस ऐसे ही कहते हुए दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज़। लुक आफ्टर योरसेल्फ्स हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड।